0: किरण नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच बॉक्स शो में। आज जनरली बहुत खूबसूरत दिन है यार। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी अपने घर से जस्ट बाहर निकलते हुए, यू नो द टाइम व्हेन आई वाज लीविंग फॉर हम रेडियो, तो उसी टाइम देखा मैंने स्काई पे एक स्पॉट नहीं दिख रहा था, यानी कि चांद इतना क्लियर दिख रहा था और ये जो ग्रेडिएंट शेड्स आ रहे थे आसमान पे फ्रॉम ब्राइट व्हाइट टू ऑल द वे टू लिटिल डार्क ब्लू, इट वाज समथिंग यू नो बहुत ही बढ़िया लगता है, स्पेशली व्हेन इट इज विंटर। तो विंटर में तो थोड़ा ठंडा ना चिली चिली लगता है, बट द सेम टाइम आप धूप के भी मजे ले सकते हैं। वैसे कोई स्टोरी आपको याद है जो आप बचपन में किया करते थे? मुझे बहुत पता है, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर टाइम ऑफकोर्स इंडिया में तो दिसंबर में अच्छी ठंड पड़ती है, दिसंबर जैन में, तो तब हमारे एग्जाम जब होते थे तो एग्जाम के बीच में मैं बहाना मारता था कि पापा मेरे को कुछ नाश्ता कर लेता हूँ फिर मैं पढ़ूंगा। तो वो बहाना नाश्ता करने के बहाने से मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास फोन वोन कुछ भी नहीं था, तो न्यूज़ पढ़ता था, सारे आर्टिकल्स पढ़ता था, स्पेशली क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ता था। तो यस, ये कहानी मेरी है जो मैं यूज़ करता था, बट स्पेशली सिटिंग अंडर द सन, सन होता था और इतना खूबसूरत लगता था, इतना सही फील होता था, जैसे मैं खुद ही जादू जैसा फील होता था कि मुझे एनर्जी मिल रही है। आप बताइए अगर ऐसी कोई स्टोरी हो, बट अभी हाल फिलहाल आप मुझे होमसिक रेमेडीज के मैसेजेस भेजिए 5599 पे।
1: बचाओ क्या

0: Welcome back. You are listening to Lunch Box. My name is Ketan. And शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है. काफी एनर्जेटिक यू नो फील भी हुआ है जो गाने यहाँ पे चले हैं. But yes, कुछ मैसेजेस आए हैं होमसिक रेमेडीज के. वो है, I miss celebrating little achievements with my family back home. Even getting a new job or passing an exam meant sweet for everyone. Here I usually celebrate with a phone call. मेरे ख्याल से ये सिर्फ न्यूजीलैंड का नहीं, दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैज बिकम. आई गेस दैट्स व्हाट आई फील कि टाइम इतना बदल चुका है दैट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप आलसी भी हो चुके हो एंड यू स्टार्टेड फिल्टरिंग आउट कि आपको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है. और जिसके साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है उनके साथ वैसा ही करते हो आप, जो आपको लगता है ईजी टू गो है. बट ये सचमुच जिसके साथ जिसको मिलना होता है आप थोड़ा वक्त निकाल के उनसे भी मिल ही लेते हैं. रेनू कहती है, माय होमसिक रेमेडीज इज मेकिंग फ्रेश रोटीज इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रोजन वंस. इट टेक्स मोर टाइम बट द स्मेल रिमाइंड्स मी ऑफ माय मॉम्स किचन एंड इंस्टेंटली लिफ्ट्स माय मूड. दैट्स सो कूल, दैट्स सो कूल. फिरोज कहते हैं, आई मिस दोज इवनिंग व्हेन फ्रेंड्स वुड जस्ट ड्रॉप बाय विदाउट कॉलिंग फर्स्ट. वी वुड सिट आउटसाइड द टी outside with three, talk for hours and forget about time. Those unplanned moment or what I miss the most. हाँ, और उसके बाद आपने एक और चीज़ नहीं बताई है about scolding, getting scolded by your parents because भाई कल स्कूल नहीं जाना है या फिर कल तुम्हें काम पे नहीं जाना है, सोना नहीं है, एक्स्ट्रा. But yes, jokes apart, वो मोमेंट सचमुच बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे. एंड यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती. यहाँ पे लाइक यू नो यू नीड टू गेट एन अपॉइंटमेंट, यू नीड टू आस्क भाई लेट्स कैच अप अंटिल अनलेस यू हैव सम वर्क और यू हैव सम प्लान थिंग, तब मेरे को लगता है कि शायद आप टाइम निकाल लेते हैं. और ऑफकोर्स एट द सेम टाइम शायद आपका इंटरेस्ट भी हो तो बात अलग है. बट यस, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. आप बने रहिए, मुझे ऑफिस शाउट आउट्स के लिए मैसेज भेजिए जहाँ पे आप यू कैन डेडिकेट एनी सॉन्ग इफ यू वुड लाइक टू. बट डू लेट मी नो कहाँ से और क्या खा रहे हैं, कौन कौन खा रहे हैं, ये आप मुझे भेज सकते हैं.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.
3: ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚੱਕੀ

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
5: For a limited time, ventilate four or more rooms in your home and you'll get one vent for free. That's right, one vent for free when you purchase a DVS home ventilation system. T's and C's apply.
6: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock.

0: item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ, अच्छा
3: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: नॉन स्टॉप बॉलीवुड,
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
6: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
8: Lunchbox with Ketan.
9: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
8: Office shout out.
10: Well, अभी तक तो कोई मैसेजेस आए नहीं है रिगार्डिंग ऑफिस शाउट आउट, बट मीन वाइल मैं आपको बता देता हूँ दैट देयर इज अ पॉडकास्ट व्हिच वी हैव जस्ट लॉन्च रिगार्डिंग द थैलेसीमिया और उसका जो इम्पैक्ट है साउथ एशियन कम्युनिटी पे वो कैसा है। सो यस, वी हैड निवेदिता विज, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे साथ बात की है रिगार्डिंग दिस कॉज, और ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। वन सिंपल स्क्रीनिंग एंड चेंज योर लाइफ फ्यूचर। जी हाँ, तो एक अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगता है तो डोंट वेट अंटिल द वो चीज़ बहुत मेजर बन जाए। यू नीड टू टेक एक्शन इमिजिएटली। डजंट मैटर वेदर यू थिंक दे इज सम सिम्टम्स और नॉट। उसके बाद कुछ बातें और भी होती है, जैसे कि द हिडन जेनेटिक थ्रेट फेसिंग साउथ एशियन फैमिलीज। उसके बाद व्हाई अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कांट वेट, अ वाइटल कन्वर्सेशन ऑफ एवरी हाउस होल्ड। ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और आखिरी है, व्हाई साउथ एशियंस आर एट हाई रिस्क फॉर थैलेसीमिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, बट इस पॉडकास्ट में उससे भी ज़्यादा बातें हैं। सो यस, आपको 5599 लिखना है और मुझे, सॉरी, ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए, ताकि लिंक जो है डायरेक्टली आपके फ़ोन पे आ जाए। एंड ये रहे मैसेज जस्ट रिसीव्ड अबाउट ऑफ शाउट आउट। फरान कहते हैं, आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर उबर ईट्स बट माई कलीग सेड ट्राई माई मम होम मेड बिरयानी, बेस्ट लंच डिसीजन आई हैव मेड ऑल वीक। Ah, that's a good start for Monday morning, right? Monday afternoon, actually, yeah. Uske baad, Shalini kehti hai, I am working from home today and my 8-year-old son insisted on making my lunch. It was a peanut butter sandwich cut into dinosaur shapes. Aray, wah, so creative, yaar. And honestly, it tasted awesome. Of course. But thank you बताने के लिए यार, आपके you know what your son is trying, आप हमारे साथ शेयर किया, thank you so much उसके लिए। But yes, actually ये जो song है ना अगला, Chinnery Chinnery, I would love to dedicate to you, Shalini, enjoy.
6: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और फटाफट से अब पता कर लेते हैं व्हाट इज द लेटेस्ट खबर ऑन आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में। वेल यस, 22 जून यानी कि आज की तारीख 1954 को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड में 16 साल की पॉलिन पार्कर और उनके 15 साल की दोस्त जूलियट ने पॉलिना की माँ होनोरा पार्कर का मर्डर किया था। और दोनों लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी, और जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलकर ये क्राइम प्लान किया। वैसे मर्डर के लिए उन्होंने एक ब्रिक को स्टॉकिंग में लपेट कर उसे एज अ वेपन यूज़ किया। वैसे केस ने पूरे न्यूजीलैंड को काफ़ी शॉक कर दिया था। कोर्ट ने दोनों को गिल्टी पाया और उन्हें प्रिजन भेज दिया। दोनों ने लगभग 5 साल जेल में बिताए और बाद में रिलीज भी हो गए। ये केस न्यूजीलैंड के सबसे नोटोरियस मर्डर केस में से एक माना जाता है और इसी पर फिल्म हेवनली क्रिएचर्स भी बनी है। सो नाउ योर थिंग इज, बताइए मुझे कितने लोगों ने यहाँ पे ये फिल्म जो है हेवनली क्रिएचर्स देखी है। मैंने देखी है, थोड़ी खूंखार है, थोड़ी अजीब है, बट आई लव्ड इट एट द एंड। सो यस, आप भी मुझे बताइए 5599 पे कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।

0: बीरा बीरा विजय प्रकाश की आवाज और मुस्तफा कुलबीन कुटोना, उन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी इसमें। तो यस, अमेजिंग सॉन्ग और मजा भी, मजेदार भी था। वैसे फिल्म जो आई थी इतनी एंटरटेनिंग थी और काफी ठीक ठाक कलेक्शन रहा इनका, क्रिटिकली भी और काफी अक्लेम भी हुई थी और कमर्शियली भी अगर देखें तो काफी सक्सेसफुल रही थी। बट यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन इवेंट, थिएटर इज हैपनिंग, गुड जुबाई नी एक्सचेंज ऑफर, जी हाँ, जो कि 3 जुलाई को होने वाला है 7:30 बजे के बाद। आप विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में जाके इस शो को आप एंजॉय कर सकते हैं। टिकट्स आप जाइए premierTickets.co.nz पे ले लीजिए, अगर ले लिए हैं तो जस्ट गेट रेडी, गेट प्रिपेयर फॉर दिस, बिकॉज आप उनमें से हैं जो सक्सेसफुल बनाते हैं इनका शो, यानी कि इनका रिकॉर्ड रहा है दैट इनके शोज जो हैं हमेशा हाउसफुल रहते हैं और इस बार भी हाउसफुल ना हो, इसलिए जिन्होंने नहीं लिए टिकट जल्दी से जाइए और टिकट खरीद लीजिए। सिद्धार्थ रंडेरिया गुज्जूबाई प्रोडक्शन लेके आ रहा है एक इतना अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर शो, जो कि बेसिकली एक गुज्जूबाई होते हैं, उन्हें किसी एक्सचेंज ऑफर में फंस जाते हैं और कैसे वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, काफ़ी यू नो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आते हैं जो कि सचमुच आपको बहुत ही हंसाएंगे, बहुत ही एंटरटेन करेंगे। डायलॉग से लेके स्क्रीन प्ले तक हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से नवाजी गई वहां पे। सो यस, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। premierTickets.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए बिफोर समवन एल्स टेक इट एंड मेक द हाउस फुल। लंच बॉक्स विद केतन,
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम। When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
2: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria, Gujubai.
3: And who Tejal Vyas?
2: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
3: Exchange Offer.
4: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa tayyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
5: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
6: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. 1 New Zealand. Let's get connected.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
8: As a baby, I was burnt in hot water.
9: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
10: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
11: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
12: Lunchbox with Keithan.
13: Aisa bajaunga na ki tere kaanon mein roz meri aawaz goonjegi.
14: Hum. Chutney Shots.
15: चटनी शॉट में आपका स्वागत है। यहाँ के सेगमेंट में हम फटफट से न्यूज पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट खबर है। वेल यस, सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर से बात करते हैं, वहां से बड़ी खबर आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट को जल्दी में आगे ना बढ़ाया जाए, बिकॉज रिपोर्ट के मुताबिक पहले और ऑप्शंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्राइस्टचर्च पुलिस ने रिसेंट असॉल्ट केसेस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कुछ CCTV इमेजेस रिलीज की है और पब्लिक से हेल्प मांगी है कि अगर उनके थ्रू कुछ मदद मिल सके। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, अगर आपने देखा है यू नो कोइंसिडेंटली, तो प्लीज़ लेट द पुलिस नो सो दैट वो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी उनको यू नो इजी रहे। एक कंपनी ने सोशल मीडिया पर किए गए क्रोकोडाइल इंसिडेंट जोक के लिए पब्लिक से अपोलॉजी मांगी है, यानी कि माफ़ी मांगी है। कंपनी ने माना कि ये जोक बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल था और इसे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ी क्राइम अपडेट, अथॉरिटीज़ ने देश के अब तक के सबसे बड़े कोकेन हॉल पकड़े हैं और इस ड्रग्स की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 997 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर बताई जा रही है। वाओ, ऑलमोस्ट अ बिलियन। वाले आखिरी न्यूज़ है, आखिरी सेकंड लास्ट पुलिस पॉलिटिक्स में हैना राफिती माईपी क्लार्क ने कंफर्म किया है कि वो अपनी पार्टी के साथ हैं और ट्राइबलिज्म से ज्यूड एलिगेशंस के पार्टी ने काफ़ी स्ट्रांगली उसे रिजेक्ट भी किया है। और आज की सबसे बड़ी खबर, 1 बजे मैच शुरू होने वाला है बिटवीन न्यूजीलैंड वर्सेस इजिप्ट। लेट्स सपोर्ट आवर टीम राइट फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: Welcome back. You're listening to Lunchbox. और आज तो कमाल ही हो गया है. कमाल, जानदार, मजेदार. कैसे हो कशिका जी?
3: मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
2: Sorry, say it again.
3: मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
2: मैं एकदम बढ़िया हूँ. आज
3: माइक कौन है?
2: हाँ, माइक कौन है?
3: अच्छा, ओके.
2: आपको आदत नहीं होगी ना उधर बैठने की?
3: आदत नहीं है ना इस साइड पे बैठने की, इसलिए शायद पता नहीं चलता.
2: आज वही सोचा कुछ तूफानी करते हैं.
3: अच्छा बोलो.
2: मजेदार करते हैं, ऐसे लाइक
3: कोई तूफाना भी काम है एकदम. मौसम
2: आज एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है.
3: अच्छा, एक्चुअली लग रहा भी वो विंटर फीलिंग जो है ना, अब आज हो गए 22nd, लग ही नहीं रहा कि ये विंटर यू नो आ गया है. अभी भी पसीने आ रहे हैं, है ना.
2: आपको वैसे ऑकलैंड में कितना टाइम हो गया?
3: ऑकलैंड 2004 में हम लैंड हुए थे.
2: लैंड हुए मतलब 22 साल?
3: हाँ 22.
2: मैं
3: 3 दिन के बाद दुबई वापस चली गई थी.
2: अच्छा.
3: हाँ, क्योंकि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद है. मैं कहीं गांव कौन, इस गांव में कौन रहेगा? इस गांव में लोग दिख ही नहीं रहे. 5 बज गए और मैंने कहा भाई प्रभु यहाँ लोग रहते भी है कि नहीं रहते? अंधेरा एंड बिकॉज इट वॉज विंटर एंड ये तो बिल्कुल जगह मेरे लायक है ही नहीं. आई बेटर टेक अ यू टर्न एंड गो बैक एंड आई वॉज गॉन.
2: राइट, फॉर हाउ लॉन्ग?
3: ऐसा
2: बोलो ना 2011 में.
3: नहीं, मैं क्यों प्रभु को छोड़ गई थी.
2: मेरे लिसनर शायद जानते नहीं प्रभु इन द सेंस, इनके हस्बैंड का नाम प्रभु है.
3: सॉरी, मुझे बोलना चाहिए.
2: मेरे क्राउड थोड़ा अलग है. बट ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफी लिसनर्स हैं जो आपको भी सुनते हैं बिफोर माय शो. सो जस्ट टू लेट यू नो, आई नो यू ऑल नो, बट मेरा मेरी जिम्मेदारी है बताना दैट यस, शी डज द मॉर्निंग शो जिसे कहते हैं हम माई टाइम विद कशिका. वैसे आपने ये क्या नाम, क्या सोच के नाम रखा, मतलब शो का ही नाम अपने नाम से रख दिया, क्या बात
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, शो का नाम मेरे नाम से नहीं था. इट वॉज माई टाइम, बट देन फिर वो विद कशिका करके अब तो इस शो को करते हुए भी 11-12 साल हो रहे हैं.
2: बट इट इज साउंडिंग मोर बेटर, मतलब मैं डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूँ कि हाँ शो किसका, लाइक यू डोंट नीड टू टेल.
3: ओनरशिप.
2: हाँ, लंच जैसे मेरा होगा, लंच बॉक्स बनाएगा केतन.
3: तो वैसे क्या लंच बना लेते हो कुछ?
2: नहीं, वो इसलिए इन्होंने रखा. इसीलिए इन्होंने सिर्फ लंच बॉक्स ही रखा.
3: लंच बॉक्स का मायने तो वही होगा ना कि अच्छा वैसे तुम डब्बा तो खाई लेते हो ना सबका.
2: हाँ, कोई दे तो डेफिनेटली खाऊंगा, मैं मना नहीं करता हूँ.
3: मना नहीं, तो खड़ी खाई थी मैंने वैसे खुशबू के हाथ की.
2: हाँ, खुशबू वो तो सब बढ़िया बनाती है. हाँ. मतलब खाना भी अच्छा बनाती है. आगे सवाल मत करना मेरे से कुछ.
3: नहीं, बट ये लंच बॉक्स का मायने मतलब तुम्हारे लिए क्या है?
2: मेरे लिए बहुत है. आई लव, एक्चुअली बताऊँ ना तो मेरे लिए लंच बॉक्स इसलिए भी ज्यादा है दैट मिक्स फीलिंग है बेसिकली. द रीजन इज लंच बॉक्स इज द टाइम बचपन से लेके अभी तक एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर एज वेल. खाना घर का होता है.
3: हाँ.
2: बट खाते हम बाहर के लोगों के साथ.
3: हाँ.
2: सो इट्स लाइक अ मिक्स कम्युनिटी शेयरिंग टाइप हो गया.
3: शेयर्ड लंच.
2: जैसे डिनर और ब्रेकफास्ट क्या होता है, ये आप अपने घर के साथ ही मतलब वही बन रहा है वही खा रहे हो. सो देयर इज नो डिफरेंस. बट लंच टाइम ऐसा होता है दैट प्रिपेयरिंग एट होम. लेकिन जो कनेक्शन बोलते हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन, राइट, द ब्रिज. सो या, दैट इज दैट्स व्हाई यू नो फॉर लंच बॉक्स इज रियली मीन टू
3: मेरे लिए. तो पता है क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे लंच बॉक्स लंच अपना निकालती हूँ और गर्म करती हूँ तो करी वगैरह होती है, जैसे करी होती है. अब वो गर्म किया, सब्जी गर्म की तो खुशबू आने लग जाती है. तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये स्मेलिंग गुड, यू नो वेरी गुड. तो फिर क्या करे इंसान, फॉर्मेलिटी से पूछ लेता है वुड यू लाइक टू ईट.
2: और यहाँ मना नहीं करते, मैं नोटिस किया.
3: हाँ, मना. और एक दिन तो लंच बॉक्स में मेरे खाली एक बाइट बचा था क्योंकि इतने सारे लोग स्वॉर्म अप हो गए थे. हाँ. चिकन करी थी एंड दे लव्ड इट. ओ कैन आई हैव अ बाइट, कैन आई. हाँ भाई खाते जाओ. देखा तो मेरे पास एक बाइट, एक टुकड़ा बच गया था खाने के लिए.
2: यार ये मेरे को है ना, हम ऐसे क्यों नहीं है, हम ऐसे लिचड़ क्यों नहीं है? हाँ, मतलब हम ऐसे भूखे, वो कहते ना कि यार कोई ऑफर दे, हम सोचते हैं यार कि यार नहीं यार उसको भी खाना होगा वो सब. यहाँ वाले सोचते नहीं.
3: मुझे शायद वहम हो क्योंकि मैं वो बीफ वगैरह इन सब चीजों से दूर रहती हूँ ना, तो भी मुझे लगता है सारे टाइम को पता नहीं खाने में क्या होगा तो मैं खाऊं ना.
2: बट इवन इन इंडिया की अगर बात करें जो सर्कल था तो दे डोंट यूज टू ब्रिंग नॉन वेज फूड इन स्कूल एज वेल कॉलेज में भी वो सारी चीजें तो वहाँ पे भी लाइक यू नो जब भी कोई पूछ रहा हम सोचते कि नहीं ब्रो तू खा ऐसा कुछ करके
3: कॉलेज में कोई नहीं खाना लेके जाता भाई सब कैंटीन में बैठते हैं
2: नहीं कॉलेज इन द सेंस नॉट लिटरली वो वाला कॉलेज जो बैचलर डिग्री वाला जैसे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो सारी चीजें होती हैं व्हेन यू गेट अलोंग एंड देन यू नो ईट तो वो चीज
3: ओके
2: तो बट या बड़ा ही अच्छा लगा मेरा मेन सवाल तो कुछ और था आपसे पूछना एक्चुअली आप मुझे दे सकते हैं इफ यू कैन गिव मी इन क्विक थिंग दैट अगर आपके पास मौका मिलता आपके पास एक जादुई वॉच आ जाए एंड इफ यू गेट अ चांस टू ट्रैवल तो आप कौन सा समय जीना चाहेंगे लेकिन कंडीशन है दैट समय दैट आंसर शुड नॉट बी रिलेटेड टू योर लाइफ
3: ओह माय गॉड इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू माय लाइफ एंड इफ आई हैव टू
2: कौन से एरा में यू वांट टू गो एंड लिव अगर आपके पास ये
3: 90s इज द बेस्ट
2: 90s
3: जो 90s का डेकेड था वो बेस्ट डेकेड था चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो मूवीज हो चाहे वो एक अपनापन हो वो सब कुछ बहुत था 90s के
2: right.
3: 90s के दौरान तो आई वुड लव टू गो बैक टू 90s
2: राइट आई टेक दैट एज अ
3: व्हाट अबाउट यू
2: मेरा तो आप शायद हंसोगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 90s ऑफ कोर्स उतना मेरे को याद नहीं बट स्टिल आई रिमेंबर सम बिट्स एंड पीसेस तो मैं वो तो नहीं जीना चाहूंगा बट आई वांट टू लिव द टाइम व्हेन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बट वी नेवर लिव्ड सो आई वांट टू गो बैक 7000 ईयर बिफोर
3: ओह माय गॉड
2: you know what happened right
3: yes that prehistoric
2: yeah the kya bolte hain ram setu bana hai aur main usko bahut bada fan hu like mere ko jitni baar dikha do jitni baar suna do jitni baatein kar lo us talk ramayan ke upar main rukta nahi hu
3: like oh, wow
2: मुझे और इनफैक्ट आजकल के पॉडकास्ट में सुनो जहाँ पे और भी चीजें बाहर आ रही दैट यू नो ये ऐसा नहीं हुआ था ये ऐसा हुआ था सो नाउ पीपल आर लाइक मोर रिलेटिंग इट
3: एंड
2: दैट मेक्स सेंस एज वेल
3: कि ये
2: मतलब कहते ना कि माइथोलॉजी टाइप नहीं है इट एक्चुअली हैपेंड
3: इट हैपेंड सो या
2: बट परफेक्ट थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए वैसा कभी हुआ नहीं है तो आज हमने वो करके दिखा दिया जो शायद आज से पहले किसने किया नहीं होगा
3: नहीं किया
2: बट थैंक यू
3: वेलकम केतन टेक केयर
2: या
3: बाय

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है और आज का सनसेट होगा 5:13 पे। वैसे बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। इफ यू आर मेकिंग अ टाइम आउट, डू विजिट आउटसाइड।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, एक बज चुकी है और मेरा एक सवाल है यहाँ पे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप वैसे ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने चलाते हैं, बट डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वाज रिकॉर्डेड फॉर बॉलीवुड? कौन सा गाना है वो रिकॉर्ड हुआ था और कब रिकॉर्ड हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? जी हाँ, आप ही मुझे 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट उसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। बट उससे पहले आप मुझे मैसेज भेजिए। वैसे इस आर में काफ़ी कुछ बातें होनी है, यानी कि आपके पास मौके भी दिए जाएंगे जहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कुछ कॉल भी कर सकते हैं रिगार्डिंग लंच टाइम रेंट लाइन। मैं आपको बताऊंगा कब। उसके साथ ही आप बॉलीवुड की खबरें भी एक्सपेक्ट करिए मेरे साथ, मेरे से, जहां पे मैं आपको बताऊंगा, और साथ में देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी। बट इतने अमेजिंग यू नो शोज हो रहे हैं यहाँ पे हमारे। अभी ओवर द वीकेंड भी एक शो हुआ था और अभी कुछ टाइम आने वाले हैं जब और भी इवेंट्स होंगे, तो यस आप कहीं मत जाइए, सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान के लिए। जी हाँ, उनका शो देखने जाना है ना आपको, तो बस बने रहिए बिकॉज यहाँ पे एक सवाल करने वाला हूँ आपको, मौका दूंगा, मुझे कॉल करिएगा और जैसे ही आप सवाल डन करेक्ट देंगे तो जवाब उसके अगर करेक्ट देंगे तो ऑफकोर्स आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और वो आपको मौका देगा एक डबल पास जीतने का। तो कब कैसे थोड़ी देर में बताऊंगा, आप बस कनेक्टेड रहिए, एंजॉय करिए पार्टी ऑन माय माइंड। यो यो हनी सिंह, के एंड शिफाली की आवाज में
0: बचाओ क्या

0: को ना मॉडिफाई करते हैं। और मुझे आप बताइए कि आज आपने क्या ऐसी फेस चीज की है, कौन सी ऐसी चीज फेस की है जो सचमुच बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग थी। मैं अपना बताता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ एंड आई कुड सी दैट यू नो देयर इज अ स्पेस राइट एंड आई हैव अ बेबी विद मी, खुशबू भी मेरे साथ ही थी कार में एंड वी वर गोइंग नॉर्मली एंड वी वर डिस्कसिंग लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग एंड मोटरवे था एंड आई नो दैट द स्पीड वॉज समवेयर अराउंड आई थिंक 50 or 55 क्योंकि ट्रैफिक था उस टाइम। एंड सडनली एक बंदा उधर से मेरी लेन में आता है विदाउट इवन गिविंग द इंडिकेशन। मैं इतना हक्का बक्का हो गया और खुशबू को लगा कि मैं स्टंट दिखा रहा हूँ वहाँ पे, वो मेरे पे जो चला लिया होगी ये ऐसे कैसे ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने क्या किया, मैं तो शांति से चला रहा हूँ उधर से बिना इंडिकेटर के आया। बट आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि गलती कोई और करता है, सुनाई आपको देता है मतलब डांट आपको पड़ती है, गुस्सा मेरे को ऑब्वियसली बीवी पे गुस्सा तो निकाल नहीं सकते हैं, बट यस उस पर भी गुस्सा निकाल नहीं पाया क्योंकि बहुत दूर था वो, there was no point of me stopping the car or ऐसा करके। फिर actually पता क्या है कि हॉर्न बजाने का मन किया, मेरा बाद में दिमाग आया कि मैं हॉर्न भी तो बजा सकता था उस पर, बट मैं सोचा कि नहीं यार छोड़ो यार, जब हो गया सो हो गया, there is no point of, क्योंकि हो सकता है उसने जानबूझ के नहीं किया हो या फिर हो सकता है वो भी लेफ्ट राइट लेते वक्त कर दिया हो। बट यस आज आपके साथ क्या ऐसी रेंट लाइन हुई है, डू लेट मी नो, आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। बट यस फोन लाइन जो है आपके लिए मैं शुरू करने वाला हूँ ताकि आप मुझे कॉल करेंगे और बताएंगे, शेयर करेंगे आज कुछ ऐसी जो घटना हुई हो आपके साथ, विच यू वुड लव टू शेयर विद अस थोड़ी देर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
9: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
10: Bunnings Trade is here to help get insulation jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswool R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.
11: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that five-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Lunch time, rant line.
2: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है. जल्दी से फोन करिए मुझे 0800-004-866 पे और बताइए क्या ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई आज के दिन, या फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है दैट गलती कोई और करता है बट सजा तो नहीं लेकिन डांट आपको सुननी पड़ती है. अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए और बताइए. वैसे आपके वीकेंड आपका कैसा गया? मेरा बड़ा ही ठीक ठाक था एक्चुअली. आई हैड इनफ रेस्ट एंड ऑफ कोर्स अब तो टाइम ऐसा आ चुका है दैट वी एक्चुअली नीड टू लुक आउट फॉर चाइल्ड केयर. जी हाँ, क्योंकि अब ऑफ कोर्स 6 महीने का हो चुका है यहाँ 6:30 का, तो नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू गो एंड चेंज द एनवायरमेंट, जस्ट नॉट सिटिंग एट होम एंड मम्मी को एंटरटेन करने के बजाय. चलिए फ़ोन उठाते हैं सबसे पहले. तो हेलो
3: कितन भाई, नमस्ते.
2: नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? किससे बात हो रही है?
3: बढ़िया सर, मैं रवि बात कर रहा हूँ वेब फिट न्यूज से.
2: रवि भाई आप वही हैं जो आप हमेशा मैसेज करते हैं?
3: थैंक यू. तो दो बातें बोलनी थी मुझे, एक तो बोलना था दूसरा पूछना था.
2: हाँ जी बताइए.
3: पहला तो पूछना ये है कि केतन भाई अगर लंच टाइम पे ये शो करते हैं तो केतन भाई लंच कब करते हैं?
2: वेरी गुड क्वेश्चन. मैं एक्चुअली इधर ब्रेकफास्ट हैवी करके आता हूँ, लाइक ब्रंच ही हो जाता मेरा मोस्टली 11:30, मतलब 11:15-11 बजे करीब, या फिर मैं कभी कभी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ. तो जब आप गानों को एंजॉय करते हैं तब मैं अपना पेट को एंजॉय कर रहा होता हूँ, मतलब खाने को एंजॉय कर रहा होता हूँ, नॉट पेट को एंजॉय नहीं करता.
3: क्या बात है. और आजकल आपको मैं सिंगिंग शोज में देख रहा हूँ तो मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, आप यू आर डूइंग रियली वेल.
2: थैंक यू मींस रियली अ लॉट. बट डू कम, मैं पोस्ट डालूंगा नेक्स्ट शो मेरा कहाँ है. वी वुड लव टू हैव यू ओवर देयर एज वेल. आइए अपने परिवार दोस्तों के साथ एंड एंजॉय द नाइट वन विद मी.
3: बिल्कुल. थैंक यू सो मच भाई. है ना. No और बस भाई वेब फिट न्यूज की तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि भाई घर में अक्सर होता है ना कि आप करते, अगर बड़े भाई हो या आप डैड हो तो गलतियां आप करते हो, गलतियां कोई और करता है लेकिन अंत में नो आपको लगता है कि यार ये इसी नहीं की होगी.
2: हाँ.
3: तो आप डांट सुन भी जाते हो, चलो ठीक है यार कोई तो बच गया घर में, है ना.
2: बट कभी उसका रिवेंज लेने का मन नहीं करता, क्योंकि बचपन में हम तो बहुत वैसे होते थे कि नहीं यार मैं क्यों सुनूं.
3: नहीं नहीं कुछ क्या होता है ना, प्यारा सा सुई सा चेहरा सामने आता है, छट यार कोई बात.
2: वो भी है. That's so true. But thank you so much, Ravi bhai, aapke call ke liye. You have a wonderful day. Thank you.
3: You too, better. Take care.
2: चलिए एक और फोन उठाते हैं. अरे फोन कट गया. चलो इनसे बात होती है, राहुल भाई से. हेलो राहुल भाई, क्या हाल है?
4: बिल्कुल ठीक है केतन भाई. हैप्पी आफ्टरनून
2: टू यू टू. कैसा जा रहा है आपका आफ्टरनून? कैसा जा रहा है?
4: बहुत बढ़िया. देखो बाहर कितनी बढ़िया सनशाइन, विटामिन डी ले रहे हैं.
2: अरे बेस्ट है यार, बेस्ट है. हमें भी लग रहा है, कभी लगता है कि स्टूडियो थोड़ा ओपन करवा लें हम ऊपर से, ताकि हम भी
4: बिल्कुल थ्रू आउट नहीं बनना. रेन है कल से शुरू से पहले एंजॉय कर लेते हैं.
2: और क्या, बेस्ट है. बताइए रेंट लाइन आपका क्या है?
4: बस मैं एक चीज. हाँ जी क्या बोला आपने?
2: मतलब रेंट लाइन क्या है आपका, लाइक जो मैंने टॉपिक बताया था ना आपको कि कभी ऐसा हुआ है दैट या तो एक तो ये कि अगर आपने आज कुछ फेस किया हो ऐसी चीज जो बिना बात के किसी और ने ऐसी कुछ गलती करी है जिससे आप इरिटेटेड हो गए हो, बट ऑफ कोर्स कुछ कर
4: नहीं पाए. नहीं, आज का दिन ही बहुत ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, ना मैं करना चाहूंगा. बहुत ही ब्यूटीफुल है, सब बढ़िया जा रहा है और आगे भी भगवान करे सब अच्छा ही जाएगा.
2: बिल्कुल.
4: और मेरे को एक आपसे बात पूछनी थी केतन भाई, वो सिंगिंग के लिए, बिकॉज मुझे भी गाने का शौक है.
2: अरे वाह. Nice.
4: और मुझे मतलब वैसे तो मैं ऐसी ग्रुप अपना फ्रेंड्स के बीच में ही गाता हूँ, छोटा मोटा ऐसे ही. तो मुझे थोड़ा सा जैसे अभी पता लगा मुझे लास्ट कॉलर से कि आप भी सिंगिंग में हैं और पैशन है आपका. हाँ, मैं कैसे एंट्री कर सकता हूँ? आपका कोई ऐसा कुछ कंपटीशन होता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है हम असम से?
2: हाँ ये तो, अभी बेसिकली हम तो ये करेंगे. देखो अभी हमारा अगर आप सिंगिंग पसंद करते हैं तो हमारा रेडियोथॉन होगा साल के एंड में, तब डेफिनेटली यू कम हियर एंड यू एंटरटेन. अगर आपके पास कोई ग्रुप है, बैंड है, कुछ है, तो यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हियर. यानी अदरवाइज द नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी दैट नेक्स्ट ईयर हम फिर से मई में करेंगे म्यूजिक मंथ, तो मे बी बाय देन यू जस्ट प्रिपेयर.
4: ये पहले से चल रहा था? ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है या पहले से ही चल रहा था?
2: ये रेडियोथॉन और म्यूजिक मंथ
4: जी?
2: नहीं, ये तो 13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए।
4: वो तो मेरे को आज तक पता ही नहीं चला इस चीज के बारे में।
2: ना ना, कोई बात नहीं।
4: दूसरी बट कभी मैंने इसमें वो नहीं किया, कभी वो ध्यान ही नहीं किया कभी, तो डेफिनेटली मैं टेक पार्ट लेना चाहूंगा।
2: सुनते रहो, हाँ आप बस सुनते रहो, तो हम ऑफ कोर्स ऐसे अपडेट डालते रहते हैं दैट कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो आपको ही पता पड़ेगा। बट मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए, अगर आप सिर्फ मतलब टाइम पास के लिए भी करते हैं या फिर इसको प्रोफेशनली देखते हैं, तो आई वुड रिकमेंड आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले लीजिए और एक गाना भी रिकॉर्ड करवा दीजिए, खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपको आगे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि लाइक यू नो दिस इज माई वोकल ऐसे करके।
4: और जब मैंने पहले तो भेजा था बट नहीं हो पाया था उसको सेलेक्ट, बट मैं कोरिया के जैसे सिंगर जैसे इस टाइप का,
2: हाँ हाँ,
4: तो जैसे बैकग्राउंड में अपना म्यूजिक चला दिया लाइक ऐसे यूट्यूब पे कुछ भी, टीवी में या पीछे किसी स्पीकर पे, देन आई सिंग दैट।
2: राइट राइट,
4: तो इस टाइप से ऐसा कुछ मेरा कोई ग्रुप नहीं है प्रोफेशनली या मेरे पास कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है
2: जी,
4: लेकिन ऐसा है कि बस नॉर्मल है, हाँ कॉन्फिडेंट है और वो है कि हाँ अच्छा लगता है और दूसरा के कर पाएंगे
2: बिल्कुल
4: मिलेगा
2: तो। मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम आपके खुद के पास प्लेटफॉर्म है, यू डोंट नीड टू हैव द फिजिकल प्लेटफॉर्म बाहर, आपके खुद के पास इंटरनेट है, आपके खुद के पास सोशल मीडिया है, तो आप वीडियो डालते रहे वहाँ पे और लोगों के थ्रू ही आपको पता पड़ता रहेगा कि लाइक कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना है और कहाँ कहाँ बेस्ट है।
4: हाँ जी, यही बात सही है।
2: बाकी एनीथिंग, जस्ट नो वरीज, एनीथिंग कुछ हो तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट डीएम मी, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, तो वहां से भी मैं आपको कुछ ना कुछ, I'll try my best to help you in any way.
4: Instagram पे आप किस उसे name से?
2: The singer साहेब, the singer साहेब,
4: the singer
2: साहेब, singer singer single नहीं भाई, मैं married हो चुका हूँ भाई, बच्चा भी है।
4: हाँ जी, singer singer है ना, singer
2: singer गाने वाला, the singer साहेब।
4: Okay, the singer साहेब। Okay.
2: हाँ जी,
4: SAHIB. Okay.
2: Cool. हाँ जी, साहेब SAHEB.
4: Oh साहेल, oh साहेब.
2: साहेब, हाँ जी, केतन कुमावत के भी नाम से करोगे तो उससे भी आ जाएगा।
4: Alright,
2: thank you, Ketan भाई। No worries, thank you so much, Rahul भाई. You also have a lovely day. Enjoy the sunny day outside. Bye bye.
4: Yeah, you too.
2: Yeah, thank you. Bye.
0: Lunch के मंच पे। Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक वेल एक सवाल मैंने आपसे किया था जहां मैंने पूछा था कि डू यू नो दैट ऑफ कोर्स वी लिसन टू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने जो हम यहां पे चलाते हैं बट डू यू नो दैट सबसे पहला बॉलीवुड गाना किसने रिकॉर्ड किया था वेल एनी गेसेस आई एम प्रीटी श्योर आपको नहीं पता होगा इनफैक्ट मेरे को भी अभी यू नो कुछ ही हफ्तों पहले कुछ ही महीनों पहले एक्चुअली पता पड़ा जब ऑफकोर्स यू नो आई वॉज जस्ट डूइंग लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल भी डाला है हमारे रोवा ऐप पे ऑफकोर्स यू कैन चेकआउट दैट एज वेल एंड मैं थोड़ी देर में शेयर भी करने वाला हूँ फेसबुक पे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं बट मैं बात कर रहा हूँ गौहर जान जी हाँ गौहर जान जो कि इंडिया की सबसे पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार है यानी कि आप देखिए आजकल के टाइम पे तो AI का जमाना है इतने गाने रिकॉर्ड हो जाते हैं इनफैक्ट इफ यू आर नॉट इवन दैट ग्रेट बट स्टिल यू कैन मैनेज टू रिकॉर्ड द सॉन्ग वाई बिकॉज मैं ग्रेट नहीं बोलूंगा बट इट्स जस्ट दैट इफ यू आर लिटिल बिट नॉट वेरी टाइट इन practicing the singing and all but still you can manage to record the song very nicely and very beautifully why because of the help all these technology jo aaj ke time pe but us time pe just remember everything recorded on live chahe music ho ya fir gana ho aur ek halki si mistake bole to starting se leke end tak fir se record karna sare instrument ko sare vocal part ko जस्ट इमेजिन कितना हार्ड और कितना टफ हुआ करता था आजकल तो हम टुकड़ों में भी गा लेते हैं टुकड़ों में सॉर्ट भी कर लेते हैं बट यस एक बहुत ही बेसिक सी एक कलाकार जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ बेहतरीन गायकी और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की हिम्मत के साथ इंडियन म्यूज़िक की दुनिया में बहुत ही बड़ी क्रांति लेके आई थी जी हाँ गौहर जान ने ग्रैमोफोन रिकॉर्डिंग के ज़रिए क्लासिकल सेमी क्लासिकल संगीत के उनका जो आम लोगों तक पहुंचाया और भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार भी बनकर म्यूजिक हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए उन्होंने दर्ज किया था बस उनकी ज़िंदगी जो थी वो कला संघर्ष सफलता और विरासत की एक बहुत ही यू नो इंस्पायरिंग कहानी है जो आज भी संगीत प्रेमियों को और जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उनको काफ़ी इंस्पायर करती है सो यस आई वुड हाईली रिकमेंड आप जाइए और पढ़िए मेरा आर्टिकल मैंने अभी जस्ट पोस्ट किया है और अभी मैं फेसबुक पे भी शेयर करूंगा तो यस उसे जाइए और एंजॉय करिए

What a beautiful song, यार इशक ज़ादे है. Have you seen this film? मैंने देखी है यार, मैंने देखी है. और honestly, वो मेरे को लगता है वो जो time था ना, early 2010s का, हाँ, तो वहाँ पे उस time पे ये film आई थी और इतनी सही लगी मुझे. Honestly बताऊँ तो मैं थिएटर में तो देख नहीं पाया, बट एक्चुअली स्क्रीन पे देखने के बाद मुझे लग रहा था कि यार इसको थिएटर में देखना चाहिए था. मुझे तो बहुत पसंद आई. आपको वैसे कैसे लगी आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे. बढ़िया. सभी की और भी बातें कर रही हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने आर्टिकल डाल दिया है, आप उसे पढ़िए वहाँ पे जाके, दैट हु इज़ गौहर जान, आप उनके बारे में सुन पढ़ सकते हैं. एंड अगर आपका कुछ रिव्यू है उस पे तो डेफिनेटली आप शेयर भी कर सकते हैं. बट यस, डू विजिट टू आवर फेसबुक पेज, वहाँ पे मैंने शेयर किया है. बट अभी के लिए एक बात बोलते हैं. ग्रीन, नेशनल ग्रीन पार्टी, अभी की लेटेस्ट खबर है, उन्होंने ये बताया कि अपने टैक्स पॉलिसीज में लगभग 800 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर की कैलकुलेशन एरर मिलने के बाद उसे करेक्ट करना पड़ा. ग्रीन पार्टी को लीडर क्लॉय सॉब्रिक ने इस गलती को एक टाइपो यानी कि टाइपिंग मिस्टेक बताया और कहा कि इसे पार्टी की ओवरऑल टैक्स पॉलिसीज या उसके गोल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. पार्टी की रिवाइज फिगर्स प्लीज रिलीज करके एरर को ठीक किया गया है. इस इश्यू को लेकर पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने ग्रीन की इकोनॉमिक प्लानिंग्स पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं. लेकिन सॉब्रिक ने बताया कि पॉलिसी का जो मेन कोर है, फ्रेमवर्क, अब भी बहुत ज़्यादा मजबूत है. सो लेट्स सी आगे कैसे होता है और किस तरह से ये इसका काउंटर देते हैं, दैट जो मिस्टेक्स की है टाइपिंग एरर जो कि 800 मिलियन डॉलर के बराबर है. माय गॉडनेस, दैट्स अ बिग अमाउंट. बट इसका टाइपो हुआ है तो देखिए अब उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं ये. लंच बॉक्स विद केतन. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
2: Lunchbox with Ketan.
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
4: हम
2: लंच के मंच पे।
5: वेलकम बैक। चलिए बात करेंगे कॉकटेल 2 के रिव्यू की, लेकिन उससे पहले एक फटाफट से गुड न्यूज दे देता हूँ। गुड न्यूज ये है दैट न्यूजीलैंड इज लीडिंग द चैप्टर। जी हाँ, 43 मिनट्स हो चुके हैं और अभी मैच हो रहा है इजिप्ट वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में फीफा वर्ल्ड कप। एंड यस, न्यूजीलैंड आर लीडिंग राइट नाउ। बहुत ही बढ़िया हुआ है। 15 मिनट जब हुए थे तब फिन सरमन की तरफ से ये गोल हुआ था। एंड लेट्स सी, अभी 43 मिनट्स हो चुके हैं, अभी और भी मैं अपडेट देता रहूंगा थोड़ी देर में। सो यस, बी हैप्पी एंड चीयर फॉर न्यूजीलैंड टीम। पर चलिए अभी कॉकटेल की भी रिव्यू ले लेते हैं। कॉकटेल 2 के एक लाइट और एंटरटेनिंग रिलेशनशिप ड्रामा है जो प्यार, दोस्ती और इमोशंस के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते दिखाती है। ये रिव्यू है इस फिल्म का। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मानी गई है। खास करके कृति की एक्टिंग को काफ़ी प्रेज मिला है। फिल्म के सॉन्ग्स, विजुअल्स और इमोशनल मोमेंट ऑडियंस को काफ़ी इंगेज करती है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स और व्यूअर्स का मानना है कि फिल्म ओरिजिनल कॉकटेल जैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती और कहानी कुछ जगहों पर प्रेडिक्टेबल लगती है। फिर भी अगर आप रोमांटिक ड्रामास और लव ट्रायंगल स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया वन टाइम वॉच हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये तो एक आर्टिकल में बताया गया है, बट मैं देखूंगा उसके बाद ही मैं रिव्यू बता पाऊंगा कि मूवी एक्चुअली कैसी है। बट अगर आपने देख रखी है तो मुझे आप टेक्स्ट कीजिए 5599 पे और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। बट आई फील पीपल शुड नॉट कंपेयर विद द ओल्ड, क्योंकि देखो कंपैरिजन ही ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा यू नो इट डजेंट लीव द गुड इम्पैक्ट। सो देखो दोनों की स्टोरी लाइन अलग होती है, दोनों की यू नो जनरेशन जो ये टाइम जो है वो भी अलग है। वो आई थिंक समवेयर अराउंड अर्ली 2020 में ही होगी, और सॉरी अर्ली 2020s में ही होगी, और ये अभी 2026 में रिलीज हुई है। सो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा, आई गेस 10 से ज़्यादा सालों का गैप है। सो यस, वी डोंट नो, बट लेट्स सी कैसा जाता है। एंड आपका अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें टेक्स्ट भेजिए 5599 पे, बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी।
2: दिल से

0: गूंजेगी।
1: किरणा नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वैसे काफी बेहतरीन दिन है बाहर, जैसे कि मैंने कहा कि आज सभी जादू बन के बैठे हुए हैं, यानी कि सब सोक कर रहे हैं सन इस ब्यूटीफुल विंटर पे। विंटर शुरू हो चुका है, खत्म हो चुका है, कुछ पता नहीं पड़ा। ऑनेस्टली इस बार ज्यादा उतनी ठंड पड़ी नहीं कंपेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। आपको क्या लगता है, मतलब इस बार की जो विंटर है वो सचमुच बहुत ही वैसी थी, ठाक है? बिकॉज ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टेइंग एज वेल। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो इतनी ठंड लगी नहीं मुझे, बट हो सकता है कि जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो उस एरिया में शायद बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बट यस, आप मुझे बता सकते हैं हाउ इज़ योर विंटर सो फार, आप बता सकते हैं मुझे 5599 पे। वैसे आप बने रहिए बिकॉज इस साल में काफ़ी कुछ बताना आपको, यानी कि स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप के अभी क्विक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। हाफ टाइम अभी चल रहा है एंड न्यूजीलैंड इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी वेल सो फार। अभी भी उनके अंडर 1-0 की लीड है इजिप्ट की। तो बस आप सुनते रहिए टू गेट मोर अपडेट अबाउट दिस फीफा वर्ल्ड कप एंड मेनी मोर अदर थिंग्स।
2: बचाओ क्या

0: One of my favorite song, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? मूवी सही थी वैसे, नो डाउट. एक्ट्रेस एक्टर भी काम अच्छा किया था, तुषार कपूर और करीना कपूर थे, लेकिन गाना जो था वो एक ही अलग लेवल पे था. इनफैक्ट मुझे याद है दैट दिस इज एक्चुअली होल्डिंग अ रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन 11 मिनट. जी हाँ, मुझे पता है इंडियन आइडल में जब राजदीप भाई, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे, वो गाना गा रहे थे इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ इन फ्रंट ऑफ सोनू निगम एंड ऑफकोर्स ऑल द जजेस, तब अनु मलिक ने कहा था कि ये जो गाना है ये हमने सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में रिकॉर्ड किया. यानी कि सोनू निगम आए, रिकॉर्डिंग सेशन में गए, हमने बस बताया कि ऐसे ऐसे गाना है और उन्होंने 11 मिनट में करके, और अनु मलिक ने बोल दिया आजा बेटा डन डन डन, चलता है चलता है. और अनु मलिक उसने बोले भाई मैं तो सिर्फ रियाज कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, रिकॉर्डिंग तो अब करूँगा. और अनु मलिक ने बोला नहीं हो गया बेटा, आजा आजा आजा, हो गया हो गया. बट सच ए ग्रेट राइट, आई मीन ये ऐसे ही नहीं आती, ये चीज़ ये तुक्का नहीं था, ये बेसिकली कहने का पॉइंट ये था कि काफ़ी सालों की मेहनत होती है उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है. इनफैक्ट आज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इवन इफ़ यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑल्सो यू आई डोंट नो इफ़ यू कैन बी दैट ग्रेट सिंगर जो अभी इस मुकाम पे हैं. बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर काम किया है. बढ़िया से हम कहीं पे भी कहीं तो कहीं आसपास तो पहुंच ही सकते हैं. सो यस, दैट इज़ व्हाट द रिकॉर्ड इज होल्डिंग. बट एज ऑफ नाउ आप बने रहिए, बिकॉज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट खबर, और वो ये है कि ऑकलैंड के एक व्यक्ति जो कि विलियम सोलोमन के नाम से हैं, उनको फेक GST रिफंड क्लेम्स की कोशिश करने के लिए 11 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. उन्होंने नवंबर 2023 से मई 2024 के बीच झूठे इनवॉइसेस और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके लगभग $250,000 से GST रिफंड क्लेम करने की कोशिश की थी, लेकिन इनलैंड रेवेन्यू की जांच के बाद पता चला कि उनके बिजनेस एक्टिविटीज से काफ़ी जो सबूत है वो सामने आए हैं और ये सारे नकली थे. यानी कि उनका जो जितना भी क्लेम था वो सब फर्जी था. और बट यस, अभी उनको 11 महीने की जेल हो चुकी है एंड होप कि ये चीज़ फिर से ना हो, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं दैट टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, और थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: केतन,
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे स्किप या रीप्ले।
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए अभी आपके लिए फोन लाइन में ऑन करता हूं, जहां पे आप मुझे कॉल करिए इफ यू वांट टू विन डबल पास फॉर वन एंड ओनली राहत फतेह अली खान। द लेजेंडरी सिंगर राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में एक अनफॉर्गेटेबल इवेंट लेने, इवेंट करने, आपके सामने शो प्रस्तुत करने। बट यस, आप कॉल करें उससे पहले समझ लीजिए, आप कॉल करेंगे, मैं यहाँ पे आपसे तीन सवाल करने वाला हूँ, और वो तीनों सवाल के जवाब अगर आपने सही दे दिए, दैट मीन्स आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और आप जीत सकते हैं डबल पास फॉर द शो विच इज हैपनिंग ऑन 25th ऑफ जुलाई द ट्रस्ट एरिना में। जी हाँ, प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोटलेव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन। जी हाँ, यस, इफ यू आर वन ऑफ देम, इफ यू वांट टू विजिट एंड एक्सपीरियंस द लाइव परफॉर्मेंस बाय राहत फतेह अली खान। वैसे कंडीशन ये है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला रैपिड क्वेश्चंस होंगे आपके पास, तीन क्वेश्चन पूछूंगा और तीनों के आपको मेरे को जवाब देने फट जैसे ही दिया तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और आप बन सकते हैं विजेता फॉर द डबल पास, जिसका डिस्क्लोजर होगा बहुत ही जल्द। वैसे टिकट आप खरीद सकते हैं dryticket.com पर जाके। तो यस, जल्दी से फोन उठाइए 0800-004-866 पे कॉल करिए, और ये रहे मेरे तीन सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा वंस यू कॉल मी। मैं यहाँ पे ऐसे फट से रिवील नहीं कर सकता क्वेश्चन, आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। लक ट्राई कीजिए और लेट्स सी यहाँ पे कौन सबसे बड़े फैन है फॉर राहत फतेह अली खान। यार, किसी को फ्री टिकट नहीं चाहिए क्या? अभी तक तो कॉल्स आ चुके होते, कॉल्स। चलो ट्राई करो, काफी आसान सवाल होंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। सो यस, आप अपना अलग ट्राई करिए एंड देयर यू गो, फर्स्ट कॉलर का फोन आ गया है। हेलो।
3: हेलो,
2: क्या हाल है, किससे बात हो रही है?
3: अमित
2: भाई, क्या हाल है?
3: ऑल गुड, हाउ अबाउट यू?
2: ऑल गुड, थैंक यू। सो यू ऑल सेट टू गो फॉर द रैपिड फायर? नो? यस ओके। वेल, पहला सवाल ये है कि राहत फतेह अली खान ओरिजिनली कहां से है?
3: ओरिजिनली इज फ्रॉम,
2: या दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। या यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, या आपको फटफट से बताना है जवाब।
3: आई थिंक इज फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तान।
2: राइट, आप कंट्री ही देते तो भी चलो, थोड़ा सा डिले हुआ बट चलो एक और मौका देते हैं आपको। उनके फैमिली रिलेशन में एक कोई है जो काफी बड़े लेजेंड हैं, क्या नाम है उनका, जो खुद सिंगर है?
3: उस्ताद फतेह अली खान।
2: कौन कौन?
3: उस्ताद
2: फतेह अली खान।
3: या
2: आपने नाम तो दिए नहीं, आपने उसका सरनेम और उनका जो टैगलाइन है जो उनको अचीव हुआ है वही बोला है।
3: बट उनका पात्र का नाम कुछ फारूक, आई थिंक, आई डोंट नो, बट या
2: नो वरीज। और एक आखिरी सवाल करते हैं आपसे, तेरे मस्त मस्त दो नैन कौन से फिल्म का गाना है?
3: या दैट सलमान खान एंड सलमान खान, व्हाट्स द नेम, इट्स दबांग।
2: चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए, एंड विल पुट योर नेम ओवर देयर। थैंक यू, यू हैव अ लवली डे। चलिए फटाफट फोन उठा लेते हैं। हेलो,
4: हाय।
2: हाय, हाउ आर यू?
5: हाय,
4: आई एम गुड, थैंक यू। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर प्रोग्राम एंड आई जस्ट स्टॉप माय कार टू आंसर द क्वेश्चन।
2: अरे क्या बात है। चलिए बताइए, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका भी, ताकि आप भी अपने नेक्स्ट पड़ाव पे जा सके। सो यस, डू लेट मी नो, आप मुझे बताइए कि ओरिजिनली जो उनका जो म्यूजिक स्टाइल है वो कौन सी कैटेगरी में आता है?
4: सूफी।
2: राइट, एंड देयर इज वन मोर वर्ड।
4: सूफी कलाम है।
2: राइट, ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट कितने साल पहले ऑकलैंड में आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी? व्हिच ईयर वाज इट?
4: इट वाज 2 इयर्स बैक।
2: या व्हिच ईयर वाज इट?
4: 2024।
2: परफेक्ट, वेरी गुड इन कैलकुलेशन। वेल, ये जो गाना है सांसों की माला हाँ? में जो भी लेटेस्ट उन्होंने रिप्रेजेंट किया है
4: हाँ?
2: उसके सिंगर कौन है? अरे क्या बात है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. आप डेफिनेटली ड्रॉ में जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर द कॉल एंड
4: थैंक यू,
2: गुड लक टू यू. वैसे आपका नाम क्या बताया आपने?
4: थैंक यू. मेरा नाम है सारा.
2: सारा, परफेक्ट. थैंक यू, थैंक यू सो मच सारा. यू हैव अ लवली डे.
4: यू टू. थैंक यू, बाय
2: बाय. वेल, ये थे हमारे लकी कॉलर जिन्होंने सारे जवाब सही दिए हैं, तो इनका नाम जा रहा है ड्रॉ में.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, why the new workplace stars are a very different breed and how to be one, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे. लेकिन अभी हाल फिलहाल देखिए यार, मैं मतलब बाहर कॉफी लेने क्या चला गया 2-5 मिनट 10 मिनट और अंदर आके देखा स्कोर, भाई न्यूजीलैंड पीछे रह गई. अब इजिप्ट इज ऑन 2 लीड के साथ, यानी कि 2 गोल्स मार दिए हैं इन लास्ट 10-15 मिनट्स. अभी अगर देखें तो स्कोर कार्ड, न्यूजीलैंड इज स्टिल ऑन 1 बट इजिप्ट ने 2 गोल से बढ़त ले ली है. 1 गोल एक्स्ट्रा ऑफकोर्स मोहम्मद सलाह ने 67 मिनट में किया है और मुस्तफा फिजो ने 58 सेकंड में, यानी कि अभी 72 चल रहा है, यानी कि 15 मिनट पहले ये स्कोर की शुरुआत हुई थी. और बैक टू बैक एक तरह से, अभी एक और अगर हो जाता है तो हैट्रिक हो जाएगी उनकी. होपफुली यार ये चीज ना बिगड़े तो बेस्ट रहेगा. Not so good, yeah, not so good. But let's see, इसके बारे में तो हम और भी चर्चा करते रहेंगे जैसे ही कुछ अपडेट आता है. बट अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ दैट क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के क्या अपडेट है वो अब फटाफट से आपको बता देते हैं. वैसे आज देख लो, कल मैच है बिटवीन न्यूजीलैंड वर्सेज स्कॉटलैंड. ऑफकोर्स न्यूजीलैंड वी आर सपोर्टिंग एंड न्यूजीलैंड मेरे को लगता है जीत भी जाएगी. बट यू नेवर नो, यू शुड नॉट बी यू नो ओवर कॉन्फिडेंट विद एनी सिचुएशन एनी थिंग बिकॉज है भी T20 वर्ल्ड कप. यू नेवर नो यार कब क्या पासा पलट जाए. इनफैक्ट काफ़ी छोटी छोटी टीमों ने भी बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, तो वी आर मतलब फिंगर क्रॉस. बट ओवर द वीकेंड मैच हुआ बिटवीन साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया. साउथ अफ्रीका ने 161 बनाए थे 4 विकेट खोकर, जवाब में सिर्फ और सिर्फ 3 रन से चूक गई, 4 रन से चूक गई इंडिया और 158 पर 7 विकेट खोकर 6 विकेट से साउथ अफ्रीका ये मैच जीत चुकी है. और अगर पॉइंट टेबल की भी अगर बात करें तो इट इज़ एक्चुअली लुकिंग काइंड बिकॉज इंडिया वॉज ऑन सेकेंड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. Actually, they are still on second after Australia. South Africa, जीत के बाद भी तीसरे नंबर है because point table में India is way high, plus 2.5 की run rate है. और New Zealand की अगर बात करें तो group B में New Zealand is on third. New Zealand को कल का मैच जीतना ही होगा to come up because जो पहले की 2 टीमें हैं England और West Indies, उन्होंने 3 खेले और तीनों के तीनों मैच जीते हैं.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
3: TV Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5pm with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday 5 to 9pm. JB, you've done it again.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond, and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
10: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे
8: हम Tech Talk.
12: Well, Tech Talk की बात करें उससे पहले आपको ये चीज बता देते हैं that yes, अगर आपके Easter break के कुछ plans हैं, वैसे आप मुझे बता सकते हैं आपके प्लान्स क्या हैं ईस्टर ब्रेक के, और अगर ईस्टर वीकेंड के अगर कुछ प्लान है तो थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बना के रखिएगा, बिकॉज हम आपके लिए लेके आने वाले लॉन्ग वीकेंड के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ क्या जल्दी बताएंगे। थोड़ा सब्र करिए, अभी तो माहौल बनाना चाहिए थोड़ा, ना हर एक चीज़ का माहौल बनाएंगे तभी तो उसका मज़ा आएगा। जो एक्साइटमेंट जब बढ़ती है किसी चीज़ की तो उतनी ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि यार क्या कब आएगा, एज लॉन्ग एज चीज़ बहुत अच्छी हो। बट इसकी हम गारंटी देते हैं चीज़ बहुत अच्छी होने वाली, और आप सचमुच बोलोगे कि इट वॉज वर्थ वेटिंग। बट यस अगेन नो देयर इज नो ओरे, एक और अपडेट, अभी जस्ट एक और गोल हुआ, यानी कि अब न्यूजीलैंड इज वे बैक। तीसरा गोल मार दिया इजिप्ट ने 82 मिनट, यानी कि जस्ट नाउ। किसने मारा अभी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे। आई फील लाइक नहीं, असिस्टेड बाय मोहम्मद सलाह, तो ट्रेजी ने गोल किया है ये तीसरा, यानी कि हैट्रिक हो चुकी है इजिप्ट की तरफ से। न्यूजीलैंड इज वे बैक नाउ। यहाँ से आना थोड़ा ऐसा नामुमकिन तो नहीं है, बट होपफुली कम बैक करे और तीन गोल न्यूजीलैंड भी मार ले ताकि मैच जीत जाए। बट यस टेक टॉक में एक नई चीज मैं बताना चाहूंगा, एक लेटेस्ट मैंने देखा है, एक स्पेक्स आया है ग्लासेज यू वियर, एंड एक्चुअली वाइल लुकिंग अराउंड यू कैन एक्चुअली रिप्लिका योर फोन। फॉर एग्जांपल अगर आपको फोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं उस ग्लास को और ग्लासेस को, और उसी का डिस्प्ले एक एक्स्ट्रा स्क्रीन बना के आपके सामने रख देगा। सो बेसिकली वाइल यू वॉचिंग द स्पोर्ट्स यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर योर फोन एज वेल। सो यस दैट इज Great tech I have found, but थोड़ा सा costly है तो पता नहीं it is worth buying or not। मैं बस review का wait कर रहा हूँ, अगर review अच्छे रहते हैं, successful रहते हैं, तो मैं बताऊँगा आपको कि people are loving it और नहीं।

ना दिखाओ। शैतान ने सिरे के हम हमें परी ना दिखाओ। ये आग ऐसी है इस सावन की झड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं। जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
3: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains and most ferries with any of them. Just turn up, tag on and save when you ride with Auckland Transport.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
5: Kogan Mobile. True Aussie value.
4: Terms and conditions apply.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
8: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
9: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
10: हम टाइम चेक। To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. It's almost over in the All-Whites' second FIFA World Cup match. They were down 3-1 to Egypt deep into the second half. More coming up in sport. A registered nurse has been found in breach of the health code for strip-searching mental health patients. Complaints were made to the Health and Disability Commissioner about the care of two patients at an Auckland facility. An investigation found both policy and a colleague's advice were ignored, while one of the searches was done off the books. The staffer no longer has a practicing certificate. Talks between the US and Iran and Switzerland have been positive and constructive, according to mediators Qatar and Pakistan. The parties have agreed to establish a high-level committee which will provide political oversight on mediation and work towards a final deal within 60 days. Auckland Uni researchers are seeing whether zinc can alleviate autism symptoms. The world-first study is testing the effects on human brain cells grown in a lab. Team lead Johanna Montgomery says they've already found positive results in tests on mice.
12: Zinc can reverse some of the autism behaviours that we see in animal models. But more recently, we've focused on wanting to know what does zinc do to human brain cells.
11: To football updates brought to you by Hisense. A nightmare second half for the All Whites against Egypt, conceding three goals in a 24-minute spell. It's deep into the second half. The All Whites had led 1-0 at halftime, Finn Sermon scoring in the 15th minute. And All Blacks coach Dave Rennie's 34-man squad, plenty of reaction about Hurricanes co-captain Duplessis Karifi missing out, and Anton Lennett-Brown making the cut after taking a sabbatical in Japan.
13: Sports News.
10: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.5 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज को ऑलमोस्ट फाइन है, कल हल्की सी होने बारिश होने के चांसेस रहेंगे।
15: Coffee break with Sandy.
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
14: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. वर्ल्ड कप के बारे में बातें करते हैं, फीफा के बारे में. तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया यार. न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खासा लीड कर रही थी पहले, और अब देखो इजिप्ट की 3-1 के साथ जीत हो चुकी है. सुपर्ब सेकेंड हाफ कमबैक था टू डिफीट वाइट फर्न्स. सो वैंकूवर में ये हुआ, जहाँ पे एक हिस्टोरिक फर्स्ट एवर विक्ट्री है इजिप्ट की फीफा वर्ल्ड कप में. सो टेकिंग ह्यूज स्टेप टूवर्ड्स द नॉकआउट स्टेज. न्यूजीलैंड को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली थी. दे डिफेंडेड विद डिसिप्लिन, मेड द मोस्ट ऑफ अ सेट पीस. लेकिन एट हाफ टाइम न्यूजीलैंड जो थी ऑर्गेनाइज तो थी, लेकिन कन्फ्यूज्ड भी थी. बिकॉज इजिप्ट जो थी उस समय पर क्लियर कट उसने चांसेस लिए, एंड या 3 goals एक्चुअली में बना लिए. सो डिस्पाइट इनकरेजिंग फर्स्ट हाफ, सेवरल इशूज थे जिसकी वजह से All Whites ये मैच नहीं जीत सकी.
15: शादी कर सकते हैं
16: क्वीन विक्टोरिया की तरह.
15: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिल फरेब.

बज के 12 मिनट हो चुके हैं, 22 जून है आज। वैसे कल का जो दिन था 21 जून, 21st जून वॉज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डे इन न्यूजीलैंड, मतलब यहाँ के हेमिस्फीयर का ये शॉर्टेस्ट डे था एंड दूसरे हेमिस्फीयर का वो लॉन्गेस्ट डे था। सो इसके बाद से बोला जाता है कि सर्दियों के जो दिन हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तो सर्दी भी ठीक से शुरू नहीं हुई है तो डिफरेंस तो खैर क्या ही क्रिएट होना है। बट या एक ओवर द वीकेंड अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिली, मैच बहुत ही ज़बरदस्त था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। आई एम टॉकिंग अबाउट FIH वेमेंस नेशन कप, ये फाइनल हुआ था यहाँ पे न्यूजीलैंड में, जहाँ पे इंडिया की हॉकी टीम ने, इंडिया की वेमेन हॉकी टीम ने डिफीट किया न्यूजीलैंड को 2-0 के साथ इन द फाइनल। सो जिससे अनबीटन कैंपेन इन्होंने फिनिश की। सो दिस इज देयर सेकेंड टाइटल इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री। इंडिया स्कोर्ड अर्ली थ्रू नवनीत कौर एंड देन उसके बाद सुनलिता टोपो ने डबल किया बिफोर द हाफ टाइम एज वेल। सो इंडिया की जो डिफेंस थी काफ़ी रॉक सॉलिड थी इन द सेकेंड हाफ, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड सेकेंड हाफ में कम्प्लीटली शट हो चुकी थी। गोलकीपर सविता, शी मेड वेरी नाइस एंड वेरी क्रूशियल सेव्स, जिससे क्लीन शीट जो है इंडिया के लिए बनी रही। ये विन काफ़ी मैटर करती है, सेकेंड नेशन कप टाइटल है इंडिया के लिए। पहला टाइटल मिला था इंडिया की हॉकी टीम को, वुमेन हॉकी टीम को 2022 में, एंड जिससे यू नो काफ़ी अच्छा है कि ये टाइटल भी मिला है। इनफैक्ट ये जो टूर्नामेंट था, अगर आपने मिस आउट किया है इसके स्कोर्स, इस टूर्नामेंट में

0: की पूरी गेम जो थी ये इंडिया के हाथ में ही लगी. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. दो बहुत अच्छा लग रहा है कि वेमेन हॉकी टीम जो है नॉट जस्ट इन बॉलीवुड लाइक चक दे इंडिया बट इन रियल भी टूर्नामेंट्स में अनडिफीटेड हो रही है.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

अमित मिश्रा एंड शिल्पा राव की आवाज में गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे न्यूजीलैंड मेड चिल्ड्रन सीरीज है जिसे इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है। सो न्यूजीलैंड मेड चिल्ड्रन सीरीज है एंड इसका नाम है बिग सीज एंड लिटल्स। बिग सीज एंड लिटल्स जो है ये एक्चुअली में गोल्डन टॉवर अवार्ड इसको मिला। ये एक एनिमेटेड शो हुआ था जिसको गोल्ड टॉवर अवार्ड मिला है। सो दिस इज टॉप अवार्ड एट न्यूयॉर्क फेस्टिवल टीवी एंड फिल्म अवार्ड्स, जिससे इट इज़ मेकिंग इट वन ऑफ द स्टैंड आउट चिल्ड्रन प्रोडक्शन ऑन द ग्लोबल स्टेज अगर देखा जाए। सो व्हाट द शो इज अबाउट, इट फॉलो टू पेंगुइन फ्रेंड्स। दो पेंगुइन फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है लिटिल ब्लू और एक का नाम है बिग ब्लू। सो बाद में उनकी कहानी है और बहुत सारे इसमें न्यूजीलैंड रेफरेंसेस है, कीवी रेफरेंसेस है इसमें। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ कीवी चिल्ड्रन बुक सीरीज। सो जो प्री स्कूल एंड अर्ली प्राइमरी किड्स को एम करती है। सो इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ बुक्स अपने बच्चों के लिए, यू नो, थोड़ी इंटरेक्टिव बुक्स आप इस समय पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बुक जो एक्चुअली में आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ह्यूमर, इमेजिनेशन एंड जेंटल लाइफ लेसन्स भी हैं। सो दिस इज़ ओनली चिल्ड्रंस शो टू विन गोल्ड इन इट्स कैटेगरी बाय द वे, इसीलिए इट्स ह्यूज एंड इट्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूजीलैंड बट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली नाउ। सो हाइलाइट्स में कीवी स्टोरी टेलिंग है दैट्स ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। सो उसको बहुत ही अच्छे वे से, हार्टफेल्ट वे से एक्चुअली में इसमें बताया गया है। सो एनिमेटेड है बिग सीज एंड लिटल्स, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम वाइटवा फ्री रेंज चिकन फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एंड डिलीशियसनेस फॉर दैट कोजी फैमिली नाइट फीलिंग ऑल द फील्स फॉर ऑल द मील्स।
2: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.

0: 3:34 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. अ वेरी गुड आफ्टरनून रुजवे, कैसे हो तू?
1: गुड आफ्टरनून सैंडी, बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया. हाउ वाज योर वीकेंड?
1: माय वीकेंड वाज क्वाइट नाइस एक्चुअली. इट्स ये बार वीकेंड पे आप बिलीव नहीं करोगे, सैटरडे को आई डिड मोर देन 30,000 स्टेप्स.
0: मोर देन 30,000 स्टेप्स?
1: या
0: क्या बात कर रहे हो, कितना चले तुम?
1: काफी चले यार. तो या सैटरडे वाज अ वेरी एक्टिव डे, अ लॉन्ग डे, एंड संडे वाज अ वेरी रिलैक्स्ड डे. सो
0: या मच नीडेड,
1: काइंड ऑफ वर्क्ड आउट वेल.
0: वेदर भी ऐसा था ना संडे का, रिलैक्स करने
1: वाला
0: था.
1: संडे का वेदर भी ऐसा ही था कि हां
0: कि अंदर ही रह सकते थे. इट वाज अ नाइस.
1: या या
0: बट ओह या गुड यार, गुड टू नो कि तुमने 30,000 स्टेप्स किए रुजवे, तुम चले हो इतना.
1: आई नो, मैं भी खुद सरप्राइज था.
0: जिसको चलना पसंद नहीं है
1: वही तो क्या करे, लेकिन अभी ना करना पड़ेगा थोड़ा बहुत.
0: सो हॉकी देखी नहीं होगी तुमने?
1: मैंने हॉकी नहीं देखी, लेकिन इंडिया जीती हॉकी में.
0: इंडिया जीती, यस आई नो, इंडिया की टीम जीती बहुत अच्छे से. एंड और क्या हुआ ओवर द वीकेंड? या समय रैना भी हुआ.
1: इंडिया हैज गॉट लेट इन सीजन 2. या हाउ कैन यू मिस दैट?
0: या या या आई सीन द एपिसोड.
1: फैमिली फ्रेंडली,
0: फैमिली फ्रेंडली एपिसोड एक्चुअली फील था वही.
1: इट्स लाइक समय रैना गेटिंग क्लोज टू कपिल शर्मा शो.
0: या मैंने बोला था ये पहले ना कि नेटफ्लिक्स पे अगर आ रहा है शो तो इसका मतलब है कि थोड़ा ट्विस्ट रहेगा.
1: या या
0: नेटफ्लिक्स पे यूजली जो कॉमेडी शोज आते हैं, मतलब जो कॉमेडी करते हैं, जब वो नेटफ्लिक्स पे आते हैं तो उनकी कॉमेडी थोड़ी रिफाइंड हो जाती है.
1: Yeah, so, we could say that.
0: We could say.
1: But it was, I liked it. I still liked it. I'm like a fanboy. Yeah. So anyways,
0: yeah,
1: I love it.
0: Contestants अच्छे लगे जो उसमें आए थे.
1: Yeah.
0: क्वालिटी कॉन्टेस्टेंट्स थे, आई विल से. काफियों को दिखाया नहीं उन्होंने ना, टाइम का पंगा रहता.
1: और वही चीज मिस कर रहे थे हम लोग
0: कि
1: जो ओजी फैंस है.
0: या कि उनको ये नहीं था कि फालतू के कॉन्टेस्टेंट कहाँ हैं. सो गाइज, अगर आपने कभी नहीं देखा है ना, अगर आपने कभी MTV रोडीज देखा हो, यू नो MTV रोडीज में जब कॉन्टेस्टेंट आते थे एंड कुछ कॉन्टेस्टेंट्स आर लाइक रियली टैलेंटेड और कुछ जो जस्ट आ जाते हैं वहाँ पे.
1: बट ये मैं पहले के जमाने का बोल रहा हूँ, जब भी रघु और राजीव हुआ करते थे.
0: वही वाला, वही वाला, रघु राजीव वाला. एंड रणविजय यूज्ड टू बी देयर.
1: रणविजय आल्सो यूज्ड टू बी देयर.
0: या सो उस समय का जो रोडीज है, काइंड ऑफ जब वो वहाँ पे रोस्टिंग करते थे, इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन अ थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स,
1: इन अ फनी वे,
0: इन मोर लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज पे. जैसे वहां पे तो हमें बीप सुनाई देता था, यहाँ पे बीप सुनाई नहीं देता.
1: अभी अभी बीप हो गया ना,
0: अभी नेटफ्लिक्स पे वो है ना,
1: यूट्यूब पे भी बीप आ गया है पूरा.
0: और मुझे लगा सिर्फ भाषा का ही नहीं यूज कर रहे हैं.
1: नहीं नहीं, हर जगह.
0: ओके,
1: सेम वीडियो है. सो इवन ऑन यूट्यूब इट्स गॉन नाउ, म्यूटेड.
0: काफी लोगों को इतना पसंद नहीं आया, बट देन अगेन आशीष चंचलानी ने पोस्ट किया इस चीज के बारे में. ही सेड कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पसंद आया, उन्हें ये कहना चाहता है कि बहुत फाइट लड़ी है कि ये करने में कि जो पिछला था वो हम रिपीट नहीं करेंगे गलती. तो जिसके कारण अब रिफाइंड वर्जन लेके आए हैं, तो एक्सेप्टेड, ये उनका कहना था.
1: yeah.
0: So, yeah, हमारे साथ शायद कोई शामिल होना चाहता है रुजवे इसके बारे में बात करने के लिए. गुड आफ्टरनून.
1: नहीं पा रहा हूं आज.
2: हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून.
0: यस,
2: दिस इज हम FM, राइट?
0: या दिस इज हम FM.
2: Hi, I'm Yogi here. Actually, I'd like to talk about some advertisement or some kind of program we would like to run.
0: ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, hold कीजिए, because अभी आप on air है live. ठीक है, line hold कीजिए बस. ठीक है, तो anyway गाना सुनते हैं रुजवे, then we get back.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 15.2 actual temperature. Mainly fine, but थोड़े बहुत clouds develop हो रहे हैं. Late shower का एक chance भी हो सकता है. South easterlies का साथ रहेगा. 5:13 पे होगा sunset. कल का दिन बारिश भरा होने वाला है.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge. Ow!
3: 4:03 हुए हैं. You're listening to the Drive Show with Sandy and Rizbe. आज 22nd of June 2026. Hi Sandy.
4: Hi Rizbe. A very very good afternoon to you. Yes, Drive Show आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. तुम्हें पता है आज जो हमारे ऑफिस में जो बाहर टीवी लगा होता है बड़ा सा, जहाँ पे हमेशा मैच देखा जाता है.
3: मैच हुआ वहाँ पे आज.
4: या तो उसको स्विच ऑफ कर दिया.
3: क्यों?
4: क्यों किया होगा स्विच ऑफ?
3: लोग काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ मैच देख रहे थे.
4: नहीं, न्यूजीलैंड हार गई.
3: वो न्यूजीलैंड हार गई आज?
4: आज के मैच में. सो इजिप्ट के अगेंस्ट जो मैच था, न्यूजीलैंड वाज लीडिंग एक्चुअली में फर्स्ट हाफ में, एंड देन सेकंड हाफ में इजिप्ट टुक ओवर. 3-1 के साथ जीत हुई.
3: 3-1 से इतना बुरा कर दिया सेकंड हाफ.
4: मैं थोड़ी देर में गई, सब टीवी वगैरह बंद पड़ा हुआ था.
3: ओह गॉड,
4: तभी पता चल गया हार रहे हैं.
3: बट स्टार्टिंग में लीड कर रहे थे.
4: स्टार्टिंग में लीड इन द फर्स्ट हाफ.
3: ओह कम ऑन यार,
4: इजिप्ट की एक्चुअली में फीफा वर्ल्ड कप में पहली जीत है.
3: इजिप्ट की भी पहली जीत है?
4: यस.
3: अरे यार ये तो फिर.
4: या
3: कम ऑन मैन.
4: एनीवे, दिस वाज ऑल अबाउट फीफा वर्ल्ड कप राइट नाउ व्हिच इज गोइंग ऑन. तो इसकी हाइप है. मैं देख रही हूं काफी न्यूजीलैंडर्स भी गए हुए हैं मैच देखने के लिए.
3: हां, काफी लोगों को बहुत पसंद है, बहुत फॉलो करते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू गो एंड ट्रैवल आल्सो ना. आपको मैच भी देखने का मौका मिलेगा, वर्ल्ड कप की मैच,
4: घूमने का भी
3: आपका उतना साइड बाय साइड हो जाता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. बट या ऑफ कोर्स जब आप वर्ल्ड कप के टाइम पे जाओ तो चीजें शायद थोड़ी और एक्सपेंसिव भी हो.
4: हाँ, टूरिस्ट के लिए उस समय पर एक्सपेंसिव हो जाता है काफी ज्यादा. बट या वैसे अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सूर्यवंशी, ही स्कोर द फास्टेस्ट 11 बॉल हाफ सेंचुरी.
3: अरे उसका क्या इनिंग्स रहा. आपको पता है ना सूर्यवंशी का
4: 15 ईयर ओल्ड.
3: या सो सूर्यवंशी का पूरा ड्रामा हुआ था. ये इंडिया ए और श्रीलंका ए के गेम के बारे में चल रहा है. जहाँ पे उनका वीडियो एक रिलीज हुआ था जहाँ पे सुपर ओवर तक मैच गई थी और फिर इंडिया की हार हुई थी. एंड देन देयर वाज अ फाइनल मैच इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए. और इसमें इंडिया ने पहले बैटिंग की और वैभव सूर्यवंशी ने भाई क्या तोड़ा. 11 ओवर में कुछ 150 रन हो गए थे. प्रोजेक्टेड स्कोर वाज 700 एट वन पॉइंट. इंडिया स्कोर 370 और समथिंग. एंड देन इन रिटर्न श्रीलंका, आई डोंट नो, उनके मैंने 10 ओवर तक फॉलो किया तो 2-3 विकेट चले गए थे उनके तब तक. सो आई डोंट नो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड. बट या it was quite a game. I think India won. Sri Lanka gave quite a tough competition. 311 score kiya unhone all out, but India won by 66 runs. So yeah, it was Vaibhav Suryavanshi. 29 balls mein 94 unhone score kiya fir se. Again he didn't get a century, like he went very close. And I think there was all-round performances from Sri Lankan team. Kafi logon ne acche scores kiye, but they got to 311 in the end.
4: Okay, well, quite interesting actually. Dekha jaye to over the weekend sports ke saath bahut bhara hua tha. For the people who love sports, unke liye kafi kuch tha. Ghar pe baith ke scroll karne ke liye, even switch karne ke liye channels.
3: Abhi ek aur ODI series hone wala na shayad England ke saath ya kuch usme.
4: Oh yeah, uske liye bhi squad jo hai wo announce ho chuka hai.
3: Rohit Sharma, Virat Kohli are in the squad, so yeah, quite a interesting one. Anyway, aur bhi updates aapke liye lekar aayenge, but aap sunte rahiye hum. Say what?

0: Trend.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना.

0: 4424।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
4: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर सन टूर्स, दैट्स 0800 478686। लिमिटेड स्पेसेस।
5: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
2: Kundi khadao. Ya seedha andar aao.
3: Main laun apna A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
4: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. 4:17 हुए हैं and 1st जुलाई से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी. कुछ नई नई चीज़ें आने वाली है, इम्प्लीमेंट होने वाली है, जिसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे. बट रिसेंटली पीएम ने बात की है एट पोस्ट कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके डिटेल्स भी हम शेयर करेंगे आपके साथ बस थोड़ी देर में.
5: ओके, अभी नहीं करनी है.
4: नहीं, अभी नहीं करने ना सैंडी. पहले तो अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इसके बारे में. मैंने देखा है कुछ कीवी सेवर को लेकर कुछ चेंजेस अनाउंस हुए हैं, बट आई थिंक दैट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स.
5: या लेकिन फिलहाल आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यू नो हम हॉलीडेज बहुत जल्दी एडवांस में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं. नाउ ईस्टर वीकेंड इज कमिंग अप. ईस्टर वीकेंड पे अगर आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है तो स्टे ट्यून, बिकॉज what if this Easter is not just a long weekend but sun, stories and crew heading off together.
4: Oof.
5: So stay tuned because something is coming up, something is cooking.
4: I would like to open the phone lines now for people to guess ki kya lagta hai, kya hai ye ho raha hai, like what is this teaser about. 0800-004-866 is the number. Give us a call over here. Kya lagta hai aapko?
5: What if this Easter was not just a long weekend but you know jab Easter weekend pe yahan pe record hai, badi barish hoti hai yaar Easter weekend pe, but what if it is sun, stories, chaos and a crew which is together.
4: Wow. Okay. Yeah. Okay. 0800-004-866. Any takers for what this could
5: be? Any hint? आपको क्या लगा? Hint क्या बोल? Any guess?
4: आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा?
5: क्या हो सकता है? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं?
4: Yeah. और 5599 पे आप मैसेज भी कर सकते हो अगर आप गेस करना चाहो तो.
5: Hmm.
4: But yeah, we would want to know. Yeah. आप कॉल करके हमारे साथ बात कीजिए यहाँ पे.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी. कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ यहाँ पे. हाय, आपका स्वागत है.
1: Hi, how are you?
0: Very good, thanks. आप ऑन एयर है अभी. आप ऑन एयर रहना चाह रहे हैं कि आपने ऑफ एयर के लिए कॉल किया है?
1: Am I speaking to Ruzbe or who's this?
0: Yes, this is Ruzbe here.
1: Hello, Ruzbe. I always enjoy the drive show with you and Sandy.
0: अरे क्या बात है, थैंक्स यार.
2: क्या नाम है आपका?
1: My name is Premnath. I used to be the editor of Indian's Outlook for 20 years.
2: Oh,
1: and
2: wow.
1: I used to work very, very closely with your former general manager, who is no more, Maharaj.
2: Oh, Maharaj. Mr. Rajesh Maharaj.
0: Yes, the legend.
1: Rajesh Maharaj.
0: Legend of radio in India, in Auckland, in New Zealand.
1: Exactly. Yes. And it used to be absolutely fun with him. And I also meet Roshni Prasad now and then.
2: Roshila Prasad, you mean?
1: Roshila Prasad, yeah. Your founding CEO.
2: Yeah.
0: Yes. So how can we help you today?
1: Yes, Ruzbe and Sandy, both you as well as Ketan were talking about upcoming Easter, but I thought Easter was already over in April.
0: नहीं तो अगले साल तो आता है
2: Easter. अगले साल तो आएगी ना.
0: Hopefully आएगा, मतलब the world still.
1: Are you talking of next year, next
2: और
1: Easter?
2: और क्या, हम planning बहुत advance में करना चाहते हैं.
0: Yeah, we're talking about next Easter.
1: Okay.
0: Yes.
1: You're talking about next Easter, right?
2: Next Easter.
1: I thought that was a bit too early. We have not even passed Christmas, so
2: yeah.
1: I got a bit confused.
2: Yeah,
1: Achha,
2: no worries.
1: That's all.
2: Yeah, that's okay. No worries.
0: So but next Easter,
1: continue your good work and congratulations on winning the award.
2: Thank you so much. Really appreciate.
0: Thank you so much. Truly
1: appreciate. More and more laurels and compliments will come your way. All the best.
0: Thank you. Thank you so much.
1: Bye.
0: थैंक यू सो मच यार फॉर अ ब्यूटीफुल कॉल. अभी हाँ, ईस्टर की बात तो कर रही है हम लोग. अगले ईस्टर मतलब ईस्टर 2027 में. इट्स नॉट अ टाइपो, इट्स नॉट अ मिस्टेक, बट या वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर 2027.
2: यस,
0: जो हिंट्स दे रही है सैंडी, इट्स पर्टेनिंग टू ईस्टर 2027.
2: बिकॉज बहुत एडवांस में हमें चीजें प्लान करनी पड़ती है ना, तो इसलिए ईस्टर 2027 मे बी दैट ईस्टर यू नो आप हमारे साथ प्लान करें, बट We'll let you know all the details.
0: अभी
2: रुक जाओ. इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी अभी मैं.
0: Okay. Anyway, तो आप यहाँ पे guess कर सकते हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. You can give us a call, you can guess, और 4599 पे आप message करके भी guess कर सकते हो. थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि क्या क्या changes होने वाले 1 July से. देखो, ज़्यादा changes तो है नहीं, बट हाँ कुछ changes ज़रूर है. जैसे कि जो paid parental leave है, new parents अभी currently उनको मिल रहा है 788.66 roughly. फ्रॉम ये बढ़ने वाला है 811.05 पर वीक को. सो देयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट इंक्रीज इन द पेड पेरेंटल लीव, फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है. एंड ये एलिजिबल एम्प्लॉयज को मिलेगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट्स को फॉर अप टू 26 वीक्स. तो इसके डिटेल्स आपको वैसे तो मालूम ही होंगे, बट बस उसका जो रेट है वो बढ़ रहा है.
2: And also if you're dealing with loans, mortgages, yeah, consumer finance, तो जो regulatory landscape है is shifting. So responsibility for managing the Credit Contract and Consumer Finance Act जो है is officially transferring over to Financial Market Authority.
0: Yeah, so basically CCFA, काफी लोग इसको इस नाम से जानते हैं, CCFA जो है Credit Contracts and Consumer Finance Act. ये Commerce Commission के पास होता था पहले. अब वो ट्रांसफर होकर फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी FMA के पास जाएगा. सो इट मींस के थोड़े बहुत जो रूल्स है, थोड़े बहुत जो रिक्वायरमेंट्स है, वो थोड़े बहुत चेंज होने वाले हैं.
2: या
0: सो या यू विल सी थिंग्स इन न्यूज या इन सम टाइम अबाउट दिस आल्सो.
2: या काफी चीजों के बारे में. So this is bit ऐसे changes जो कि हो रहे हैं.
0: एक और चीज है, गवर्नमेंट फिस्कल ईयर बेसिकली जुलाई 1st मार्क्स जो भी इनिशिएटिव्स बजट 2026 में ले आउट किए थे उसके इफेक्टिव डेट इज बेसिकली 1st of July. सो 1st of July से आपको या जो भी उन्होंने बजट में डाला था 2026 के, दैट ऑल विल बी इन इफेक्ट
2: हो जाएंगे. मेरे को लगता है काफी लोगों को जो है पेड पेरेंटल लीव जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर बेनिफिट थोड़ा मिलने वाला है. इट्स नॉट, वंस अगेन, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ डेज आर नॉट इंक्रीजिंग. The amount is increasing.
0: Yeah, the amount is going up to 26 weeks ही होता है मुझे लग रहा है कि जो मिलता है support. Anyway, details will follow. But आपके साथ हम और भी बातें करेंगे. आज 5 बजे के बाद we're going to play with you today's Monday.
3: देसी और नॉट सो देसी।
0: देसी और नॉट सो देसी में हम आपके लिए एक बिहेवियर लेकर आते हैं और आपको पूछते हैं कि ये देसी बिहेवियर है या ये नॉट सो देसी बिहेवियर है। और ऐसा कोई बिहेवियर अगर आप शेयर करना चाहो, क्योंकि काफी लोगों के साथ वीकेंड पे काफी किस्से होते हैं ना,
2: या कुछ हुआ है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, मतलब कि ये देसी बिहेवियर है, ऐसे सिर्फ हमारे देसी लोग करते हैं या फिर बाकी लोग भी सिमिलर बिहेवियर करते हैं।
0: हाँ, अगर कोई डाउट है आपके मन में ऐसा कोई बिहेवियर को लेकर, हमें बताइए 5599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ।
3: Drive Show with Sandy and Rusbi, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
6: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
7: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
6: कौन है?
7: Hunua और Waitakere.
6: अच्छा, Hunua West में?
7: किधर है Hunua?
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
4: Weekdays 6 to 10 a.m.
3: Hum. Accurate traffic.
8: Dry July starts next week.
9: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern to Silverdale, 53 minutes. It's heavy northbound from the Harbour Bridge to Northcote Road. The northwestern to Massey, 27. It's building heading west around Rosebank Road. The southern to Drury, 56 minutes. It's heavy heading north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern is slow from Puhinui Road to the southern.
8: Go alcohol free this July for cancer support. Search Dry July to register.
10: Arey Babita, thank you so much for giving me गुरुज नंबर यार।
11: क्यों, क्या हुआ?
10: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
12: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
13: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
14: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
15: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
16: Working hard deserves a serious reward. There's never been a better time to get into an LDV. Choose a free accessory pack worth up to $5,000 on new T60 Utes. Plus, get a $1,000 fuel voucher with every new LDV purchase, along with sharp finance options across the range. LDV. Built tough, priced right, and now packed with deals. Visit ldv.co.nz to find out more. Terms and conditions apply. Offer ends 31st July while stocks last.

0: ke upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart.
2: Straight from the heart में मस्त सा गाना आपके लिए होगा विशाल मिश्रा की आवाज में. लेकिन उससे पहले टिंसल टाउन में काफी सारी बातें हो रही है. वैसे एक हमने इतनी बात कर दी मैं वापस आऊंगा के बारे में और हमारे साथ साथ और भी लोगों ने इतनी बात कर ली कि मैं वापस आऊंगा इज वापस आइंग.
3: वापस आइंग नॉट इन न्यूजीलैंड दो, नॉट इन न्यूजीलैंड, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे स्क्रीनिंग्स ख़त्म हो गई थी अब वापस से स्क्रीनिंग्स शुरू हो रही है ऑन दैट पब्लिक डिमांड. बिकॉज क्या हो रहा है कि लोग देख के आ रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं और रिव्यू सुनने के बाद बाकी लोगों को जाना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है, स्क्रीनिंग ही नहीं है. आई थिंक लेकिन दिस इज़ द रियल ग्रोथ ना, दिस इज़ द ऑर्गेनिक ग्रोथ. बिकॉज क्या होता है कि एक मूवी को देख के जब कोई आता है देन अपना रिव्यू देता है कि ये मूवी कैसी है, नेक्स्ट वीक जो है सेकेंड वीक डिसाइड करता है फेट ऑफ द मूवी. फर्स्ट वीक आपका जितनी प्रमोशन या मार्केटिंग उससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाती है.
2: ये बार पता नहीं
3: मार्केटिंग प्रमोशन इज रियली गुड.
2: हाँ ये बार मुझे नहीं लगता मैं वापस आऊंगा के लिए कुछ मार्केटिंग वो लोग ने मूवी के पहले किया
3: है, थोड़ा बहुत किया है स्पेशली वेदांग रैना एंड शर्वरी, दोनों ने थोड़ी बहुत की
2: के है. बाद बहुत ज्यादा अभी इंटरव्यूज और वो सब दिख रहे हैं इम्तियाज अली के,
3: अभी ज्यादा उनका थोड़ा मार्केटिंग डिफरेंट वे से था. तो या वो मेरे को लगता है ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एंड ओवर द फिल्म इंडस्ट्री भी काफी सपोर्ट मिल रहा है एक्चुअली मूवी को.
2: It's a great movie, yaar. It's a very well-made movie. बहुत ही like I don't see any खामी in the movie at all.
3: Actually,
2: in terms of anything.
3: In fact, आप movie को जब याद करते हो तो आप एक और चीज उसमें ढूंढ लोगे. अच्छा इसके जरिए ये भी दिखाया था, ये भी दिखाया था. Like there is a very coincidence of a movie. नसीरुद्दीन शाह की एक movie है इजाजत, जो कि उसकी बहुत समय पहले कोई movie आई थी. उसमें एक जो एक डायलॉग है इज द डायलॉग रिवर्स इसमें वो नसीरुद्दीन शाह के साथ जो हुआ है इसमें, तो उसमें जो एक्ट्रेस है वो
2: पीक बोलती डिटेलिंग
3: है,
2: हो रहा है
3: पीक डिटेलिंग निकाल रहे हैं.
2: अच्छा
3: लोग.
2: क्या बात है.
3: या
2: वेल तो यार पीक डिटेलिंग यहाँ पे भी है तो इस मूवी को भी प्यार दीजिए. एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ, सुनते रहिए हम

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से एक बातें और गाने लेकर आते हैं हम. सैंडी बताओ क्या बात करने
1: हैं
0: आज.
1: वैसे एक और न्यूज है, प्रियंका चोपड़ा जो है, प्रियंका चोपड़ा जोनस एक्चुअली में एंजेलिना जोली के साथ कोलैबोरेट करने वाली है.
0: ओह वाओ.
1: या दिस कोलैबोरेशन इज अबाउट अ मूवी, इज अबाउट इवेंट, इज अबाउट अ बिजनेस वेंचर या ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है, क्या है नहीं पता.
0: अच्छा, वो सब नहीं पता.
1: वो नहीं पता, लेकिन इतना बोला है कि है
0: साथ में वो लोग कोलैब करने वाले हैं,
1: साथ में काम करने वाले हैं. बिकॉज शी वॉज एट इवेंट जहाँ पे उसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी लेडीज है जिसको जो उसको इंस्पायर करती है, जिसे उसने सलमा हायक का नाम भी लिया एंड एंजेलिना जोली का नाम भी लिया. देन शी सेड कि उसके साथ वो बहुत ही जल्दी कोलैबोरेट करने वाली है.
0: क्या बात है यार.
1: लेकिन अभी पता है ना, प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आने वाली है, शी इज कमिंग, कम बैक है बेसिकली उसका बॉलीवुड में वाराणसी के साथ. So this is action adventure movie SS Rajamouli ki.
0: Oh yeah, yeah. Iske bare mein suna tha shayad se kuch. Yeah.
1: Posters dekhe the iske humne.
0: Okay.
1: Ye actually mein first Indian feature hai in several years and is expected to be one of the biggest production ever mounted in the country. Wow. So international locations pe iski shooting hui hai, Georgia mein, Antarctica mein, Africa mein, Hyderabad mein. So she said ki they're trying to do something very different and at a very long scale and she is privileged ki she is part of it.
0: Oh, to ek aur universe aa raha hai matlab shayad se.
1: Ho bhi sakta hai.
0: Long scale matlab bhi wohi lagta hai ki bhai ye iska bhi universe banne wala hai koi.
1: Agle saal 7th April ko ye movie release hogi.
0: Okay.
1: So they're still working on it.
0: Just after Easter.
1: After Easter, yeah. Just after Easter.
0: All right, okay. तो आज आपके साथ हम 5 बजे के बाद यहाँ पे देसी और नॉट सो देसी खेलने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको एक बिहेवियर के बारे में बताएंगे और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है कि आपको लगता है ये देसी बिहेवियर है या नॉट सो देसी बिहेवियर है.
1: या वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे. मैंने एक आर्टिकल भी देखा उसमें, या इसमें क्या हुआ कि एक फेसबुक पेज ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी न्यूजीलैंड का फेसबुक पेज है, पुलिस का फेसबुक पेज है, ऐसे ही एक फेसबुक पेज है जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का, एक कंट्री के, उनके स्टेट डिपार्टमेंट का, उन्होंने एक फोटो डाली वहाँ पे कन्विक्ट की कि ये बंदा अगर आपको मिलता है तो इस नंबर पर आप कॉल करो. तो नीचे वो बंदा खुद कमेंट करता है, कहता है काम डाउन, I'm going to turn myself in.
0: हाँ, ये सुना है ना ये
1: वाला?
0: हाँ,
1: बहुत पुराना है ये.
0: हाँ.
1: तो उसके बाद जो वहाँ पे पुलिस ने बोला कि we haven't seen you yet, उसको कमेंट सेक्शन में लिखा, उसको रिप्लाई किया कि हमारे बिजनेस आवर्स है 8 AM टू 5 PM मंडे थ्रू फ्राइडे, ऑफकोर्स अगर तुम्हें राइड चाहिए यू कैन लेट अस नो, वी कैन पिक यू अप. तो उसके बाद उसने बोला कि थैंक यू, आई एम टाइंग अप कपल लूज एंड्स सिंस आई विल बी देयर फॉर अ मंथ नाउ.
0: तो सब निपटा के आ रहे हैं,
1: निपटा के मेरे को 48 आवर्स का समय दो. और उसके बाद हर किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट के पेज में मैसेज करना शुरू कर दिया, उनके हर एक पोस्ट पे कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई वो पकड़ा गया बंदा कि नहीं पकड़ा गया, हुआ कि अपडेट दो. तो पुलिस ने अपडेट दिया कि, और वहाँ पे लेटर लिखी, डियर एंथनी, वो जो बंदे का नाम है, इज इट अस और इज इट यू, वी डिडंट सी यू येट. उनको गोस्ट कर रहा है वो. तो उन्होंने फुल वहाँ पे लिखा कि अगर तुम्हें कुछ ऑफर चाहिए, यू नो 48 आवर्स तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं, वी कैन कम एंड पिक यू अप, वो सब कुछ उसने लिखा. फिर एंथनी ने उसको रिप्लाई किया वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को कि इट्स नॉट यू, इट्स मी, आई हैव कमिटमेंट इश्यूज.
0: Wow.
1: I know, उसने बोला आई अपोलोजाइज फॉर नॉट स्टैंडिंग यू अप बट लेट्स मेक इट अप टू यू, आई विल बी लेट, आई विल बी देयर लंच टाइम पे. तो वो बंदा गया फिर लंच टाइम पे एंड उसके बाद फोटो डाली उसने, जब वो वहाँ पे जाने लगा था अपनी सेल्फी डाली कि हेज फॉर अवर डेट. या
0: वाओ,
1: सो कूल यार. कूल है ये, क्या है पता नहीं, बट कई बार सोशल मीडिया इस वे से काम करता है.
0: हाँ ना, मतलब पुलिस वाले, मतलब वो जो डिपार्टमेंट है पुलिस, वो जो एरिया है पुलिस वाला, दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन AI टू रिप्लेस देम. सोशल मीडिया ओनली इज रिप्लेसिंग देम. सोशल मीडिया से अभी ढूंढ रहे हैं. वेल एनीवे, और भी बातें करेंगे आपके साथ, पर अभी के लिए थ्रोबैक में एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए.

0: Bollywood's biggest hits, Power Drive at 5. आप सुन रहे हैं और Sandy, आज 22nd of June.
1: Yeah.
0: How are you doing?
1: I'm good. How are you?
0: I'm great. I'm feeling much better. मुझे लगता है कि ये जून के टाइम के बाद ना ऐसे लगता है कि अब चीजें टर्न अराउंड हो रही है.
1: 21 जून से होती है.
0: हाँ, क्योंकि शॉर्टेस्ट डे होता है ना.
1: या 21 जून इज अ शॉर्टेस्ट डे इन दिस हेमिस्फीयर. दूसरे हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है
0: जी. बट नाउ यस, अभी से सनसेट जो है ये फिर से थोड़ा स्लो मतलब लेट होता जाएगा. ये बार मैं नोट कर रहा था 5:12 वाज द टाइम सनसेट होता है. लोग जब बोलते हैं ना कि 4 अंधेरा हो जाता है, नहीं होता है 4 अंधेरा,
1: 5 के बाद,
0: 5 के बाद सनसेट होता है. हाँ, जिस दिन क्लाउडी वाउडी होता है उस दिन अलग बात होती है.
1: या तुम किसको ताना दे रहे हो यहाँ पे? लोग कहते हैं ना 4 के बाद हो जाते हैं, नहीं होता है.
0: क्योंकि ना लोग ना विंटर को बहुत ज्यादा ये बोलते हैं कि अरे यहाँ का विंटर बहुत ही डल है, बहुत ही ये है.
1: तो भी नहीं, मेरे को लगता है इस बार तो विंटर बहुत ही शाइनिंग रहा है.
0: इनफैक्ट मेरे को विंटर कभी कभार समर से ज्यादा अच्छा लगता है. इन टर्म्स ऑफ वेदर समर में ज्यादा बारिश होती है मुझे ऐसा लग रहा है,
1: स्पेशली ये साल में तो ऐसा लग रहा है.
0: या सो या होपफुली इट डजंट गो दैट बैड टुवर्ड्स द एंड, बट लॉट ऑफ प्लेसेस आर करंटली स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ नो वाटर. या इंडिया में बारिश का बहुत कुछ जगहों पे बहुत शॉर्टेज हो गया है.
1: वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है इस बार.
0: हाँ, गर्मी ज्यादा है और पानी का शॉर्टेज है बहुत जगहों पे. तो मतलब मेरे पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे पानी अभी आई थिंक alternate days या फिर twice thrice a week ऐसे कुछ हो गया है.
1: Okay.
0: मतलब वो आएगा नहीं इतने regularly. So yeah, there's lot of water shortage. काफी सारे businesses affect हुए उसके कारण.
1: Okay.
0: और यहाँ पे भी अभी मुझे लग रहा है कि बारिश इतनी ज़्यादा कुछ हुई नहीं है. So not sure.
1: Not a good news.
0: Not sure what's going to happen in summer.
1: Yeah, let's see. So, इस आवर में देसी नॉट सो देसी बिहेवियर ये भी आपके साथ रहेगा. राहत फतेह अली खान के शो के लिए अगर आपको टिकट जीतनी है, रिमेम्बर एक कॉम्पिटिशन आपके लिए, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे हम पूछने वाले हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड
0: जी. और जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है इसके अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे एंड इसके डिटेल्स भी आपको बताएंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है. अभी मैं खुद अभी तक फॉलो नहीं कर पाया हूँ वर्ल्ड कप. आपने किया वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप?
1: नहीं, नॉट रियली.
0: ओके, लेट्स कैच अप ऑन सम वर्ल्ड कप न्यूज़.

ए साहिबा, गोवाने का खाने का पीने का और मस्त चिल मारने का, लेकिन दम दम बिल्कुल नहीं मारने का।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Abhishek Bachchan, Sundeep Chauhan ki awaaz mein sun rahe the aap ye gaana. Dam Maro Dam movie se bahut hi badhiya movie thi agar aapne miss out kar liya Dam Maro Dam. It is based in Goa.
1: Yeah. And Deepika thi isme actually mein.
0: Yeah, Deepika thi aur iske gaane bhi mere ko kafi acche lagte the.
1: Yeah.
0: जो बाकी गाने भी थे well, T20 Women's T20 World Cup के अभी ग्रुप मैचेस चल रहे ग्रुप स्टेजेस पे इंडिया साउथ अफ्रीका गेम हुआ जहाँ पे लास्ट ओवर फिनिश साउथ अफ्रीका की जीत हुई साउथ अफ्रीका वुमेन की जीत हुई बाय 6 विकेट्स एंड 5 बॉल्स लेफ्ट एंड अगर अभी टेबल की ओर अगर हम देखें तो आज वैसे न्यूजीलैंड एंड स्कॉटलैंड वुमेन्स का गेम होने वाला है
1: यार उसके बाद श्रीलंका और आयरलैंड के बीच में मैच है वो 24 जून करेगा देन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एंड सो ऑन इंडिया का नेक्स्ट बांग्लादेश के साथ रहेगा 26 जून को
0: या करंटली टेबल को देखें तो इंडिया इज ऑन सेकेंड पोजिशन ऑस्ट्रेलिया वुमेन इज नंबर 1 तीन मैच खेल के 3 मैच जीते हैं ये एंड India women have lost one match. South Africa has lost one match. And Bangladesh also has lost one match. India ka mujhe lagta hai ye last match jo tha South Africa ke saath bahut sare catches drop ho gaye.
1: Yeah.
0: Uske karan wo match thoda slip ho gaya. Otherwise it was quite a close one.
1: Yeah. And FIFA World Cup mein by the way aapko bata dein ki kal morning mein Argentina and Austria ke beech mein match hone wala hai. Big match. सो कल सुबह 5 बजे एक्चुअली में हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे ये मैच रहेगा और उसके बाद फ्रांस और इराक के बीच में
0: फ्रांस और इराक का भी गेम हो रहा है कल ओके सो टुमारो
1: आज न्यूजीलैंड आज वैसे हारू या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इजिप्ट
0: T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में बस न्यूजीलैंड का भी बता दें न्यूजीलैंड का रन अब तक इतना अच्छा नहीं रहा है 3 गेम्स में से वो एक ही जीते हैं और 2 हारे हैं बट दे आर ऑन द थर्ड पोजिशन इन द टीम बी टेबल लाइक बी पूल में वो लोग हैं तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज लीड कर रहे हैं अभी उनके पूल में बढ़िया स्टिल लॉन्ग टाइम टू गो और भी बातें आपके साथ वैसे थोड़ी देर में वी आर गोना प्ले विद यू देसी और नॉट सो देसी सुनते रहिए हम
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं
5: Accurate traffic.
6: National Burns Awareness Month.
7: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 degrees on the northern to Constellation Drive, taking 33 minutes to Silverdale 52. It's pretty heavy heading north across the Harbour Bridge. Northwestern to Massey, 31 minutes. It's building from Waterview to Te Ata 2. The southern, it's pretty heavy heading north from Sylvia Park to Green Lane to Drury, 59 minutes. The southwestern slow from Massey Road to Onehunga.
6: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
8: Maddie didn't think she needed a DVS system.
9: I've got a heat pump.
8: That should do.
9: But it didn't do it, did it, Maddie?
8: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
10: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz Available at all leading stores.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
13: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
12: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now

0: NZ.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
2: Power Drive at 5.
3: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
4: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Abhi mauka hai aapke saath hum khelenge ye.
3: Desi or not so desi?
4: देसी और नॉट सो देसी में हम आपके साथ एक यहाँ पे बिहेवियर शेयर करते हैं और आपको बताना होता है इफ दिस इज देसी बिहेवियर और नॉट सो देसी बिहेवियर.
5: सो आज का बिहेवियर बताओ रुजबे.
4: आज का बिहेवियर है समथिंग दैट आई अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू. वो है जब आपके घर पे कोई टेक अवे आता है, कोई भी चीज टेक अवे आती है, उसके जो डब्बे और उसके जो बैग है उसको बचा के रखना, धो के रीयूज करना डब्बों को, मेनली
5: डब्बों को. सो डब्बों को रीयूज करना, टेक अवे बॉक्सेस का क्या कहते हैं उसको, खजाना रखना अपने घर पे, इज इट अ देसी बिहेवियर और नॉट सो देसी?
4: या फिर जैसे कि आइसक्रीम आ गया, आइसक्रीम का डब्बा को रीयूज कर दिया, या दही के डब्बे को रीयूज कर दिया, यू नो ये वाली बिहेवियर. डू यू थिंक दैट इज लाइक, डू वी हैव एनी
5: नॉट सो देसी के घर पे कभी देखा है दही का डब्बा, उसमें कुछ पड़ा हुआ है, आइसक्रीम के डब्बे के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, कुकीज के डब्बे के अंदर कुछ पड़ा हुआ है? कुकीज वाला शायद से कॉमन रहेगा,
4: बट मोस्टली कुकी वाला क्यों कॉमन होगा?
5: कुकीज वाला
4: मैंने, क्योंकि वो फैंसी डब्बे होते हैं, तीन वाले डब्बे होते हैं,
5: इसलिए.
4: बट दैट इज अगेन बीइंग हिपोक्रेट ना, ये थोड़ी है
5: बट दैट्स अ फैक्ट राइट.
4: या एनीवे,
5: सो बताइए यहाँ पे कॉल करके 0800 हम पर कि डब्बे इकट्ठे करना, टेक अवे बॉक्सेस, या फिर दही का डब्बा खत्म हुआ, आइसक्रीम का खत्म हुआ, ये सब.
4: टुडे आई वांट टू स्पीक टू समवन जो ये नहीं करते,
5: जो ये नहीं करते,
4: जो ये नहीं करते, जो ये डब्बे कभी यूज नहीं करते, जो भी कोई भी डब्बा हो, टेक अवे में कोई मिला है या जो कोई और प्रोडक्ट के साथ मिला है उसको आपने कभी यूज ही नहीं किया है.
5: या मैंने तो किए,
4: मैं भी किए यार,
5: या फुल यूज किए.
4: बट आई वांट टू स्पीक टू समवन हु हैज नेवर यूज्ड देम. 0800-004-866 कोई तो होगा ही ऐसा, या अगर आप किसी को जानते हो जो कभी यूज नहीं किया है जिसने,
5: वो भी अभी आप ही बताइएगा. एंड आल्सो कॉल अस एंड लेट अस नो इज इट देसी बिहेवियर और इज इट नॉट सो देसी बिहेवियर, कि जो देसी नहीं है वो भी ऐसा करते हैं, क्या आपने उनको कभी ऐसा करते हुए देखा है, उनके घर पे कभी आप गए हैं, या फिर यू नो कभी भी आपके काम पे है, कोलीग्स हैं.
4: हाँ, कभी आपने आपके कलीग्स को देखा है क्या कोई दूसरे डब्बे में, लाइक मैं फॉर एग्जांपल काफी बार लंच लेके जाता हूँ, तो मेरे वो अलग अलग अपने दही के डब्बे में भी कितनी बार लेकर आता हूँ लंच. ऐसा पर्टिकुलर कोई डब्बा नहीं है मेरे पास, है भी और नहीं भी, मतलब
5: है भी. हाँ
4: बट
5: तुम्हारे डब्बे ऐसे होते कि खो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है,
4: इसलिए तो वो मेरे पास होते ना. क्योंकि रिक्स कौन लेगा भाई. तो मैं बोलता हूँ मेरे को ऐसे ही डब्बे दो, प्योरली देसी, वी डू दैट. यहाँ पे मैसेज आया है, Absolutely true. जी थैंक यू. अभी यहाँ पे बताइए 0800-004-866 पे आप कॉल कर सकते हो.
5: और थोड़ी देर में राहत फतेह अली खान का कंपटीशन भी आपके लिए रहेगा, तब तो आपको कॉल करनी ही पड़ेगी अगर आपको डबल पास जीतना है. एंड ऑल्सो रुजबे, आज 6 बजे के बाद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे. टुडे इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अमरीश पुरी.
4: अमरीश पुरी, यस, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी और स्पेशल एक शो उनको डेडिकेट करता हुआ आज
5: कुछ डायलॉग्स रहेंगे और अमरीश पुरी के ऊपर फीचर्ड सॉन्ग्स रहेंगे. गेस कीजिए कौन कौन सा गाना हो सकता है अमरीश पुरी के ऊपर जो फीचर्ड गाना है. गेस कीजिए ऐसा कौन कौन सा गाना हो सकता है. मतलब हम ना डायलॉग्स ढूंढ रहे थे अमरीश पुरी के और कुछ वीडियोज हमने जाके चेक की, मतलब लिटरली उसका मेकअप भी फुल विलन की तरह किया हुआ है बहुत सारे सीन्स में, बहुत सारी मूवीज में, और डिफरेंट मेकअप, कहीं पे आईब्रो बड़े बड़े बनाए हैं,
4: आईब्रोज वो पेटेंट होता था, आईब्रोज हमेशा बहुत बड़े बड़े देते थे,
5: तो कभी मतलब उसको लुक थोड़ा ऐसा दिया है, उसका हेयर स्टाइल वैसा किया है, टोटल
4: एक टाइम के बाद जब उनके इंटरव्यूज भी होते थे वो इंटरव्यू में भी डर ही लगता था उनको देखते हुए,
5: उनकी आवाज भी वैसी ना थोड़ी
4: काफी, आंसर भी ऐसा देते थे. अभी एक हमने इंटरव्यू अभी रिसर्च के टाइम पे देखा तो वो रिपोर्टर को झाप दिया. तो भाई वो रिपोर्टर के वो एकदम स्ट्रेस में आ गया,
5: वो गेम भो में से खुश नहीं रहता था. सो अमरीश पुरी स्पेशल आज रहने वाला है 6 बजे के बाद.
3: Bollywood's most wanted.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे गाने भी लेकर आते हैं हम, थोड़े distractions होते हैं यहाँ पे, लेकिन we are back.
1: Yes, and Rahat Fateh Ali Khan is back. Rahat Fateh Ali Khan जो है ये आपकी सुपर सीरीज में परफॉर्म करने वाले हैं. लाइव शो इनका रहने वाला है 25th of July को ट्रस्ट अरीना में. मेक श्योर कि आप वहाँ पे जरूर पहुँचते हैं. दिस इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. टिकट्स आपको dryticket.com पे जाके मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पे डबल पास जीतने का मौका है. रैपिड फायर क्वेश्चन आपके साथ हम खेलने वाले हैं. आपको एक टाइम फ्रेम के बीच में 5 सेकंड आपको मिलेंगे उसका जवाब देने के लिए. हर एक सवाल का जवाब 5 सेकंड में, लाइक पहला सवाल जवाब 5 सेकंड में.
0: देखो पहला सवाल आप पूछोगे जैसे कि सैंडी व्हाट इज योर नेम.
1: सैंडी सेखो. सैंडी व्हाट इज योर नेम.
0: बस ये 5 सेकंड.
1: ये 5 सेकंड है, ठीक है. हाँ. तो ये टाइमर है आपके लिए. और यहाँ पे अब क्या है कि रैपिड फायर क्वेश्चन है तो हम चांस दे रहे हैं एक ही पर्सन को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. सो आप कॉल कीजिए राइट नाउ.
0: यू हैव टू बी क्विक टू कॉल एंड गेट योर नेम इन. और ये पूरे हफ्ते हम आपके साथ खेलने वाले ना. ये
1: या
0: होपफुल वीक हम खेलने वाले. सो या इफ यू वांट अ टिकट फॉर राहत फतेह अली खान डबल पास जीतना है, इफ यू
1: वांट टू बी इन अ ड्रॉ टू विन अ टिकट, तो यहाँ पे कॉल कीजिए अभी 0800 00. हम देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या ही हो जाएगा कि जवाब नहीं आएगा. यही होगा ना. एटलीस्ट ट्राई तो करोगे टिकट जीतने के लिए, वो भी डबल पास जीतने के लिए. सो कॉल ओवर हियर 0800 00 हम पर 0800 00 4866 पर.
0: बोलना चाहिए वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी आवाज रेडियो पे आएगी.
1: हाँ.
0: Which is again like a good scenario.
1: Yeah, but that's a good scenario. Yeah.
0: Yeah. So 0800 00 4866. Give us a call right now, immediate, and.
1: हमारे पास सवाल ready है, and इतने भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है. मतलब easy सवाल है. इतना मैं आपको बताती हूँ.
0: अच्छा, call भी आ रहा है हमारे पास. Hi.
2: Hi. Hello.
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: Again, Amandeep.
0: नमनदीप.
1: ओके.
2: अमनदीप.
1: ठीक है.
2: मैंने पहले भी कॉल किया था आपको.
1: पहले आज के दिन में?
0: नहीं नहीं पहले.
1: अच्छा पहले. ओके.
2: आज के दिन में.
0: अच्छा आज के दिन में पहले कॉल किया आपने. ये राहत फतेह अली खान के कंपटीशन के लिए.
2: हाँ जी.
0: अरे क्या बात है. तो उसमें हो गया आपका?
1: हाँ. आप ऑलरेडी
2: क्वेश्चन सुनने के लिए सोच रहा था. मैं क्वेश्चन कौन से दोबारा सुनूं.
0: अच्छा ऐसा.
1: वैसे आप शॉर्टलिस्टेड हो ऑलरेडी.
0: आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो तो फिर अभी
2: ठीक है, किसी और को मौका दीजिए.
0: वही किसी और को देते हैं.
1: ठीक है. मेक सेंस. थैंक यू सो मच अमनदीप.
0: थैंक्स.
1: थैंक यू.
0: सिर्फ अमनदीप ही जीतना चाह रहे हैं क्या राहत फतेह अली खान के टिकट्स?
1: ऐसा लग रहा है. हाँ ऐसा लग रहा है. देखो कॉल कर लीजिए, नहीं तो दोबारा से हम अमनदीप को ही यहाँ पे मौका देने वाले हैं. सो यू नेवर नो, अमनदीप बाद में जीत भी जाए. So, आप यहाँ पे कॉल कीजिए 0800 00 हम इज अ नंबर.
0: नमस्कार, आपका स्वागत है.
3: स्वागत है.
0: हेलो.
3: हेलो.
0: मेरा ही आवाज आ रहा है मुझे.
1: ये खुद को कॉल कर लिया क्या आपने?
0: अच्छा ठीक है, फिर से कॉल कीजिए.
2: हेलो.
0: हाय.
2: हाय सॉरी, रमन बोल रहा हूँ जी.
0: रमन बोल रहे हैं?
2: हाँ जी.
0: हाँ रमन बोलिए.
2: राहत फतेह अली खान के लिए किया था जी कॉल.
1: ठीक है जी, बढ़िया. तो अभी हम सवाल पूछेंगे आपसे और आपको पता है ना क्या करना है. आपको 5 सेकंड्स के अंदर अंदर ये टोन सुनिएगा. पहले
0: ये आपका टाइमर रहेगा. ठीक है.
1: ये टाइमर है.
0: ये नहीं, ये रहेगा.
1: ठीक है. ओके.
0: ठीक है, ये टाइमर है आपका 5 सेकंड वाला.
1: ये टंग होता तो मतलब खत्म हो गया टाइम
0: जी. तो आप रेडी है अभी?
1: ठीक है. आपके लिए पहला सवाल.
0: हाँ पूछिए.
1: पहला सवाल ये है, What is the name of his famous uncle who introduced him to Qawwali globally?
0: Time starts now. Ho gaya?
1: Perfect. Yeah, done, done. Yeah,
0: very
1: done.
0: Nice, very nice.
1: Second question is, Teri Meri song featured in which Salman Khan film?
2: Out.
0: Okay. Ho gaya na, nahi hua na?
1: Yeah. कोई बात नहीं. इट्स ओके. मे बी नेक्स्ट टाइम.
0: कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम रमन. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच. बाय बाय.
0: थैंक यू. या
1: सो बेसिकली क्या है कि बस उनके गानों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं.
0: ज्यादा कुछ नहीं क्या? उनके वो अंकल के बारे में पूछा आपने.
1: हाँ तो अंकल के बारे में पता है ना.
0: हाँ वही.
1: अब देखो डबल पास जीतना है रुस्बे.
0: हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना.
1: थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी इसमें
0: जी.
1: बट नो वरीज, आपको और भी चांसेस यहाँ पे मिलने वाले हैं. कीप लिसनिंग.
3: Drive show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepy head, sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
4: Driving you home.
3: The drive show with Sandy and Rusbe.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
1: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
1: अच्छा आप दिलजीत हो.
6: आए आए बताओगे यार.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepy head, sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
7: Delicious, tasty cookie dough bars.
8: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the northern, things improving a bit to Silverdale, taking 47 minutes. It's heading northbound from West Haven to Esmond Road. Northwestern is slow from St Luke's Road to Te Atatū. Southern, pretty slow heading south around Manukau and north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern, heavy from Massey Road to Mangere Bridge.
7: Tasty cookie dough bars, a delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
9: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda Jeku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System. Performance bhi, efficiency bhi aur all electric J5 EV. Zero emissions, maximum savings. Aaj hi Vecity Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: To jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To der mat kijiye. Call 0800-4626-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: Sounds like you've got a bloody busy week. Well, here's one more thing to add to your calendar. Don't worry, it's all good. It's an invite to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, get your blood group together and lock in a time to give blood or plasma. Each one of you could save lots of lives. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
13: Dad, I feel sick.
14: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
15: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Dipali Sahai ki awaaz mein aap sun rahe the ye bahut hi beautiful gana.
1: Yes, 5:41 at the moment yahan pe ho chuke hain and recently ek case hua tha jiske bare mein actually mein abhi hamare jo Prime Minister Christopher Luxon inhone comment kiya hai. What happened? Ek major incident hua tha New Zealand mental health care mein jahan pe it has sparked an official apology from Prime Minister. So, 11-year-old girl was mistakenly identified as a 20-year-old woman and taken into mental health facility.
0: Oh no.
1: Jahan pe she was sedated.
0: Oh God. Aur yeah. Fir uske baad?
1: So, the core failure was a serious breakdown in identification and safeguarding the process. Mental health and care system mein, jiske wajah se child being treated as adult patient. Because jo aap ek adult ko medicine dete ho, wo aap child ko nahi de sakte. So, Prime Minister Christopher Luxon ne publicly apologized kiya hai, saying it was unacceptable as a human being and as a dad. Unka ye nazariya hai. And health authorities jo hai, unhone bhi acknowledge kiya hai error ko and launched reviews into ki itti badi mistake ho kaise gayi. Now officials, they are now facing pressure to improve the patient identification checks and mental health ward safeguard as well. Matter karta hai because safety hi concern hai mental health ward mein and system pressure and ya phir staff kai baar overworked workload jo unke paas hota hai uski wajah se agar koi mistakes ho rahi hai to kyun ho rahi hai ye sare questions wahan pe raise hote hain.
0: Yeah, aur lapse in system mein mein ek aur cheez highlight hui hai jahan pe कुछ लोगों की प्राइवेसी अफेक्ट हो गई है.
1: ओके.
0: एक प्राइवेट मेडिकल फार्मेसी है बेसिकली जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ डजन्स ऑफ देयर कस्टमर्स बाहर लेट आउट कर दी गलती से जिसमें काफ़ी लोगों की जो प्राइवेसी है वो भंग हो गई ना.
1: ओह.
0: हाँ, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बाहर आ गए जिसमें पेशेंट के पूरे नाम, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स एंड अलोंगसाइड रिक्वेस्ट फॉर रिपीट प्रिस्क्रिप्शंस. ये सारी चीज़ें बाहर लीक हो गई कोई ऑनलाइन कुछ वेबसाइट पे.
1: ओके.
0: सो दिस वाज क्वाइट अ बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ क्योंकि लोगों की प्राइवेसी उसमें सीधा ये हो जाती है ना.
1: या इट्स अ मेडिकल हिस्ट्री ना हर एक ह्यूमन बीइंग की एंड देन
0: या और फिर उनके फ़ोन नंबर्स, डिटेल सब कुछ जा रहा है तो दे कुड बी इट कुड बी मिसयूज्ड.
1: Yeah, scams के chances बढ़ जाते हैं वहाँ पे.
0: So, yeah.
1: ये चीज़ भी रहती है और कुछ और भी नए स्कैम्स हो रहे हैं रुजबे. जैसे कि एक जो स्कैम बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहा है वो ये है कि आपको बोला जाता है यू नो आजकल हमारी स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है फ़ोन पे एंड हम बहुत सारी एड्स देखते हैं एंड काफ़ी एड्स हमें कई बार हो सकता है कि थोड़ी ऐसा लगे कि हमें इम्प्रेस करे कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं. सो क्या होता है कुछ एड्स के बीच में ये भी हो रहा है कि आपको बोलते हैं कि इफ़ यू वांट यू नो ये इतना फ्री में देखना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया बूस्ट अगर आप चाहते हैं सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ तो आपका 7 days का फ्री ट्रायल है. सो आई नो अ पर्सन जिसने ये किया है.
0: 7 days फ्री ट्रायल लिया.
1: 7 days फ्री ट्रायल उसने लिया है एंड 7 days फ्री ट्रायल में उसको मतलब उसे तो एक मतलब एक चैनल देखना था उसने उसकी वजह से उसने लिया था खैर बट उसमें उसको चार्ज हुआ वो 7 days फ्री ट्रायल में. बिकॉज क्या होता है आपको कई बार पेमेंट में फिल करना होता है ना कार्ड नंबर आपको एनीवे फिल करना होता है
0: बट वो चार्ज नहीं होता है. चार्ज होता है
1: बाद में चार्ज होता है लेकिन वो पहले ही चार्ज हुआ और उसके बाद वो अनसब्सक्राइब उसको नहीं कर पाई.
0: ओह नो.
1: या सो शी हैज टू कॉन्टेक्ट द बैंक एंड देन डू ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. या बट या ऐसे स्कैम्स भी यहाँ पे हो रहे हैं. जस्ट बी अवेयर ऑफ दी स्कैम्स.
0: मेरे को रिसेंटली एक स्कैम हो रहा है मेरे साथ मतलब वो बहुत ही टाइम से हो रहा है मेरे साथ अभी. कोशिश कर रहे वो करने की अब तक हुआ नहीं है लेकिन ना मुझे ना अननोन नंबर बहुत ही क्रेजी कोई नंबर से कॉल आता है और ऑटोमेटेड पूरा एक मैसेज प्ले होता है कि हमने सुना है कि तुम हिंदी में नहीं होता है इंग्लिश में होता है मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ फॉर क्रिएटिविटी. बोलते कि हमने ऐसा नोट किया है कि तुमने कुछ स्टॉक ट्रेडिंग किया है क्या तुमने किया है. तो मैंने नहीं बोला फिर भी उसने कंटिन्यू किया उसका स्क्रिप्ट और फिर वो उसने ऐसे ही पता नहीं क्या बोल दे कि हम तुमको कॉल बैक करेंगे तुमको बताने के लिए कि क्या सही तरीका है करने का ये वो ऐसा वैसा कुछ ट्रेडिंग को रिलेटेड है. मतलब भाई मैं नहीं करता हूँ ये सब यार पता नहीं क्यों बट वो बहुत परसिस्टेंट है.
1: ओके.
0: मुझे लिटरली हर हफ्ते कॉल आता है एक हद तक वही ना यार, और लगातार आ रही है.
1: आर यू श्योर स्कैम है या कुछ और है?
0: हाँ वो भी पॉइंट है, बट ऑटोमेटेड मैसेज कौन भेजेगा क्यों? लेकिन फिर
1: होते हैं कई सर्विसेज ऑटोमेटेड मैसेजेस,
0: तो फिर वो स्कैम है, फिर तो तुम्हारी गलती है.
1: Yeah.
0: ऐसा तुम एक को नहीं बोल सकते हो ना कि कुछ कंपनीज का तुम सुनो कुछ कंपनीज स्कैम है. ये मतलब इट इज
1: यू हैव टू वेरीफाई.
0: हाँ यू डोंट हैव टू हैव ऑटोमेटेड मैसेज. अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप एक जेन्युइन पर्सन को रखो काम पे.
1: Yeah.
0: जो आपसे बात करे, वैसे जेन्युइन पर्सन भी स्कैम करते ही है. But yeah.
1: But there should be some kind of communication over there.
0: But talking about ads impressing you, there is currently an ad that might impress you. Because you might see a known face in there.
1: Scrolling करते करते.
0: Yeah, just saying. जन सूचना में जा रही.
1: Yeah.
0: जन हित में जा रही.
1: अगर देखी होगी तो जरूर बताना.
0: Yeah, actually, but पता नहीं ऐसे notice क्योंकि आवाज मेरी इतनी clear नहीं है ना उसमें.
1: हाँ, शकल है
0: शकल अगर पहचानते हो तो. Yeah. Yes.

0: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Denza premium plug-in hybrid SUVs.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10. The northern is heavy, heading north from West Haven to Esmond Road. The northwestern slow from St Luke's Road to Rosedale Road. On the southern, a couple of northbound crashes, one reported between Hopetoun Street and Wellington Street, the other around the Penrose-Ellerslie interchange. Southwestern is slow, heading west from Massey Road to Mangere Bridge, and heavy in the other direction, Puhinui Road to the southern.
2: Visit Denza, Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
4: Ooh. It's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
5: Snooze and save at the Beds R Us winter sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
7: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
8: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
5: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. National insists its KiwiSaver election policy will be worth it in the long run. The party wants to make participation compulsory and eventually lift contribution rates to 6% each for employers and employees. Leader Christopher Luxon says the hardship test will stay, so some can opt out.
9: There's no doubt it may be difficult for some people who currently aren't making those contributions to start making them, but it's a hell of a lot tougher not having a retirement pool or sufficient savings in retirement.
3: There's no breaking the spirit of All Whites fans despite a 3-1 loss to Egypt. Christchurch City Councillor Tyrone Fields was in Vancouver for today's match and says the energy was electric.
10: This team created history, the first All Whites team to go into halftime at the World Cup 1-0 up.
3: Police are keen to view any relevant footage as they investigate a fatal e-scooter crash in Christchurch. A man has died in hospital following the collision on Antigua Street just after midnight on Sunday. At this stage, officers do not believe another vehicle was involved. And France's largest cultural event has passed seemingly without major issues. Tens of millions took to the streets for the Fête de la Musique, despite a sweltering heatwave which saw temperatures reach nearly 40 degrees in parts of the country. To football updates brought to you by Hisense, the All Whites let another chance for a first-ever World Cup win go begging. This time it was more costly. Egypt came back to win 3-1. The All Whites play Belgium on Saturday afternoon. The round of 32 is still possible, but it needs some good fortune. And Peyton Spencer, son of former All Black star Carlos Spencer, is one of the 6 uncapped players in the Māori All Black squad that is off to Japan.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
11: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
12: सुजित किया जाता है नगम्मा देवी के पति मोनिका प्रिया क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचारी उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम दर्शन के लिए आप ट्यूसडे 23 जून को 7 से 8 के बीच जा सकते हैं. अंतिम संस्कार वेनसडे 24 जून दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211-771-181 पर कॉल कर सकते हैं. नगम्मा देवी के पति मोनिका प्रिया क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचारी उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम दर्शन के लिए आप 23 जून को 7 से 8 के बीच जा सकते हैं. और अंतिम संस्कार 24 जून को 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-1771-181 पर कॉल कर सकते हैं। ऑकलैंड की किरण राव, रोहिणी देव और उषा राय की माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोटो जा सकते हैं या 2793894 पर कॉल कर सकते हैं। ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोटो जा सकते हैं या 2793894 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट जय नारायण जोखन की पत्नी रजनी सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को 1:00 बजे वाटुवाका सेमेट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को 1:00 बजे वातुवाका सेमेट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर कॉल कर सकते हैं।
11: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: देखते देखते आज 6 भी बज चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर ट्रेंड मेकर्स, जहां पे आपके लिए हम आज एक स्पेशल थीम लेकर आ रहे हैं. बट उससे पहले गुड इवनिंग सैंडी.
5: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग रुजवे. और आज की हमारी थीम है अमरीश पुरी.
4: जी, आज अमरीश पुरी की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पे वी गोना सेलिब्रेट द लेजेंड जिन्होंने हमारे बचपन में हमें बहुत डराया.
5: या मैंने देखा है अमरीश पुरी ने ना डराया भी है, हंसाया भी है एंड बहुत ही होलसम वाले रोल्स भी किए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा तो डराया ही है.
4: जी,
5: विलन के रोल सबसे ज्यादा किए हैं.
4: विलन के रोल काफी किए. बट क्या आपको पता है सैंडी कि इनका जो पहला लीड स्क्रीन टेस्ट था ये इन्होंने फेल किया था.
5: वाओ.
4: इनके जो भाई थे, काफी लोगों को लगता है ओम पुरी भाई है बट नहीं
5: ओम पुरी इज नॉट रिलेटेड टू अमरीश पुरी.
4: इनके ओल्डर ब्रदर्स थे मदन एंड चमन पुरी और ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर एक्टर्स थे मुंबई में. और मिड 1950s में जब अमरीश पुरी ने ट्राई किया पहली बार तो उनको प्रोड्यूसर्स ने डिक्लाइन कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि नहीं तुमसे ना हो पाएगा.
5: वाओ.
4: लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी. उन्होंने थिएटर कंटिन्यू किया. आपको पता है ये पहले गवर्नमेंट में भी काम करते थे, गवर्नमेंट में डेस्क जॉब करते थे अंटिल 40
5: और रात को थिएटर किया करते थे.
4: रात को जाके थिएटर भी करते थे.
5: पैशन ना बंदे के अंदर पैशन था कि मतलब मैं यहाँ पे सरवाइव करने के लिए काम तो करूंगा लेकिन मेरा पैशन कहीं नहीं जाना चाहिए. एंड आई थिंक इट वर्क्ड बिकॉज 21 years उन्होंने थिएटर में काम किया है. 21 years एंड या बहुत सारी बातें उनके बारे में है और आपसे भी सवाल पूछेंगे. आज आपके लिए सवाल ये है अमरीश पुरी को लेके. अगर आपको पता हो तो उनके जो करेक्टर्स होते हैं बहुत ही मतलब ऐसा नाम जो है ना छप जाता है कि ये नाम तो अमरीश पुरी के करेक्टर का नाम ही है.
4: जी.
5: आपको बताना है ये करेक्टर का नाम कौन सी मूवी में था अमरीश पुरी का.
4: बताइए बताइए.
5: ठाकुर दुर्जन सिंह. ठाकुर दुर्जन सिंह अमरीश पुरी का नाम किस मूवी में था आपको बताना है.
4: मैं एक हिंदू क्या?
5: क्या
4: ठाकुर तो गियो.
5: या फिर वो वाला हिंट यार, इस मूवी में वो डायलॉग भी था ना ठाकुर दुर्जन सिंह का कि गांव वाले कहाँ गए सब.
4: हाँ, गए सब.
5: जो बहुत यूज होता है.
4: बड़ा मूवी मैन, ग्रेट मूवी. बट अभी के लिए आपको हम जो गाना सुनाने वाले उसी मूवी का ये एक डायलॉग है.
5: या और जो कि मूवी की स्टार्टिंग में आता है एंड आई लव दिस सीन, ईच एंड एवरी सीन ऑफ द मूवी दो. बट यू नो ये सीन ने लंदन की एक अलग ही इमेज हमारे सामने रखी थी कि ऐसे कबूतर है वहाँ पे
4: लंदन
5: या उनको गाने दे रहे हैं, दाने दे रहे हैं, वो सारी गाने
4: क्या दे रहे सैंडी.
5: I know.
4: चलो सुनते हैं.
6: के बाद ही ये धरती मेरे लिए अजनबी है और मैं इसके लिए यहाँ मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन कबूतरों के, क्योंकि ये भी मेरी ही तरह है. इनका भी कोई देश नहीं जहां दाना देखा उतर गए और पेट भर कर उड़ गए. मैं कब उड़ सकूंगा मालूम नहीं. जरूरतों ने पर काट दिए हैं, रोटी पांव की जंजीर बन गई है, लेकिन कभी ना कभी मैं जाऊंगा जरूर अपने देश को, अपने पंजाब को. आधी उम्र गुजारने के
4: सो ये अब मैं सुना जब डायलॉग तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब ये लंदन में रह के खुश नहीं था. ये अपने गांव को मिस कर रहा था, अपने घर को मिस कर रहा था.
5: ऑलवेज
4: तो क्यों गया भाई? क्योंकि रोटी कमानी थी.
5: जैसे कि सब जाते हैं वैसे ही. पर वो नॉस्टैल्जिया रहता है ना अपनी होम कंट्री का. एनीवे तो शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ.

0: आई होप इस गाने को सुनने के बाद आपका भी अभी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब अपने देश वापस जाने का मन नहीं कर रहा है।
1: या ऐसी मूवीज रही हैं अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी के बहुत सारे फैक्ट है, तुम्हें पता है उनके पास रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट नॉमिनेशंस फॉर द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलन।
0: ओ वाओ, या डेफिनेटली यार, इतने विलन वाले रोल्स किए इन्होंने।
1: या तो नो डाउट वो उनको मिलना ही था। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू उनके जो करेक्टर्स थे ही प्लेड ऑन स्क्रीन, ही वॉज अ प्रोफेशनल एंड फिटनेस में बहुत ज़्यादा वो तेज थे।
0: एक्चुअली मैं अब फिटनेस की अच्छी ही बात कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने एक रेयर इलनेस को कोप किया है वाया रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स। तो 2003 में ये एक शूटिंग कर रहे थे मूवी की, जाल द ट्रैप, हिमाचल प्रदेश में इसकी शूटिंग हो रही थी, और उस टाइम पे उनको एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ उनके साथ, जिसके कारण उनको सीरियस इंजरीज हुई अपने फेस पे और आईज पे। एंड इस ट्रॉमा को एक इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन लग रहा था, बट लेटर उनको डायग्नोस किया गया माइलोडी स्प्लास्टिक सिंड्रोम।
1: ओके,
0: नॉट मेलोडी, माइलोडी कुछ तो भी ऐसा, स्प्लास्टिक सिंड्रोम। ये एक रेयर फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर है, लेकिन उन्होंने क्वाइटली इसको फाइट किया अंटिल ही पास्ड अवे इन अर्ली 2005। तो उनको एक ये रेयर डिजीज हो गई थी, हमको पता भी नहीं था इसके बारे में यार, आपको
1: पता था? इतना पता था कि ब्रेन हेमरेज के वाज वन ऑफ द रीजन जो उनकी डेथ हुई थी।
0: अच्छा,
1: सो दिस आई न्यू ऑलरेडी, बट या इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था।
0: ही हैड अ रेयर फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर एक्चुअली।
1: Yeah.
0: So that was the main, I think, initial reason.
1: Yeah, Bollywood villains की बात करते हैं, Mogambo को कैसे हम भूल सकते हैं? Mogambo always been the नाम जो associate हुआ with Amrish Puri. But you know, इससे पहले Mr. India से पहले जो commercial villains हुआ करते थे ना, उनका shouting के ऊपर as a gimmick या henchman वो सारा dependent होता था। बट अमरीश पुरी की जब एंट्री हुई, इट वॉज मोर अबाउट हिज लुक्स, अबाउट हिज स्टेयरिंग, वो आंखों से जो देखते थे ना कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, यहाँ पे तो अगला बंदा गया, वो जो था वो अपने एक साइकोलॉजिकल डेप्थ लेके आए थे अपने विलन के रोल में।
0: एक्चुअली आपको पता है, ये विलन वाला उनका जर्नी ये बॉलीवुड से नहीं शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ इंडियाना जोन्स मूवी से। इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ द डूम 1984 में शुरू नहीं, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने उसको और भी ज़्यादा कायम कर लिया। तो इस 1984 के हॉलीवुड मूवी में भी उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था, और वो भी बहुत धांसुई रोल था,
1: और इसी मूवी से उन्होंने बाल्ड लुक अपनी की थी। तो उनके बाल थे लेकिन उन्होंने बाल रिमूव किए थे और फिर कभी रखे ही नहीं।
0: ओ, फिर रखी नहीं कभी उन्होंने बाल?
1: ना, हमेशा उन्होंने विग पहनी है।
0: ओ,
1: तो अपने बाकी सब रोल्स के लिए उन्होंने विग ही पहनी है।
0: अच्छा, तो ओके,
1: फिर उन्होंने बाल नहीं रखे।
0: अच्छा, तो ये एक्चुअली ऐसा भी हुआ होगा सैंडी कि एक बार उन्होंने निकाल दिए फिर आए ही ना हो। हैशटैग रिलेटेबल।
1: या एनीवे, अब एक डायलॉग सुनते हैं Mogambo की, हमने बात ही की है रुस्बे, तो एक डायलॉग सुनते हैं और फिर एक गाना सुनते हैं उनकी मूवी का।
2: और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो, मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर, उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए Mogambo देगा। और जब ये हिंदुस्तानी खुद अपने ही हाथों से अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर लेंगे, तब मैं अपना अगला कदम आगे उठाऊंगा, और उस दिन सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम। तब दुनिया पुकारेगी, हेल Mogambo द किंग ऑफ इंडिया, हेल Mogambo किंग ऑफ इंडिया। ना समझ?
0: ओके, तो ये अभी मुझे लग रहा है इस मूवी को रिलीज करने का टाइम आ गया है।
1: आई नो, 39 इयर्स, आई मीन ये डायलॉग बोला था 1987 में,
0: और अभी भी हम इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं।
1: 2026 इट इज,
0: क्या हो रहा है यार,
1: आई नो, ऐसा लग रहा है कि आज ही किसी मूवी का डायलॉग है
0: Mogambo। ये एक्चुअली में Mogambo नहीं यूज हो रहा है बस।
1: या

0: ओके एनीवे सो आगे बढ़ते हैं. सवाल मैंने पूछा था कि कौन सी मूवी में उनका नाम था ठाकुर दुर्जन सिंह.
1: हाँ
0: द राइट आंसर इज
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे.
0: हाँ क्या रोल था यार उसमें.
1: काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर भेजा है. करण थैंक यू सो मच. नहीं सॉरी पार्थ थैंक यू सो मच. आपका आंसर यहाँ पे आ गया. और काफी लोगों ने अपना नाम नहीं भेजा है यहाँ पे. 117 आपका भी आंसर यहाँ पे आया. थैंक यू सो मच. ऐसे ही और भी सवाल आपको पूछेंगे. पार्टिसिपेट करते रहिए.

0: Trend Makers.
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden, queen size, now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
3: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
10: मुझे भी।
9: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
11: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aapke liye aaj Trend Makers mein Amrish Puri special lekar aa rahe hum on the occasion of Amrish Puri's birth anniversary, which is the 22nd of June.
2: Yeah, tumne Indiana Jones ke bare mein baat ki thi Ruzbe. Initially, he rejected Steven Spielberg. So, Hollywood casting director jab India mein aaye the to meet him and he was unimpressed by the commercial masala script and highly disciplined the because theater kiya hai na unhone hamesha uske karan to iske karan pehle unhone refuse kiya. He told them ki they can watch him perform on stage instead. So it was only after filmmaker Sir Richard Attenborough इन्होंने जब उनको कन्विंस किया एंड फिर इन्होंने वो मूवी की थी इंडियाना जोन्स.
1: ओह वाओ.
2: या इमेजिन स्टीवन स्पीलबर्ग को इन्होंने मना कर दिया था कि तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, बहुत मसाला कंटेंट है तुम्हारा.
1: और फिर समवन फ्रॉम बॉलीवुड इज सेइंग दैट.
2: या एग्जैक्टली बिकॉज़ ही वाज अ थिएटर एक्टर.
1: या या या
2: That was the main reason उस समय पर.
1: उनको पर एक्चुअली में अमरीश पुरी न्यू 12 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली.
2: Oh, wow.
1: इसलिए उन्होंने he's acted in over 400 films spanning in हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, ऐसे सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने बात मतलब मूवीज की है. इनको उर्दू भी आती है, पंजाबी, हिंदी को, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मल्टी मल्टी लिंगुअल. यार 12 लैंग्वेजेस. That's pretty crazy. So yeah, Amrish Puri के कुछ movies में कुछ बहुत ही जबरदस्त role रहे हैं, जैसे कि एक movie नायक.
2: Oh yeah, नायक में he was a chief minister ना.
1: Chief
2: minister का role play किया था.
1: Chief minister का role play किया था और एक उनका बहुत ही classic interview हुआ था उस movie में with the reporter.
2: With the नायक.
1: With the नायक. And I think the reaction that he gave there, like it was the crux of the movie. मतलब बहुत ही कमाल. आज भी वो वायरल होता है काफी. मतलब उसके मीम्स काफी दिखते हैं आज.
2: तो ये डायलॉग सुनते हैं.
1: ये डायलॉग सुनते हैं. बहुत ही बढ़िया.
3: बैठ जाइए प्लीज. अच्छी डबिंग की है. मेरे जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बुलवा कर जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये. इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता.
4: इसे खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया है सर.
3: ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है?
4: अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते?
3: माइक पकड़कर सैटेलाइट टेलीविजन की आड़ में तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं उसका जवाब दूंगा. क्यों?
4: जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए 8 करोड़ लोगों ने आपको चुना है.
3: मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? वहां की चौकट पार की है तुमने? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं. रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं. जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना वही जानता है. जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता. मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं. तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता और यही मैंने उस दिन किया.
4: उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर. जो समस्या आसानी से हल हो सकती थी उसे आपने अपने फायदे के लिए और बड़ा बनने दिया और अब यहाँ बैठकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं.
1: Oh my God, crazy ना.
2: Crazy. मैं तो सोच रही हूँ उस टाइम की जो मूवीज आती थी रुजबे, क्वाइट इंटरेस्टिंग बोल्ड मूवीज नहीं आती थी डायलॉग्स को भी लेके.
1: लाइक सीरियसली, लाइक इवन इस पूरे डायलॉग में, इस पूरे जो सीन है इसमें अमरीश पुरी के जो लेवल के डायलॉग्स थे और जो टफनेस था उस डायलॉग में, आई थिंक कंपेयर टू इवन अनिल कपूर द टफनेस वाज नेक्स्ट लेवल. यार जो स्पीड पे उसने सब बोला है
2: पूरा डायलॉग एक साथ. एंड आवाज तो कमाल की है ही. खैर,
1: सो या अमरीश पुरी के नायक मूवी अगर आपने नहीं देखी है आप जरूर चेकआउट कीजिएगा. पर अभी के लिए उन्हीं का एक और हिट गाना आपके लिए.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Botany Toyota. Fuel save a month.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 10 degrees. On the southern, we've got reports of a crash heading north by Mountain Road, Auckland Grammar there. So it's busy northbound from Sylvia Park. Big delays because of that. On the southwestern, things pretty slow westbound from Massey Road to Mangere Bridge. And in the other direction, heavy Puhinui Road through to the southern.
2: Buy a used Toyota, get a $500 fuel voucher. Terms apply. Visit Botany Toyota.
4: Professional by ninjas has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
7: We've got double glazing.
6: Have you still got that cold, damp feeling?
8: Yeah, we do.
6: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है क्या आप तैयार हैं बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें गटरों को साफ रखें खुली चीजों को बांध लें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods
10: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
11: Trendmakers.
12: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Trendmakers mein Amrish Puri special sun rahe hain aap aaj.
13: Yes, Amrish Puri ki aaj birth anniversary hai. तो आज ना डायलॉग सुनते समय ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अमरीश पुरी की मूवी देखनी पड़ेगी
12: आई नो यार इतने क्लासिक मूवीज दी है ना अमरीश पुरी ने एंड आई थिंक हिम एज अ विलन लाइक यू हैव टू हेट द विलन
13: या यू हैव टू मतलब करेक्टर्स के तुम नाम सुनो रुस्बे मोगैम्बो ठाकुर दुर्जन सिंह बलदेव सिंह चौधरी बलदेव सिंह एक और भुजंग
12: भुजंग
13: भुजंग नाम सुनो तुम देन राजा साहब आते हैं ठकराल ये सब मतलब ऐसे नाम वेरी इंटरेस्टिंग उनके करेक्टर्स जो है हमेशा से ऐसे रहे हैं बट उनका एक पीक टाइम वो भी था जब वो पैरेलल सिनेमा में थे 1970s में बिफोर इनटू द कमर्शियल सिनेमा ही वाज इनटू पैरेलल सिनेमा मूवमेंट जो उनको लगता था कि उनके लिए बनी हुई है देन डायरेक्टर्स लाइक श्याम बेनेगल गोविंद नेहलानी दे यूज टू कास्ट हिम इन अ रॉ ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक काइंड ऑफ रोल्स एज वेल तो इसीलिए रिमेंबर वो जो इंडियाना जोन्स का उनके पास जब आया ये तो मसाला मूवी है
12: वो नहीं करूंगा मैं
13: तो अमरीश पुरी ने हमेशा वैसे अपने टर्म्स के ऊपर काम भी किया है ही बीन एक्सपेरिमेंटल एज वेल विद हिज लुक्स आल्सो यार तुम उनके विलन वाली कोई भी लुक उठाओ हर लुक डिफरेंट है
12: या और वो हर एक लुक सिर्फ लुक ही नहीं है मतलब वो पूरा कैरेक्टर भी अलग प्ले करते हैं ना उसमें लाइक आपको उनका कोई भी कैरेक्टर देख लो उसके अलग अपने एक ये रहेंगे वेरी अंडररेटेड एक्चुअली एट दैट पॉइंट
13: या मुझे लगता है कि दैट्स अनदर इन्फ्लुएंस ऑफ बीइंग अ थिएटर एक्टर बिकॉज़ थिएटर एक्टर अपनी लुक्स के ऊपर बहुत काम करते हैं ना कि
12: बॉडी लैंग्वेज के ऊपर
13: भी कि किस वे से उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एंड अमरीश पुरी की तो मूवीज में उनके आईब्रो वॉज द हाईलाइट ऑफ मेनी of many roles many characters
12: yeah but talking about theater sorry just digressing a very little slight bit maine na over the weekend wo dekhi balloon dog dekhi
13: oh how was it
12: it was very nice yeah actually quite interesting and jo uska total theater ka picturization tha na it's like theater mein movie wala feel aa raha hai.
13: Oh wow.
12: It was beautiful.
13: Oh, very,
12: it was
13: very nice.
12: Nice. Yeah.
13: That's I think beauty of
12: live music bhi tha wahan pe. Live music play ho raha tha.
13: Yeah.
12: And one person like playing the whole thing.
13: Wow.
12: Like piano ke sath sath uske paas wo drum ka bhi ek set tha.
13: To
12: wo saath mein kar raha tha. It was so beautiful.
13: Very, oh wow. Like, so next time jab aayega Jacob Rajan ka koi aisa play to guys definitely jayega because it's worth watching.
12: Yeah, 100%. 100%. The only thing what I would want to see more now next time is I would want to see a different India as well in that play. Abhi currently main jo India dekhta hun usme wo hai India exist karta hai but sirf wo hi India exist nahi karta hai. Like for example migrant workers coming here and working on like you know difficult jobs aur wo sare wo bhi hai agree karta hu but uske sath sath aise bhi migrants hai jo yahan pe aaye hai aur bade position pe jobs kar rahe hai apne aap ke liye kafi economy ko kafi help kar rahe
13: hai
12: cheeze kafi alag kar rahe
13: hai jo yeah I understand what you saying. Okay,
12: so I would want to see a portrayal of that India or that us also.
13: Yeah, I think that's a mainstream thing now.
12: And by India, I just don't mean India. I mean by people with Indian descent. Like, you know, I want, because everywhere, all around the world, people with Indian origin have had a different standing now compared to jo pehle portray hota tha mainstream mein.
13: It's high time to change in movies or in theatres as well.
12: In theatres as well. Jo bhi, and mainly wo theatres jo yahan pe mainstream consider hota hai.
13: Yeah.
12: So, yeah, changing that image is very important, I think, for us. But anyway, coming back to Amrish Puri, I think a chota sa dialogue hai unka, ek movie Salakhe, jiska gaana to hum nahi play kar pa rahe, lekin ek dialogue play kar lete.
13: Yeah.
12: Isme aap Anupam Kher, Amrish Puri, aur shayad Sunny Deol ki bhi awaaz sunoge na.
8: Ucha mat boliye, Master Ji. Ye Jaspal Rana ki deodi hai. इस देवड़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। रहते आप गांधीवली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए हैं। नेता हैं क्या आप इनके? आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि गोपाल अन्ना मेरा आदमी है, आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ही ड्योड़ी पर खड़े कर दिए। राणा साहब,
12: what a class movie,
13: nice,
12: man. Sare powerful actors. But yeah, I think yehi tha hamara aaj tak ka, aaj ka time for,
13: yeah, for the Amrish Puri. Yeah, so take care of yourself, guys. Ab aapse kal mulaqat hogi.
12: Apna khayal rakhiye, and we'll see you tomorrow. Bye.

0: Coffee Hour on Hum.
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
2: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.gov.nz/floods।
3: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. National is insisting its KiwiSaver election policy will be worth it for everyone in the long run. The party wants to make participation compulsory and eventually lift contribution rates to 6% each for employers and employees. In the South Auckland suburb of Flatbush, police are at Orongamai Park after a report of what's believed to be a body in water. The scene is at a secluded pond within the park. In the UK, senior government figures expect Prime Minister Sir Keir Starmer to announce his resignation plan. It could come as soon as this evening our time. Andy Burnham, who could replace the PM, will be in Westminster today to be sworn in as an MP. In sport, football updates brought to you by Hisense, and the All Whites still have an outside chance of making the round of 32 at the World Cup. Today, New Zealand's first half game plan was as simple as it was effective. The All Whites led 1-0 at the break. Egypt found a way to dismantle that plan in the second half, winning 3-1. And teenage running sensation Sam Ruths had to pull out of the World Athletics Under 20 Championships. He suffered a stress fracture to his lower leg while playing football in April.
3: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
6: A very good evening, everyone. Welcome to Night Cafe. Ek aur hafte ka Night Cafe lekar main Krish aa gaya hu. Monday to Thursday, 8 to midnight, main aapka saath dunga. Har ek Night Cafe mein, abhi kuch hafton se main aapka saath deta aa raha hu aur bahut hi acha lag raha hai. Isi tarah se is hafte ko bhi aap hamara saath dena taki ye safar aur bhi rangin bane, aur bhi mazedar bane. Aaj jabki Monday hai, to aaj No Logic मंडे लेकर आएंगे जिसमें बातें करेंगे, स्टोरी शेयर करेंगे, गाने भी ऐसे प्ले करेंगे जिसमें कम लॉजिक नज़र आता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम टू द शो एवरीवन. ना देर करते हुए अभी शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए नो लॉजिक मंडे.
3: नो लॉजिक मंडे.
6: वेलकम एवरीवन. नो लॉजिक मंडे में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूं. बहुत कुछ आज मैं प्रोग्राम में लेकर आया हूं. जैसे कि नो लॉजिक नाम है, वैसा ही प्रोग्राम फॉर्मेट भी है जिसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसमें लॉजिक कम नज़र आता है. गाने भी कुछ ऐसे ही होंगे आपके लिए. एक एक करके कुछ इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आज मंडे नाइट है, 22nd June है और मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. आपका स्वागत है ऑन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Now cycle.
1: No Logic Monday.
2: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आ रहा हूँ. मोल्ड एज्ड टूना, ये एक जापानीज डेलिकेसी है. 17 जून ऑफ दिस ईयर ये स्टोरी को पब्लिश किया गया है और जापान की ये स्टोरी है जहाँ पर एक रेयर जापानीज डेलिकेसी जिसमें एजिंग ब्लूफिन टूना एक लय ऑफ मोल्ड के नीचे इनको रखा जाता है और इनफैक्ट इंतज़ार किया जाता है कि कब इन पर एक लय ऑफ मोल्ड हो जाए. और ये प्रोसेस रिजेंबल करता है मोल्ड राइपनिंग टेक्निक्स जो सर्टेन चीज़ेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो कहा गया है कि ये एक यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर क्रिएट करता है और क्रिटिक्स ने कहा कि ये अपीयरेंस और प्रिपरेशन काफ़ी अनसेटलिंग है. तो ये एक डेलिकेसी है. अगर आप जापान जा रहे हैं तो अगर आप ये रेयर जापानीज डेलिकेसी ट्राई करना चाहते हैं जिसमें ब्लूफिन टूना एज्ड किया हुआ और लय ऑफ मोल्ड के साथ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप शौक से कर सकते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग खबरें कुछ ही देर में.

0: No Logic Monday.
1: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है No Logic Monday जारी है और एक एक करके कुछ ऐसे information भी आपके लिए हम लेकर आते हैं जो interesting लगेगा आपको. World's thinnest chocolate को बना दिया गया है. 16 June of this year, Japan में ये story publish हुआ है. Japanese confectioners ने कुछ ऐसे chocolates को तैयार किया है जो only 0.03 mm thick है और इस product को roll किया गया into an ultra thin edible sheet और ये एक specialized मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से तैयार किया गया है और कहा गया है कि ये चॉकलेट जो है इसको खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड अ यूनिक माउथ फील और कहा गया है कि काफ़ी अटेंशन इस चॉकलेट को मिली है फ्रॉम फूड और डिज़ाइन एंथुसिएस्ट कि ऐसा कुछ 0.03 mm थिक चॉकलेट को तैयार किया गया है वो भी जापान में. जापान नो डाउट बहुत आगे है. आई मीन आई हैव बीन टू जापान एंड आई लव जापान खाने से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक चीज़ जो यहाँ पर होता है तो ये चॉकलेट भी डजंट सरप्राइज मी लेकिन अच्छा लगेगा जब आई विल बी एबल टू सी कि ये किस तरह से दिखता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ मिड नाइट तक रहेगा. 9 PM तक चलेगा आपके लिए नो लॉजिक मंडे.
2: बच्चों को यहाँ पर साउंड सिस्टम से दूर रखें.

Where nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ मिडनाइट तक रहेगा. ऑटोनोमस रोबोट टॉयलेट को अनवेल किया गया है. चाइना की स्टोरी है. 15 जून को पब्लिश किया गया ऑफ दिस ईयर. एक चाइनीज कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल रोबोटिक टॉयलेट और ये जो डिवाइस है खास तौर पर नेविगेट कर सकता है अराउंड ऑब्स्टिकल्स इंडिपेंडेंटली. और कहा गया है कि ये डिज़ाइन एल्डरली और मोबिलिटी इम्पेयर्ड यूज़र्स के लिए बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन है. और कहा गया है कि ये सिस्टम खुद अपने आप को क्लीन कर सकता है ऑटोमेटिकली. और कहा गया है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑनलाइन जनरेट कर चुका है और लोग काफ़ी फैन बन चुके हैं. चाइना भी बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं. रोबोट की बात अगर किया जाए तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों को बना रहे हैं. अभी ऑटोनोमस रोबोट टॉयलेट को भी अनवेल किया है चाइना ने. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ हम करेंगे बहुत ही जल्दी.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: नो लॉजिक मंडे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, गाने भी ऐसे सुना रहा हूँ जो आपको पसंद आ रहे हैं, जिसमें लॉजिक कम सुनाई देता है लेकिन मज़ेदार है, अपबीट है या बहुत ही कैची सॉन्ग्स हैं, ऐसे ही सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आते हैं। एक योक जो होता है वो येलो कलर का होता है, ये हम सब देख चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट वाइट योक एग्स, अगर आपने अभी तक देखा या नहीं देखा है। 15 जून ऑफ दिस ईयर एक और स्टोरी जापान से हम लेकर आए हैं, जहाँ पर कोमेत्सुया एग्स काफ़ी प्रसिद्ध है फॉर द unusually pale yolks, और कहा गया है कि इनका जो डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस है इनको काफ़ी हाईली सॉट आफ्टर एग्स बना दिया है, लोग खरीदबीन करते हैं इनका, इनके लिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और प्रोड्यूसर्स ने अचीव किया है ये इफेक्ट थ्रू स्पेशलाइज फीडिंग मेथड्स, जो एडवर्टाइज़ किया जाता है कि किस तरह से आप इस एग को खा सकते हैं, बना सकते हैं, प्रमोशनल जो मटीरियल्स है बहुत अलग तरह से इस एग्स को प्रमोट कर रहे हैं। कहा गया है कि ये एग्स काफ़ी पॉपुलर है अमंग शेफ्स और फूड फोटोग्राफर्स, और काफ़ी कंज्यूमर्स इनको खरीदना पसंद करते हैं फॉर देयर नॉवेल्टी वैल्यू, कुछ अलग है, कुछ हटके है। वाइट योक एग्स अगर होंगे, ये एक बड़ा सेंसेशन बन चुका है जापान में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए, कुछ ऐसे गाने जिसमें लॉजिक कम सुनाई देता है। शायद ये एक और गाना जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसमें क्या आपको लॉजिक नज़र आता है हमें ज़रूर बताएं। 5599

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: As a baby, I was burnt in hot water.
2: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
3: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
4: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
0: The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari good brands nahi hai. Hum.
0: Night Cafe on Hum. Where nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
6: नो लॉजिक मंडे आप सुनते रहें. कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग न्यूज़ भी हम लेकर आते हैं इस सेगमेंट में. एक आदमी जो एक फॉरेस्ट में खो गया था नीली 3 ईयर्स के लिए, इसको ज़िंदा पाया गया है. इंडोनेशिया की ये स्टोरी है. 12th June ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है, जहाँ पर एक 43-year-old मैन वॉज फाउंड अलाइव इन ए माउंटेन फॉरेस्ट. और ये भटक गया था इस जंगल में जब यहाँ पर ये घूमने गया था या हाइक के लिए गया था 3 साल पहले. लेकिन यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने इनको इवेंचुअली डिस्कवर किया और अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया. इनका सर्वाइवल अंडर हार्श कंडीशंस ने रेस्क्यूअर्स को अमेज किया है कि ये किस तरह से हो सकता है और कैसे मुमकिन हो पाएगा. और स्टोरी से काफ़ी वाइड स्प्रेड अटेंशन मिला है अक्रॉस एशिया. और इनफैक्ट फॉरेस्ट में शायद सर्वाइव करना थोड़ा बहुत मुमकिन है अगर डेडली जानवर्स नहीं हैं. वैसे तो होते हैं इंडोनेशियन फॉरेस्ट में, लेकिन उसके बीच इसको ज़िंदा रहना, ये शॉकिंग है, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है. लेकिन जहाँ तक खाने की बात किया जाए तो अबंडेंस ऑफ फूड फॉरेस्ट में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं. मैं कृषि आपके साथ दे रहा हूँ. आज नो लॉजिक मंडे में इतना ही. कुछ और गाने आपको सुनाते हैं और अगले घंटे पर मुलाकात होती है.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
8: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5 p.m. with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
9: Attention, please. Just a reminder about our bloody important meeting this National Blood Donor Week to give blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. In the UK, a few minutes ago, British Prime Minister Sir Keir Starmer announced his resignation as leader of the Labour Party. He's spoken with the King to inform him of his decision to resign. Andy Burnham, who could replace the PM, will be in Westminster today to be sworn in as MP for Makerfield. National acknowledges higher KiwiSaver rates would be tough for some, but insists it's even harder not having enough for retirement. If re-elected, the party plans to lift employer and employee contributions and make participation compulsory. Police are at a park in South Auckland after reports of what's believed to be a body in water. The scene is at a secluded pond within Rongomai Park near Ōtara. In sport, football updates brought to you by Hisense, and 4 more games tomorrow at the World Cup as the group matches continue. The action will include the second matches for defending champions Argentina playing Austria and one of the hot favourites, France, playing Iraq. And the NBL basketball this evening in Napier, and the Southland Sharks making no race of it against the Bay Hawks, winning 117 to 93.
5: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
11: 1 यू लिसनिंग टू नंबर 1 हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. नाइट कैफे जारी है. मंडे आज है तो नो लॉजिक मंडे के बाद, और ऐसे ही गाने कुछ हमने जो प्ले किया लॉजिक जिसमें कम सुनाई देता है. अभी फिलहाल 9 बजे के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हो गया. अभी नॉर्मल प्रोग्राम शुरू करते हैं. नाइट कैफे में आपका स्वागत है, और इस घंटे पर बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 30 मिनट्स के लिए. आप या आप इन्जॉय करें. और फिर आज मैं काफ़ी सामाजिक सूचना लेकर आया हूँ. काफ़ी इवेंट्स होने को है. राहत फ़तेह अली खान और गुजुबाई ने एक्सचेंज ऑफ़र, इस पर एक ज़रूरी अनाउंसमेंट भी हमारे पास है. मतलब थोड़ा सा झलकियाँ आपको देना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे. आज ही आज प्रोग्राम में होगा हमारे साथ. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम टू द शो एवरीवन.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Oakland, get ready. Ek evening of laughter entertainment hone ja raha hai with Gujju Bhai ni exchange offer jisme legendary Siddharth Randeria aa rahe hain. Ye brand new comedy hai jisme Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer jisse series of hilarious misunderstandings, unexpected twists aur laugh out loud situations aate hain. Witty dialogues hai, relatable family moments honge aur is show mein classic Gujarati humor bhi sunne ko milega. Dekhne को मिलेगा एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए. सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं. तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें. टिकट्स आज ही बुक कीजिए premierticket.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 July को होने जा रहा है 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: As a baby, I was burnt in hot water.
5: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
6: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
7: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
10: Bollywood ka asli blockbuster.
11: Pure sheher pe kabza hoga raj hoga.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Hum.
10: Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
13: Let's go.
14: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करेंगे आपके लिए। ओकलैंड के लिए सूचना है फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन की ओर से कि वेंसडे टू फ्राइडे यानी 24th to 26th June ऑफ दिस ईयर दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक वोटर रजिस्ट्रेशन ओपन है आपके लिए। मैंग्री सेंटर पार्क आप जा सकते हैं, 101 रॉबर्टसन रोड मैंग्री। तो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं मैंग्री सेंटर पार्क, 101 रॉबर्टसन रोड मैंग्री। दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक होगा, 24th to 26th of June तक। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए। नाइट कैफे जारी है।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: अला रे अला सिम्बा अला

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. New Zealand Art and Culture Charitable Trust की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: MediaWorks Complaints. How can I help?
1: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
0: Thank you.
1: It's all I can think about.
0: What does it sound like?
1: Yeah, I'd rather not.
0: Go on, why don't you have a crack?
1: Okay, got a plumbing problem.
0: Oh, I need a bit more than that.
1: They've got your back.
0: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
1: Oh, okay.
2: There's no better plumber to give it a crack.
0: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
1: No, I want a plumber.
3: Advertise with
4: MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
5: Oh my, oh my. Grey South Road, greater than ever.
6: South Auckland's buses just became a lot better.
5: Weymouth Road, way better buses.
6: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
5: Woody, no worries. MIT, A-OK.
6: Search AT Better South Auckland Buses for details.
5: Airport, got your transport.
6: Then turn up and go.
7: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari good brands here.
8: Night Cafe.
10: You're listening to Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. हम के साथ जब भी आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होते रहता है. कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हम लेकर आते हैं जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होता है. What if ये ईस्टा सिर्फ एक लॉन्ग वीकेंड नहीं रहता लेकिन सन, स्टोरीज, केओस और ए क्रू साथ में कहीं पर जाते एंड ए क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर. तो अगर आपको थोड़ा कुछ हिंट मिल रहा है या आप सोच रहे हैं क्या किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हमें सुनते रहना है बिकॉज यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस. ये सूचना ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको सुनना है हमारे साथ होकर. इसलिए आपको हम के साथ चिपके रहना है, हमें सुनते रहना है क्योंकि ये ईस्टा सिर्फ जस्ट अ लॉन्ग वीकेंड नहीं रहेगा लेकिन सन स्टोरीज, केओस और अ क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर. इसके लिए आप हमें सुनते रहो. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. जारी है आपके लिए हम पर नाइट कैफे.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं देख रहे हैं और ये लाइव शोज भी करने के लिए आ रहे हैं. एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर है राहत फतेह अली खान जो ओकलन आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. ये मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि टाइमलेस हिट्स होंगे, सोल स्टिरिंग कवाली होंगे. इनके पावरफुल वॉइस में, कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपको सुनना है ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद है. बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को रिकॉर्ड किया है. 25th of July को ये शो होगा ट्रस्ट अरीना में और जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये शो आपके लिए होने जा रहा है. dryTickets.com से आप टिकट्स ले सकते हैं. डबल पास जीतना है तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन हमारे साथ ही आपसे जब भी पूछेंगे आपको तुरंत कॉल कर या टेक्स्ट कर जवाब देना है. ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका होगा. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान को देखने के लिए आप टिकट जरूर ले. 25th of July को ये शो होने जा रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Night Cafe on Hum. आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: नाइट कैफे जारी है. मंडे इट इज 22nd जून है. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका साथ. आज 12 तक मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम लेकर आएंगे और कुछ बॉलीवुड न्यूज़ भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. इनफैक्ट नाइट कैफे में वेंसडेज को आपके लिए रहता है मिड वीक मसाला, जिसमें बॉलीवुड न्यूज़ हम लेकर आते हैं. तो ये आप देखना ना भूले. कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक सॉन्ग्स फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स. प्ले करने का टाइम आ चुका है. एंजॉय एवरीवन.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: कॉकटेल 2 के बारे में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं. कृति सैनन, रश्मिका मंडाना और शाहिद कपूर जैसे धुरंधर स्टार्स इस फिल्म में हैं. और डे 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 47 करोड़ है इस मूवी का, और देवा का लाइफ टाइम बीट कर चुका है ये मूवी. कॉकटेल 2 कहा गया है कि एक ऐसी फिल्म है जो लोग पसंद कर रहे हैं, यंग ऑडियंस के साथ काफ़ी ये अट्रैक्ट कर रहा है इनको. और कहा गया है कि मिक्स रिव्यूज मिले हैं फ्रॉम क्रिटिक्स और ऑडियंसेस, लेकिन काफ़ी स्टेडी रहा इनका रेस एट द बॉक्स ऑफिस. डिसेंट ओपनिंग हुआ है, अपवर्ड ट्रेंड इनमें इस फिल्म को देखने को मिला है, और इट इज़ परफॉर्मिंग वेल. अभी फिलहाल 47.5 करोड़ सोफा ये डे 3 के अंदर कमा चुकी है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे आज प्रोग्राम में.

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड। एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रेमेशंस, 11 बोल्डरवुड प्लेस, बीरी। कॉल 24/7 ऑन 0927886000.
3: Smart Pay is now. Shift for Dakota NZ. Global commerce, local service.
4: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
3: Shift 4, Dakota NZ. Global commerce.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: यू नो व्हाट दैट साउंड मींस, डोंट यू? Another bloody meeting. But before you hit decline, this is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put a time in the calendar for you and your blood group to give blood or plasma. Your blood group could be friends, whānau, anyone who wants to save lives. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai aur raat 12 tak hamara saath rahega. Kuch aur der tak hum aapka saath denge. International Health Research ne is study ko publish kiya hai on 21st June. Jahan par researchers ne compare kiya hai effects of different dietary fats. Wahin par palmitic acid ko link kiya gaya tha with inflammation or insulin resistance. Aur ek aur fat appeared to have protective effects. Study ne suggest kiya hai ki not all fats affect health equally. Is finding se आगे चलकर फ्यूचर डाइटरी रिकमेंडेशंस इन्फ्लुएंस होंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ साथ गाने तो बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार हमारे साथ होकर बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है कल ट्यूजडे नाइट. हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए कोक स्टूडियो रिलोडेड 8 to 9 के बीच, और नाइट कैफे एज यूजुअल चलता रहेगा टिल मिडनाइट. अपना बहुत ही ख्याल रखें. गुड नाइट एवरीवन.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey,

वे खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले। वे गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

¿Eres tú? ¿Nei manega? ¡Samia!

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
4: As a baby, I was burnt in hot water.
5: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
6: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
7: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
8: Play Bollywood's biggest hits.
9: Budget Gandhi.
8: Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua West में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

जो भी देखे यही पूछे है किस की बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night Fly.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछ हुई मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 or visit legalassociates.co.nz.
3: Dad, I feel sick.
4: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or waka, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
5: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
6: As a baby, I was burnt in hot water.
7: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
8: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
9: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
10: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. UK Prime Minister Keir Starmer has bowed to pressure and resigned, his speech hitting a note of emotion when he spoke of what's next.
12: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can to my beautiful children.
11: Starmer is the sixth British PM to stand down in the past decade. Police are lamenting another horrific weekend on the roads. 7 people died and others are seriously injured. Superintendent Steve Greely says it's devastating.
13: We're talking about the end of human life here, you know, and this time last week they were fine. Ostensibly they were looking to have a future, planning ahead, but because of one mistake, that's not going to happen for these people.
11: Police search and rescue have been called to a secluded pond in an Auckland park after an apparent body in the water was reported. The singer at Rongomai Park near Ōtara was cordoned off last night. Police are yet to give an update. The number of students switching to alternative education has doubled in the past decade. More than 8,000 12 to 16-year-olds left mainstream schools. Rebecca Bjarnason from the Education Review Office says they're among the most disadvantaged.
14: They're 5 times as likely to come from poorer communities and they've got really poor history of education.
11: In sport, the All Whites are wondering what might have been after losing 3-1 to Egypt at the FIFA World Cup. Coach Darren Baisley's team were up 1-0 at halftime in Vancouver before fading away.
15: You know, when you see a team celebrating like that on the pitch, that could have been us. You know, we could have been in that moment.
11: The All Whites must beat Belgium on Saturday to progress to the knockout stage. Football updates brought to you by Hisense.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: सूचित किया जाता है कि नगम्मा देवी के पति यानी मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडमैन की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन आज रात 7 से 8 बजे तक रहेगा और अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211 771 181 पर संपर्क कर सकते हैं। नगम्मा देवी के पति यानी मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन आज रात 7 से 8 बजे तक रहेगा और अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211 771 181 पर संपर्क कर सकते हैं। रीटा, सरिता और पोल की माँ यानी शनील, प्रनील, रिया और सिमी की नानी, बा मिशन हॉस्पिटल की भूतपूर्व कर्मचारी गोविंदम्मा की मृत्यु हो गई। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-093-9749 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की मां यानी चार्ल्स स्ट्रीट सुबह के स्वर्गीय मणिराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोई टोई जा सकते हैं या 279-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। चार्ल्स स्ट्रीट सुबह के स्वर्गीय मणिराम की पत्नी यानी किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की मां चंद्रवती सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोई टोई जा सकते हैं या 279-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जयनारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुआंगा सुबह फीजी शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जयनारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सुबह फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुआंगा सुबह फिजी शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। एलएसली की चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र यानी अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को 11 बजे मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 027-200-3343 पर संपर्क कर सकते हैं। एलएसली की चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र यानी अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को 11 बजे मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 027-200-3343 पर संपर्क कर सकते हैं।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
10: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
10: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
17: 10.5 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 17, overnight kam se kam 13 degrees rahega. Badal chhaye rahenge, aaj rahkar kuch barish hogi. Sunrise 7:33 am par, sunset sham 5:13 par aaj hoga.
10: Show with Vijay and Pooja,
19: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: Breakfast catch up.
17: 8 minute ho rahe hain, 6:00. Namaskar, a very good morning. Swagat hai aapka. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja. Aaj Mangalwar hai, 23 tarikh June. Ye subah aapko mubarak ho. Aapko bhi a very good morning and welcome.
7: गुड मॉर्निंग, आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते. और आज के इस सुबह में हमारे साथ इस सफर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है.
17: होपफुली उम्मीद है कल का दिन आपका काफी खुशियों भरा रहा होगा और अब एक नए दिन, एक नई सुबह, एक नई आशा, एक नई उम्मीद की शुरुआत जो है ये अब हम सभी के लिए हो रही है.
7: बिल्कुल, और जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो फिर मौका भी नहीं होता है, और इस नए मौके के साथ हमें बहुत सी ऐसी चीजें करने को मिलता है, या यूं कहें कि ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है जो हमें पहले कोशिश में नहीं मिला था. तो आपको भी अगर ऐसा एक मौका मिल रहा है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, यूज इट टू योर ओन बेनिफिट, और हमारे साथ आज के सफर का मजा जो है ये जरूर उठाइए, जुड़ जाइए. और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक, चाहे आप रोवा पर हमें सुन रहे हैं या फिर 104.2 FM के जरिए हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर आप सभी के साथ और आप सभी के समय के लिए थैंक यू सो मच.
17: तो चलिए, आज इस सफर में काफी कुछ होना है आपके लिए और इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से जानकारियां हम आपको जरूर देते रहेंगे.

0: सनी साइड अप।
1: आज की हमारी जो सनी साइड अप स्टोरी है ये ग्रीस से है और आई थिंक अ फ्यू डेज बैक एक पेरेंट कपल जो है इनकी स्टोरी सामने आई थी जो रूरल एरियाज हैं ग्रीस के वहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे एक छोटे से बच्चे के साथ और लैंग्वेज साइंस जो है उसको लेकर वो कन्फ्यूज्ड हो गए और गलती से एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसमें बैठ गए उसमें चढ़ गए और जहाँ उनको जाना था ये ट्रेन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी।
2: Oh. Yes.
1: और फिर हुआ क्या कि अब रूरल एरिया में थे वहाँ पर फोन का कोई सिग्नल नहीं था उनके पास कोई गूगल मैप नहीं था तो जैसे जैसे ट्रेन जो है तेज़ी के साथ और रूरल एरिया में जा रही थी वैसे वैसे इन पेरेंट्स का जो नो पैनिक सिचुएशन है ये
2: बढ़ रहा था
1: और इन द मिडल ऑफ थिंग्स पिता ने खड़े होकर पूरे जो क्या बोलते हैं ट्रेन का जो डब्बा होता है ना कैरिज में जोर से आवाज लगाई कि डज एनीवन हियर स्पीक इंग्लिश वी आर कंप्लीटली लॉस्ट।
2: ओके
1: तो वहां पर कई लोग थे जिनको शायद समझ भी नहीं आया लेकिन एक थोड़े उम्रदराज व्यक्ति थे जो पास में बैठे थे उन्होंने ना सिर्फ उनको पॉइंट किया एक टाइम टेबल की ओर ही स्टूड अप टुक चार्ज ऑफ द हैवी बैग्स और उस फैमिली के साथ अगले 3 स्टॉप्स तक ये रहे। व्हेन द ट्रेन फाइनली पुल्ड इनटू ए क्वाइट जंक्शन वो उनके साथ नीचे उतरे गए लोकल स्टेशन मास्टर के पास क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन थी वहाँ पर उन्होंने उसको रुकवाया तो फिर पेनल्टी लगनी थी उनको तो उन्होंने आर्ग्यू किया ट्रेन मास्टर के या स्टेशन मास्टर के साथ कि इनका पेनल्टी जो है वेव किया जाए क्योंकि वो यहाँ के नहीं है उनको
2: और उनको भाषा भी नहीं आती
1: दे आर कन्फ्यूज्ड और फिर जब उनका पेनल्टी वेव हो गया ही वेटेड विद द फैमिली उनके

0: तक मदद की जब तक कि वो सही रास्ते तक ना पहुंच गए. एंड ऑन द अदर हैंड ही एक्चुअली फॉट विद द अथॉरिटीज एज वेल, क्योंकि जो उनका जो सिचुएशन था उस हिसाब से अगर उन पर पेनल्टी भी लगती तो भी एक और एक हैवी फीलिंग हो जाती ना फॉर द फैमिली.
1: एग्जैक्टली.
0: कि पता नहीं उनके बजट में कितने पैसे थे, क्या था सिचुएशन, क्या नहीं. तो इसीलिए कभी कभी आप किसी को अगर परेशान देखो, किसी को ऐसे सिचुएशन में देखो जहाँ पर वो सामने से शायद आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और आपके बस में है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, देन गो फॉर इट, बिकॉज यू डोंट रियली नो कि आपकी एक छोटी सी हेल्प उनके लिए कितनी बड़ी साबित हो सकती है.
1: ऐसे और इंस्पायरिंग स्टोरीज हर दिन हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अभी 21 मिनट हो रहे हैं 6:00.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: देखो आ गए.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: एंट्रेंस पे ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
4: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
5: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: My kids won't shut up.
6: I'm not sure that's our problem.
7: They keep reciting lines from one of your radio ads.
6: Aw, cute.
7: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
8: What do you want, son? I want me some of that real southern chicken.
7: 28 times.
6: So where are you now?
7: Eating chicken.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.
0: The beat of Bollywood.
11: World's best. Hamari good brands nahi hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
13: सुबह के मुख्य समाचारों में, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को एक मेजर माइलस्टोन बताते हुए दावा किया है कि तेहरान अपने देश में न्यूक्लियर मॉनिटर्स को आने देने पर राजी हो गया है. हालांकि ईरान ने नए कमिटमेंट से इनकार किया है. इस दौरान यूएस ट्रेजरी ने ईरानियन ऑयल सेल्स पर 60 डे का वेवर जारी किया है और साथ ही फ्रोजन असेट्स को अनफ्रीज करने की इनिशिएटिव ली है, जिससे तेहरान सिर्फ यूएसए के अप्रूवल वाले सामान ही खरीद सकेगा. लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे पर वांस ने इसे अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस बताया है, जबकि इजरायली सोर्सेस के मुताबिक इजरायल सदर्न लेबनान के कुछ छोटे इलाकों से सिंबॉलिक विड्रोवल पर विचार कर रहा है. भारत में लखनऊ के अलीगंज एरिया में एक बिल्डिंग के कोचिंग सेंटर में कल एक आग लगने की वजह से कम 15 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है और कई लोग अंदर फंसे रह गए. आग लगने के बाद कुछ बच्चों ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी, जिसमें से 24 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 15 को मृत घोषित कर दिया गया है. इस हादसे के बाद लापरवाही के आरोप में 4 बड़े ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की जाँच के लिए 2 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है.

0: फिजी में भूतपूर्व जर्नलिस्ट जोसेफाता नाता ने फिजी ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के सामने कहा कि मैं 2000 कू के असली मास्टरमाइंड्स आराम से बाहर घूम रहे हैं, जबकि उन्होंने काउंटर रेवोल्यूशनरी वोफेयर यूनिट को मुसीबत में छोड़ दिया था। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार नाता ने कमीशन पर सवाल उठाए कि उनके पास लोगों को सामने बुलाने और सबूतों को वेरीफाई करने का तरीका नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी झूठी कहानी सुनाकर निकल सकता है। उन्होंने बताया कि कू के दौरान हत्याओं की प्लानिंग थी और पार्लियामेंट को जलाया जा सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में दोनों इतोकेई और इंडोफिजियंस कभी न कभी अग्रेसर्स और विक्टिम्स रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज सुबह एक बहुत ही जबरदस्त मैच खेला जा रहा है। अभी का ये मैच जो है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच खेला जा रहा है। दूसरे हिस्से में अर्जेंटीना की जीत ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1-0 से हो रही है। सुबह 9 बजे अगला मैच फ्रांस और इराक के बीच होगा। दिन में 12 बजे नॉर्वे सेनेगल से खेलेगा और आज का आखिरी मैच 3 बजे जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टू

0: 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और बॉलीवुड में सबसे पहले अगर देखें, काफी बातें हो रही हैं वेलकम टू द जंगल के बारे में। अक्षय कुमार आ रहे हैं भूत बंगला के बाद एक और एंटरटेनर जो है ये लेकर। अहमद खान ने इस फिल्म को तैयार किया है। आई थिंक इट्स द थर्ड वन इन द वेलकम फ्रेंचाइज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
1: Not really sure. I think हाँ शायद थर्ड ही होगा। मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ ना वेलकम का फ्रेंचाइज, so don't really know.
0: तो 3 दिनों बाद ये फिल्म रिलीज होने को है और खबर आ रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है इस फिल्म के रिलीज के लिए सर्टिफिकेशन दे दिया है, लेकिन ओनली आफ्टर 18 कट्स और मॉडिफिकेशन जो है ये इस फिल्म में किए गए।
1: ओके
0: 18 कट्स। तो जो रन टाइम है इस फिल्म का 2 hours 44 minutes है। और इस फिल्म का समरी जो है ये भी सर्टिफाई किया गया है, इन द मैट कैप ऑफ वेलकम वेयर कायोस इज ऑलवेज जस्ट वन बेड आइडिया अवे कम्स इट्स वाइल्डेस्ट चैप्टर येट वेलकम टू द जंगल। ये इसका कैप है। और कई कट्स जो है, डायलॉग्स जो है ये काफ़ी चेंज किए गए हैं। इसके अलावा सीन्स जो हैं ये भी हटाए गए हैं, कुछ बदले किए गए हैं, जैसे कि बिकिनी विजुअल्स और बॉडी मूवमेंट्स जो हैं ये रिमूव किए गए हैं। एंड अपेरेंटली टोटल डिलीशन जो है तकरीबन 10 सेकंड्स का इस फिल्म से डिलीट किया गया है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफ्ताब शिवदासनी, जैकी श्रॉफ और परेश रावल जैसे स्टार्स इस मूवी में नजर आने वाले हैं।
1: That's the point, you know, there's so many people कि आप सबका नाम जो है शायद ये भी याद ना रखे कि इतने सारे लोग जो है इस फिल्म का हिस्सा है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने सारे लोग हैं, अब इनको स्क्रीन टाइम जो ये कैसे मिलेगा, लाइक हाउ विल दे कैरेक्टर जस्टिफाई विद द स्क्रीन टाइम दे गेट, या फिर कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा, आई हैव नो आइडिया, यू नो। बट एनीवेज मूवी जब आएगी तो पता चलेगा ही। दूसरी ओर कहा जा रहा है मैं वापस आऊँगा, ये जो फिल्म है इसके सेकेंड वीक में काफ़ी अच्छा जंप जो है ये देखा गया है। एंड इट हैज़ बेसिकली शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि इतना इंक्रीज इसकी इनकम में कैसे हुआ। इट्स प्रोबेबली बिकॉज द पीपल हैव वॉच्ड द मूवी, वो वर्ड बाय माउथ वाला प्रमोशन जो ये चल रहा है ना सोशल मीडिया पर भी, बहुत से लोग इसे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। द फिल्म इज गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, मस्ट वॉच इसको बताया जा रहा है। सो प्रोबेबली दैट इज द रीजन कि सेकेंड वीक में इसे एक अच्छा जंप जो है ये मिला है। बट द ग्रेट न्यूज फॉर टूडे ऑन आवर सेगमेंट जहां पर बॉलीवुड की खबरें हम लेकर आते हैं इज एक्चुअली अबाउट नन अदर देन एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु। सामंथा जो है इनके बारे में कुछ र्यूमर्स जो है ये सामने आ रहे थे दैट शी इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड विद अपने हस्बैंड राज निदमुरु के साथ, लेकिन कोई कंफर्मेशन जो इनकी ओर से नहीं आया था।
0: ओके
1: वीडियोस कुछ ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं ऑफ हर अटेंडिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन जहां पर पीपल आर एक्चुअली मेकिंग आउट कि शायद ये प्रेग्नेंट है, या फिर कुछ फोटोज सामने आए हैं, यू नो पीपल आर जस्ट हवा में ही ऐसे तीर उछाल रहे हैं। पर फाइनली वी कैन से अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन बॉलीवुड हंगामा कि न्यूज कैन बी कन्फर्म्ड, उनकी जो फिल्म है माँ उसके डायरेक्टर इंती बागरम्मा जो है इन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, या सॉरी माफ कीजिएगा, माँ इंती बागरम्मा के जो डायरेक्टर है बीवी नंदिनी रेड्डी, इन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि सामंथा इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल टाइम क्योंकि वो उनकी फिल्म की सक्सेस जो है ये भी सेलिब्रेट कर रही है। सो जो प्रेगनेंसी र्यूमर्स जो है ये सर्कुलेट हो रहे थे आफ्टर द मूवी सक्सेस सेलिब्रेशन जो है इसके बाद, तो वहीं पर कहा गया है कि द डायरेक्टर हैज कंफर्म्ड कि शी इज एक्सपेक्टिंग। हाउएवर सामंथा ने अभी तक एज आई हैड सेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।
0: लेट्स सी कब ये अनाउंसमेंट आता है, अगर आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। थोड़ी देर बाद आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी हम देखेंगे इस प्रोग्राम में।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: Checked your KiwiSaver fees lately?
6: A high of 18. Find at times mainly cloudy today. Southwestern motorway, a crash northbound is blocking the right lane between Puanui and Massey Road. It's quite heavy in that area already this morning. Southern 27 minutes in from Monaco, slow Papakura on and off to Papatoetoe. Northwestern 25 in from Massey, slow there to Te Aratu and close to the CBD. Northern 18 from Constellation, getting slow from Greville.
5: See what you could save with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
7: Mom,
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: Otara, oh yeah.
9: South Auckland's buses just became a lot better.
8: Grey South Road, now even greater.
9: With better bus routes, more frequent buses, and more.
8: Weymouth Road, way better buses.
9: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
10: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
2: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
11: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है।
12: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है। और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
2: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
13: Okay, everyone, I'm calling an important meeting for next Tuesday afternoon.
14: Sounds important.
13: It's bloody important. It's a bloody important meeting.
14: A bloody important meeting?
13: Bloody important. We're giving blood and plasma as a blood group.
14: Oh, I've always wanted to be in a group.
15: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 18 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और आज तो बस एक दो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस ही आए हैं हमारे पास. सबसे पहले मिस्टर माटा माटा, राम राम, जय माता दी, हैप्पी ट्यूसडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे. आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
3: और इसके अलावा बॉबी मान जी, हर सुबह की तरह इनका मैसेज भी हमें मिल चुका है, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. इन्होंने कहा है जय सिया राम, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, और साथ में इन्होंने कहा है हैव अ मंगलमय डे, हनुमान जी की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे, जय जय जय हनुमान गोसाई. थैंक यू सो मच बॉबी मान जी, आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
2: Good morning, Vijay and Pooja. Love hearing you for my whole drive from Manukau to Tuakau every morning, Jaya. Thank you so much, Jaya. आपके मैसेज के लिए, I think first time इनका मैसेज जो है ये पढ़ रहा हूँ मैं.
3: हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार इनकी इनके इनके मैसेज के बारे में हम कुछ you know पढ़ रहे हैं, because this destination that she is mentioning काफी नया है हमारे लिए.
2: Manukau to Tuakau.
3: हाँ, मेरे लिए भी यार. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ वंडरफुल डे. सोनिया ने अपना मैसेज जो है ये भेजा है.
2: अरे, बड़े दिनों बाद सोनिया ने हमको याद किया.
3: बिजी रही होंगी ना. तो आज है ट्यूसडे द 23rd ऑफ जून, और आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो जहाँ कहीं भी है साथ आप हमारा दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे इधर आपको ये भी याद दिला दें कि आज के सफर में हमारे साथ ब्रेकफास्ट कैचअप में आपके लिए हम काफी कुछ जो ये लेकर आते हैं, और अभी तो बारी है कि आज का हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये आपके लिए लेकर आए. पर ये भी याद रखिएगा कि बहुत ही जल्द आपके लिए कुछ बहुत ही धमाकेदार हम लेकर आने वाले हैं. अगर ईस्टर 2027 के लिए आपके प्लान्स नहीं है और ईस्टर के लॉन्ग वीकेंड के लिए आप भी सोच रहे हैं यार कि कुछ करना है इस साल, इतने साल ईस्टर ऐसे ही यू नो आराम आराम से निकल गए, इस साल तो मस्ती चाहिए, मज़ा चाहिए, बहुत सारा फन चाहिए, तो आप तैयार रहिएगा क्योंकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं कुछ बहुत स्पेशल, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. टू फाइंड आउट व्हाट,

0: भीड़भाड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: Mostly cloudy today, a high of 18 degrees. Southwestern motorway, a crash northbound between Puanui and Massey Road has been blocking the right lane. It's been sorted, but still quite heavy moving through that area. Southern 35 minutes in from Manukau. Slow patches Papakura on and off to Mount Wellington, but heavy at Manukau. Northwestern 27 in from Massey, slow on and off from there to the city. Northern not too bad, slow patches from Greville.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Fuel ke dam roz badh rahe हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
8: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fox.

0: अभी समय की ओर देखें तो 8 ही मिनट रह गए हैं अब 7 बजने में। थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे।
1: और चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल ये भी आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं, जिसका जवाब आप हमारे पास भेज सकते हैं 55599। अपने नाम के साथ अपना जवाब जरूर भेजिएगा, BF लिखिएगा सबसे पहले। तो क्वेश्चन आज का हमारा बड़ा सिंपल सा है, आपको बताना है ऐसी किसी एक बॉलीवुड फिल्म के टाइटल के बारे में, किसी भी बॉलीवुड फिल्म का नाम जिसके नाम में आपको मिलता है किसी एक खाने वाली चीज का नाम, कोई भी ऐसी चीज जो हम खा सकते हैं इसका नाम जो ये आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, BF लिखना है, अपना जवाब लिखना है और भेज देना है 55599 पर। ऐसी कोई भी एक बॉलीवुड फिल्म जिसके टाइटल में, जिसके नाम में आपको कोई एक खाने वाली चीज का नाम जो है ये मिले। ठीक 7 बजे न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद आपके लिए, जबकि हम इस सवाल का जवाब जो है ये भी देखेंगे कि आपने क्या भेजा है और कितने लोगों ने सही तो कितने लोगों ने गलत आंसर्स भेजे हैं। तो वही अगले घंटे मॉर्निंग मैडनेस में आपके लिए राशि वाइब्स भी हम लेकर आने वाले हैं, लेटिंग यू नो आज का दिन कैसा बीतेगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: ऑलमोस्ट 11 डिग्रीज टेम्परेचर आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 13 डिग्रीज. बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ बारिश होगी आज सुबह से ही. और सनराइज 7:33 AM पर, सनसेट शाम 5:13 पर होगा.
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून.

0: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा। और इस घंटे जहां पर आपके लिए लेकर आने वाले हैं हम, सबसे पहले तो जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज का आपका दिन कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स, राशि वाइब्स, ये आपको हम बताने वाले हैं। बाय द वे हमने पिछले घंटे सवाल भी पूछा जिसके गिने चुने आंसर्स आए हैं, पर थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जिन्होंने अपने मैसेजेस कम से कम हमारे पास भेजे। परवेज का मैसेज आया, इन्होंने जवाब दिया है बर्फी, चीनी कम, गर्म मसाला। निलेशनी ने कहा है जलेबी, और नितिका का आंसर आया है, इन्होंने बर्फी कहा है, बरेली की बर्फी, जलेबी, चीनी कम, गरम मसाला, अंगूर, आलू चाट। क्या बात है, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट इन्होंने पकड़ा दी है। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। एंड यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आर सम ऑफ द मूवीज जिनका नाम जो है, जिनका टाइटल बेसिकली खाने वाली चीज जो है इस पे बेस्ड है, या इस पर कहीं ना कहीं इनकी टाइटल में कोई ना कोई खाने वाली चीज जो ये मेंशन है।
1: और इस घंटे और भी कई चीज़ें होंगी, अगर आपने अपने बर्थडे और एनिवर्सरी मैसेजेस अभी तक हमारे पास नहीं भेजे हैं, वक्त है आपके पास 5599 5599 ये नंबर है सॉरी जिस पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं। और इस घंटे की शुरुआत एक ऐसी खबर से हम करने जा रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया। जापान में एक क्या बोलते हैं अवार्ड विनिंग फ्राइड चिकन कंपनी है, और ऑडिटी सेंट्रल पर इनकी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, इनका नाम है वाकाटोरी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस कंपनी का दावा है कि द सीक्रेट टू इट्स सक्सेस इज फ्राइंग ऑयल, जिसे पिछले 66 years में चेंज नहीं किया गया है।
0: वाओ,
1: व्हाट वाओ,
0: वेरी नाइस, लाइक वाओ,
1: वेरी नाइस, व्हाट इज नाइस,
0: ये सार्केस्टिक वाला यार।
1: ओह अच्छा,
0: आई एम नॉट अग्रीइंग टू इट, आई एम लाइक सेइंग इट इन अ सार्केस्टिक वे, यू नो 66 years से वही तेल में ये फ्राई कर रहे हैं, और दे कॉलिंग इट एज देयर सीक्रेट रेसिपी।
1: या आई डोंट नो हाउ, लेकिन उनका यही कहना है। अपेरेंटली जो दुकान है ये 1960 में खुली थी, और उसके बाद जो फ्राइंग ऑयल है हैज़ नेवर बीन कम्प्लीटली डिस्कार्टेड। यशिरो जो थर्ड जनरेशन ओनर है वाकाटोरी के, उन्होंने ओपनली एडमिट किया है दैट द ऑयल रीयूज्ड फॉर डिकेड्स इज द की टू हिज फैमिलीज डिलीशियस फ्राइड चिकन। ये एज्ड ऑयल वाकाटोरी फ्राइड चिकन को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरोमा देता है और यूनिक फ्लेवर देता है, जिसको रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता नए तेल के साथ, गिविंग द ईटरी अ लेग ओवर द अदर जो कॉम्पीटिंग रेस्टोरेंट्स हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं, और कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि रेस्टोरेंट वॉज पुटिंग पीपल्स लाइव्स एट रिस्क बाय फ्राइंग चिकन इन 66 ईयर ओल्ड ऑयल, लेकिन जैपनीज अवार्ड विनिंग ईटरी ने क्लेरिफाई किया है कि ऑयल के क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है थ्रू डेली क्लीनिंग, फिल्टरिंग, और उसमें नया तेल जो है ये डाला जाता है, लेकिन पुराना जो तेल है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया गया है।
0: तो उसमें नया तेल इंक्लूड किया जाता है, बट पुराने को पूरा का पूरा फेंका नहीं गया, प्रोबेबली अ क्वार्टर ऑफ इट हैज बीन केप्ट, तो थ्री क्वार्टर नया तेल डाला जाता है।
1: हाँ, उनका कहना है हर रात रेस्टोरेंट के स्टाफ बहुत ही केयरफुली फिल्टर आउट करते हैं मीट स्क्रैप्स और इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ऑयल, रिटेनिंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल जिसको एक फ्लेवर बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें नया फ्राइंग ऑयल जो है ये डाल दिया जाता है। सो दे आर नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट सेम ऑयल फ्रॉम 66 इयर्स अगो,
0: लेकिन bit and pieces of it basically.
1: हाँ, just imagine.
0: But isn't it something जो नहीं करना चाहिए? Like if I'm not mistaken.
1: लोग बोल तो वही रहे हैं, I don't know वो कैसे oil को सही रखते हैं।
0: कितना भी वो claim कर रहे हैं कि वो filter कर रहे हैं या पूरा नहीं डाल रहे, हम देख थोड़े ना रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं, वो कर भी रहे होंगे शायद, ज्यादा ही कर रहे होंगे, but regardless of it, isn't it like they shouldn't be doing that? Because whatever amount of old oil जो आप उसमें डाल रहे हो, डाल तो रहे हो ना, that's the thing. You're not completely using new oil, जैसा होना चाहिए basically.
1: Yeah,
0: anyways, I don't.
1: क्या हाँ
0: फूड क्या बोल रहे थे
1: फूड एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है दैट ऑयल इज नॉट द सेम एज ब्रॉथ क्योंकि रिपीटेडली फ्राई करने की वजह से हार्मफुल और कोई एक इंग्लिश वर्ड है जो बहुत हार्ड है मेरे लिए ऐसे सब्सटेंस जो है ये रिलीज होते हैं जैसे ट्रांस फैटी एसिड और कई अन्य चीज इवन बाय डाइल्यूटिंग इट डेली विथ फ्रेश ऑयल द लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेशन होता जो है इस हार्मफुल सब्सटेंस का इसको कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता ये एक्सपर्ट्स का मानना है
0: So they are saying that नया तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए Anyways,
1: मानते तो हम सभी है इस बात को
0: Yeah. Anyways, so, you know, these are some of the perks of eating outside. You don't really know कि किसी रेस्टोरेंट में किस तरह से किस चीज़ का इस्तेमाल होता है आपका खाना तैयार करने के लिए So it's not like it's something new, but I think ये पहला रेस्टोरेंट होगा जिन्होंने ओपनली से एक्सेप्ट किया है
1: Yeah, I don't know. लेकिन यहाँ पर तो आपको पता ही है कि जो फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं बहुत यू नो रेगुलरली इनको मेंटेन किया जाता है इंस्पेक्शंस वगैरह जो है ये भी रेगुलरली किए जाते हैं क्या ऐसे
0: मैं बाद में बोलूंगी अभी टाइम नहीं है

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: कैसा रहेगा आज का आपका दिन 23 जून का. सबसे पहले मेष यानी एरीज, अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है. बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा. कोई रिस्क भरा काम आज ना करें और झगड़ा झंझट से दूर ही रहें.
3: वृषिनी टोरस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि ये दिन जो है आपका फालतू खर्च होगा इस दिन में, तो कोशिश यही करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे ही बेवजह पैसे जो है आप इस्तेमाल करेंगे, पैसे की बर्बादी आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है. कीमती चीजों को संभाल कर रखें. गुम हो गए या चोरी हो गए तो भैया आपकी परेशानी जो है डबल द लेवल हो जाएगी. और एक बहुत ज़रूरी सलाह आज के दिन आपको दी जा रही है, अपनी बातों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
2: मिथुन यानी जेमिनी, झगड़ा झंझट से प्रॉब्लम होगा. शरीर में कुछ पेन आप फील करेंगे. ट्रेवल वैसे अच्छा जाएगा. आज किसी से मदद की कोई उम्मीद ना रखें. फाइनेंशियली भी दिन आज थोड़ा टाइट रहेगा आपके लिए.
3: और कर्क ने कैंस आपके लिए कहा जा रहा है, घर बाहर थोड़ा थोड़ा तनाव जो है ये आज आप महसूस करेंगे. आज यू नो किसी के भी साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट अगर जो होने के चांसेस है, इग्नोर करने की कोशिश करें या फिर उन्हें आप ज़्यादा तूल ना दें, क्योंकि यही छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़े होकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, ये सलाह आपको दी जा रही है. टेक योर टाइम, अच्छे से सोच समझ कर ही कोई भी काम आप करें, अदरवाइज आप अच्छा करने जाएंगे और बदले में आपका नुकसान हो जाएगा.
2: सिंह यानी लियो, ट्रेवल बढ़िया रहेगा और धर्म कर्म में आपका काफ़ी मन लगेगा. पैसे मिलेंगे. कोई लीगल प्रॉब्लम थी तो ये भी खत्म होगी. और पहले आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका रिजल्ट उस टाइम पर आपको नहीं मिला था, लेकिन आज उसका कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप हासिल करेंगे.
3: और साथ ही साथ आज वैसे बताया जा रहा है कन्या यानी वर्गों के लिए चोट या चोरी, विवाद आदि से आपको हानि पहुंच सकती है. कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ जो आपके लिए फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होगी, फिजिकली भी चोट वगैरह लग सकती है. पुराना रोग भी उभर कर वापस परेशान करेगा. बेसिकली आज का दिन रिस्क से भरा होगा. एंड कोशिश करें आप जितने भी रिस्क आपके आसपास आ रहे हैं आपको थोड़ा परेशान करने के लिए, स्टे अवे फ्रॉम दैट बिकॉज दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू.
2: तुला यानी लिब्रा, दौड़ धूप कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी. फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा. आज काम बहुत अच्छी तरह से अपना आप पूरा करेंगे और परिवार वालों के साथ अपनी सीमा जो है, अपनी हद जो है ये बनाए रखें.
3: और साथ ही साथ आज वृश्चिक की स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है, बेचैनी रहेगी. आज आप थोड़ा रेस्टलेस फील करेंगे बेसिकली. और बच्चे के हेल्थ को लेकर आप जो वरिड थे इतने दिनों से, इसमें सुधार देखेंगे तो चैन की सांस लेंगे. सोचे काम जो है, मनचाहे काम आपके जो है ये सफलतापूर्वक आज खत्म होंगे, पूरे होंगे. एंड यू'ड बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स यू'ल गेट.
2: धन यानी सेजिटेरियस, पार्टी पिकनिक आप एंजॉय कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा. बिजनेस भी बढ़िया चलेगा. कुछ नए काम की प्लानिंग आज आप कर

0: के साथ, यू नो, सम ब्यूटीफुल मेमोरीज जो है ये आज आप बनाएंगे. अच्छी खबर मिल सकती है, बिजनेस अच्छा चलेगा, फायदे के बहुत से मौके आपके हाथ लगेंगे. सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और बढ़िया कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ आज एक बार फिर आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी ट्यूजडे हम विश कर रहे हैं.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: हम
1: कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन.
3: ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: दिया।
1: Streaming on Rover.
2: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आम छे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
3: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
4: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
6: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
7: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune.

0: यह मॉर्निंग मैडनेस में और आज सुबह सुबह हमारे साथ है जो सेलिब्रिटी जिनकी आवाज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले कल जो सेलिब्रिटी थे उसके बारे में आई डोंट रिमेम्बर हमने क्या कुछ बातें की थी या नहीं की थी,
1: क्या बातें करनी थी उनके बारे में कुछ बात
0: वो थे कौन?
1: मुझे तो ये भी नहीं याद है कि आवाज किसकी सुनाई थी।
0: वही तो पूछ रही हूँ मैं खुद भूल गई कि कल के सेलिब्रिटी थे कौन।
1: वाज इट लकी अली?
0: आई डोंट रिमेम्बर। लकी अली किया तो था हमने पर कब वो नहीं याद है। खैर एनीवेज अभी जो है हो गया। आई थिंक हमने सही जवाब बता ही दिया था, इसीलिए आज एक नई आवाज़ जो है आपके लिए मैं लेकर आनी है सेलिब्रिटी अलार्म में। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज के जो सेलिब्रिटी अलार्म है या सेलिब्रिटी अलार्म में जो सेलिब्रिटी है आप क्या उनकी आवाज़ पहचान पाते हैं या नहीं।
1: तो पहले आवाज़ जो है ये आप सुन लें।
2: I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer and I will find the answer.
1: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी।
0: क्या बात है भाई, मतलब हर दिन और डिफिकल्ट करने का आपका मूड है ना, ऐसा लग रहा है।
1: मुझे लगा बहुत इजी होगा।
0: अच्छा ओके।
1: क्योंकि
0: मुझे तो समझ में नहीं आएगी।
1: ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि मैं क्लू नहीं दे सकता।

0: लगता है।
1: सेलिब्रिटी बड़े होंगे नो डाउट, लेकिन आवाज नहीं समझ में आई ना। अच्छा ऐसा करो एक बार फिर से सुना दो आप।
0: अच्छा लिसन वेरी वेरी केयरफुल।
2: I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer and I will find the answer.
1: तो नो आइडिया कौन है।
0: तो कोशिश आप करें बी एफ अपना आंसर और अपना नाम आज के सेलिब्रिटी, इनको अगर नहीं पता है तो मजा आएगा आज खेल में।
1: इनको मुझे नहीं पता है।
0: हाँ, जब आपको नहीं पता था तो मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि यू जनरली अच्छा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं।
1: अच्छा।
0: आप बहुत आसानी से पहचान लेती है ना।
1: मैं सबको थोड़े ना जानती हूँ ना। But anyways, I think I have a name in my head. I think it's Chris Evans. आवाज से मुझे Chris Evans जैसे ही लग रहे हैं। But I'm not sure कि वो है कि नहीं है। वो पता चलेगा जब once कोई सही जवाब देगा तो। अगर किसी ने सही जवाब दिया तो आंसर रिवील हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं दिया, we'll continue with this same voice for tomorrow. But
0: पहले ये बताओ Chris Evans कौन है?
1: Chris Evans नहीं पता आपको?
0: I know Chris Hemsworth.
1: Chris Evans is like क्या नाम है वो कैप्टन अमेरिका।
0: अच्छा ओके ओके ओके ओके वो जो मैंने नहीं देखी ना।
1: अच्छा आपने नहीं देखी।
0: हाँ तो अभी आप क्या करें, कोशिश करें बी एफ अपना आंसर और अपना नाम, इस सेलिब्रिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। देखिए अटेम्प्ट कितने लोग करते हैं, सही या गलत तो छोड़ देते हैं, कोशिश कितने लोग करते हैं।
1: मैंने तो अटेम्प्ट किया, अभी मेरा जवाब सही है गलत अभी मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर एटलीस्ट आई हैव गिवन एन आंसर।
0: तो बी एफ अपना आंसर और नाम ये 5599 पर जल्दी जल्दी आप हमारे पास भेजें।
3: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams.
5: ये शायद गंदे सॉन्ग है।
6: गानसरी पागल है क्या?
5: क्यों?
6: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
5: But why it's iconic?
6: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई।
5: But imagine how the song would look if Ali, Kunal and Diya did it. Our version. That's what I'm saying, now you're getting me.
6: You guys want to audition? Yeah? Troll ho jayenge. Mat karo.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, नेशनल पार्टी के कीवी सेवा बदलाव और रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बातों के बीच लेबर पार्टी ने सुपर एनुएशन सेटिंग्स में किसी भी तरह के बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। नेशनल ने वीकेंड पर एक नए पॉलिसी का ऐलान किया, जहां बेबीज को 1500 बेबी बूस्ट के साथ कीवी सेवा में एनरोल किया जाएगा और 65 प्लस साल के लोगों के लिए भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कंपलसरी होगा, जिसका खर्च एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्कर्स पर आएगा। लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने नेशनल पर निशाना साधते हुए कहा कि निकोला विलिस पहले कहती थी कि खजाना खाली है और अब इस पॉलिसी के लिए फ्यूचर बजट से अरबों डॉलर खर्च करने का वादा कर रही हैं। मोटरसाइकिल एडवोकेसी ग्रुप न्यूजीलैंड ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नए ICC लेवी के खिलाफ हाईकोर्ट में जुडिशियल रिव्यू मांगी है, जिसमें बाइक के साइज के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। नए रूल्स के मुताबिक 750 cc से बड़ी पेट्रोल बाइक्स पर सालाना $624.93 का लेवी लगेगा, जबकि एडवोकेसी ग्रुप के प्रवक्ता मार्क चैपल ने इंजन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाने को गलत बताते हुए इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहा है। मोटरसाइकिलिस्ट का कहना है कि 90% हादसे कार ड्राइवर्स की गलती से होते हैं, इसलिए विक्टिम से ज्यादा पैसे लेना ना इंसाफी है और उन्होंने डर जताया कि भविष्य में अन्य लोगों पर भी इस तरह के टैक्सेस लागू हो सकते हैं। ऑलब्लैक्स टीम की घोषणा जो है ये कल कर दी गई, जो आने वाले टेस्ट सीजन की तैयारियां शुरू करेगी। टीम को आदिसा वेया कैप्टन करेंगे और टीम की भिड़ंत 4 जुलाई को फ्रांस के खिलाफ क्राइस्टचर्च में, 11 जुलाई को इटली के खिलाफ वेलिंगटन में और 18 जुलाई को आयरलैंड के खिलाफ ईडन पार्क पर होने जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में आज सुबह अर्जेंटीना की जीत ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-0 से हुई। 9 बजे फ्रांस इराक से खेलेगा, 12 बजे नॉर्वे की भिड़ंत सेनेगल से होगी और 3 बजे जॉर्डन और अल्जीरिया का मैच खेला जाएगा। उधर ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज रात 9:30 बजे न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: Fine at times today, got a high of 18 degrees. A crash earlier on the southwestern has really stuffed the southwestern and southern motorways. Heavy both ways on the southwestern either side of Whitty and southern. Our Manukau town, hour 40 from Drury, where heavy on and off Drury most of the way in. Northwestern 40 in from Massey, heavy on and off from there. Northern 34 from Constellation, heavy from Greville.
3: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
6: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
8: Kogan Mobile. True Aussie value.
7: Terms and conditions apply.
9: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods.
2: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
10: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
11: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
2: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Birthday greetings.
12: Iska birthday bhai?
13: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
12: Happy birthday to you.
1: Many, many happy returns of the day. आज 23rd of June, सबसे पहले रानी वजीरानी माउंट रस्किल में, विश्वास तेंदुलकर जी हैं ग्लेन ईडन में, और शारदा शर्मा रोसिल में अपना बर्थडेज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप तीनों को आज का ये खास दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको.
14: Wishing a happy anniversary to Prakshay and Tishna. God bless you both. Lots of love from आपके पापा है दिवेन, मम्मी है प्रवीणा और भैया है राहिल, साथ में रुपिंदर. इनकी ओर से ढेर सारा प्यार. हमारी ओर से भी आपको a very happy happy anniversary और ढेर सारा प्यार. Best wishes आज के इस खास दिन के लिए.
1: तो और भी जितने लोग आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी.
2: मॉर्निंग मैडनेस.
1: अभी 19 मिनट रह गए हैं 8 बजने में आज का सेलिब्रिटी अलार्म.
14: हाँ, क्या हाल हुआ आज के सेलिब्रिटी अलार्म का?
1: सेलिब्रिटी अलार्म का हाल ये हुआ कि बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया, सभी के सभी जवाब बिल्कुल सही.
14: अच्छा, सबने एक ही आंसर दिया, बट आई हैड नो आइडिया कि इनकी आवाज है. सबका एक ही आंसर आया, सिर्फ मैंने ही गलत तो था ही मेरा जवाब, खैर, पर अलग भी था. और सबने जो आंसर दिया, चलो वो तो रिवील करना ही पड़ेगा. अब चाहे कम लोगों ने किया, ज्यादा लोगों ने किया, डजंट रियली मैटर. बट विल स्मिथ की आवाज थी यार, सीरियसली.
1: डेलिबरेटली मैंने उनका कोई डायलॉग नहीं पिक किया था, बल्कि कुछ और जो है ये
14: इंटरव्यू बिट था ना कोई.
1: हाँ, ये हमने आपको सुनाया,
14: पर सच में मुझे उनकी आवाज जैसा नहीं लगा,
1: लेकिन था भाई. अब क्या करूं मैं?
14: Obviously you wouldn't lie, I know that. क्योंकि बाकी सबने तो पहचान लिया, सिर्फ मैंने ही नहीं पहचाना ना. Anyways, अगले घंटे आपके लिए, जबकि आज का जो ट्रेंड पेट्रोल है ये हम लेकर आने वाले हैं, एक बड़े अनोखे किस्म के रेस्टोरेंट के बारे में बातें करेंगे. दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज ट्रेंडिंग ऑल द वे एंड आई डोंट नो इफ इट्स फॉर द राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस, बट व्हाटएवर द रीजंस आर, ट्रेंड तो कर रहा है. तो अगले घंटे ट्रेंड पेट्रोल में इसके बारे में आपके लिए डिटेल्स.
1: राइट नाउ, अभी यू नो, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आप का यू नो यू आप चाहते हैं कि आपके कंपनी की ब्रांडिंग जो है ये हो, या आपके बिजनेस का नाम जो है ये लोगों तक पहुंचे, लेकिन यू कैन नॉट इवन अफोर्ड टू स्पेंड $500 पर मंथ.
14: हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी योर मार्केटिंग बजट इज नॉट एज मच, क्योंकि शायद आपका बिजनेस उतना फ्लोरिश नहीं कर रहा है फिलहाल, पर मार्केटिंग तो करना पड़ेगा ताकि बिजनेस को और भी ज्यादा जो क्लाइंट्स है ये मिले. एंड इफ यू आर इन दैट बोट,
1: तो आपको क्या करना है, अभी आप अपने बिजनेस का नाम और अपना नाम ये लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजें. इतना ख्याल रखें कि आपका एक बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो अभी हमारे साथ एडवर्टाइज नहीं कर रहा हो.
14: हाँ.
1: चाहे स्मॉल बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, लेस देन $500 अ मंथ ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है अगर आप चाहते हैं, तो आपको हम सिर्फ 5-7 मिनट्स का टाइम देंगे. आप अपने बिजनेस
14: 5 या 7 7 7, ओके,
1: आपको अपने बिजनेस का नाम और अपना नाम ये दो चीजें लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजना है.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Accurate traffic.
3: Denza premium plug-in hybrid SUVs.
4: Mostly cloudy today with a high of 18 degrees. Southwestern, we had a crash early. It's been sorted, but it's left the motorway very heavy both ways either side of Wiri. And the southern has been slammed as a result to our Manukau to the city, hour 30 from Drury. We're heavy on and off Drury most of the way in. Northwestern, 45 from Massey, heavy on and off from there. And northern, heavy from Greville, 34 from Constellation.
3: Visit Denza, Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
5: Professional finance. Ninjas है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
7: Buddy, no!
8: Happy is finding the only mud puddle in the park. Animates, we make happy happen.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स
10: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.

0: 8 मिनट रह गए हैं फिलहाल 8 बजने में. अगला थ्रोबैक आप एंजॉय करें, इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट भी हम लेकर आएंगे.
1: So many people have sending the names of their businesses to us. Thank you so much. जैसे कि हमने कहा कि आपका चाहे बिग बिजनेस हो स्मॉल बिजनेस हो, लेकिन मार्केटिंग बजट अराउंड $500 का है आपका, तो आप हमारे पास अपने बिजनेस डिटेल्स जो है ये जरूर भेजिएगा.
0: 5599 हमारा नंबर है, बिजनेस का नाम, उसके साथ आप अपना नाम जो है ये जरूर लिखें.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11 degrees abhi aap feel kar rahe hain central Auckland mein, particularly aaj ka high 17, overnight kam se kam 13 degrees. Badal chhaye rahenge, rahekar barish hogi aur sunset aaj ka sham 5:13 par hoga.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: रशावा आपके लिए हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर आ रहे हैं, और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रशावा में आपके लिए हम लेकर आएंगे जो आज का हमारा ट्रेंड पेट्रोल, एक रेस्टोरेंट के बारे में डिटेल्स, और इस रेस्टोरेंट के बारे में सुनते ही आप हो जाएंगे हैरान। वाशिंगटन डीसी में ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर लोगों को मिलता है एक बड़ा ही अनोखा अलग सा एक्सपीरियंस। गेस्ट्स को एनकरेज किया जाता है बेसिकली टू ईट फ्रेश ग्रीन्स स्ट्रेट फ्रॉम द गार्डन, और उनको दरअसल एक बड़ा अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने कहा, ये मिलता है जिससे काफ़ी लोग काफ़ी यू नो अम्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है, फैसिनेटेड भी है। और ये एक्सपीरियंस है बेसिकली, उनको जो भी फ्रेश फ्रॉम द गार्डन ग्रीन्स सर्व किए जाते हैं एक प्लेट में, वो बिना किसी छुरी काटे के अपने मुंह से खाते हैं, हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे जानवर खाते हैं ना घास जब वो ज़मीन से खा रहे होते हैं।
4: ये क्या बकवास है,
3: इसीलिए तो बोला मैंने ये ट्रेंड कर रहा है, ये क्या बकते हो नहीं है, ये ट्रेंड पेट्रोल है, ये रेस्टोरेंट ट्रेंड कर रहा है। सो पीपल आर अपेरेंटली गोइंग फॉर दिस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिकली फाइन डाइनिंग ग्रेजिंग सीजन जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो पीपल जस्ट गो देयर, उनके प्लेट में उनका जो भी फ्रेश ग्रीन्स है ये सर्व किया जाता है, और जैसे गाय होती है, बकरियाँ होती हैं, उनके जैसे ये अपने मुँह से ये सारा अपना प्लेट जो है सफाचट करते हैं। अब आप भी थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ कि मैं बोलूं क्या आप इस पे,
4: वही तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूं।
3: आप ट्राई करना चाहोगे ऐसा एक्सपीरियंस?
4: नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए।
3: अच्छा, ओके, हाँ बस सो गए आप, क्या ही बोले हम
1: थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जितने भी लोगों ने अपने मैसेजेस हमारे पास भेजे थे, थैंक यू सो मच। अल्पेश पटेल हैं, शमील अली हैं, और उसके अलावा शिवी हैं, और कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा, अनिल हैं, अनित चंद, साथ में उसके अलावा आरती हैं, नमीश चंद हैं, मीत, आप सभी के मैसेजेस जो हैं ये हमारे पास आए हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Spotlight, it's the final day to save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale must end tonight. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
4: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: SmartPay is now
8: Shift 4 Dakota NZ Global Commerce Local Service.
7: Waiting weeks for your IFPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
8: Shift 4 Dakota NZ Global Commerce Local Service.
9: For sure.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: What's your take?
2: सवा 8 बज रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है. आज हम कुछ बातें करेंगे एक सर्वे के बारे में जो किया गया है. हालांकि ये सर्वे बेसिकली जेंजीज के पर किया गया था. जेंजीज आमतौर पर आई थिंक अराउंड 1997 टू 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है. तो इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि 70% जो जेंजीज जिनका ये सर्वे किया गया उनका कहना है कि दे वुड टेक रादर 3 शॉर्ट ट्रिप्स देन 1 लॉन्ग हॉलीडे.
3: अच्छा, साल में एक बार जाने से जहाँ पर शायद वो एक महीने के लिए छुट्टी पे जाए उससे ज्यादा बढ़िया चीज उनके लिए होगी कि वो साल में 3 बार जाए, प्रोबेबली 1 वीक के लिए जाए.
2: हाँ, और वो भी है कि रादर देन गोइंग अब्रॉड
3: वो लोकली कहीं
2: लोकली 3 बार घूमने जाना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे. तो जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने सोचा कि यही सवाल आपसे पूछते हैं
3: कि आप क्या प्रेफर करेंगे.
2: हाँ, वुड यू प्रेफर टेकिंग मोर शॉर्ट हॉलीडेज एंड लोकल हॉलीडेज, और एक साल में आप ले अच्छा खासा भारी भरकम एक महीने का अब्रॉड.
3: बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू गिव द आंसर अगर मनी इज नॉट एन इशू. बिकॉज इफ यू सिट डाउन एंड एनालाइज की यार पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, पैसे होने चाहिए, तो उस हिसाब से ऑफकोर्स वही ज्यादातर लोग या सभी शायद यही बोलेंगे कि साल में एक बार अब्रॉड जाकर घूम लो. बट थिंक कि आपको मनी का कोई इशू नहीं है एंड यू कैन चूज कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एंड उस हिसाब से आप हमें बताइए.
2: ओके, सो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यही है. व्हाट्स योर टेक, शॉर्ट हॉलीडेज ओवर द ईयर या 1 लॉन्ग हॉलीडे साल में एक बार अब्रॉड. गुड मॉर्निंग. हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग.
4: हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
3: एकदम बढ़िया मैम. एक रिक्वेस्ट है आपसे बिफोर यू मूव अहेड, क्या आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लेंगे प्लीज?
4: जी जी, अभी कर देती हूँ. हो गया?
3: थैंक यू.
4: आर यू ऑलराइट नाउ?
3: ऑल गुड. अब फीडबैक जरा भी नहीं आ रहा.
4: हाँ, आई एम परविंदर एंड आई हैव कॉल्ड टू आंसर योर क्वेश्चन. Yes, I think this is again not only subject to finance, it's also subject to, like, you know, people like us, we have relatives overseas, and which includes parents and close relatives. So, like, ये हो जाता है कि at least एक साल, अभी तक तो ये होता था कि एक साल में एक बार मिलाओ. अब कभी कभी लगता है एक साल मिलाओ और फिर उसके बाद एक साल कुछ शॉर्ट हॉलीडेज यहाँ पे कर लो, क्योंकि आप फिर और कुछ नहीं तो देख ही नहीं पाते. हाँ. ना घूम पाते हो ना अपना, और फिर आप जाते भी दिसंबर हॉलीडेज में हो जब वहाँ पे विंटर होती है, यहाँ समर, सो यू बेसिकली मिस द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. सो देयर सो मेनी अदर रीजंस दैट कम इनटू द पिक्चर. बट यस, ऑल द टाइम जस्ट गोइंग फॉर लॉन्ग हॉलीडेज, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया एट ऑल.
2: ओके,
4: 3 शॉर्ट हॉलीडेज would definitely be better than one long. Yes.
3: Amazing.
2: Okay.
3: Thank you, ma'am. Thank you. आपके आंसर के लिए.
2: और 800-004-866 नंबर तो आपको पता ही है, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया. अगर आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं शेयर करना, एंड जैसे गौरव ने टेक्स्ट किया ना, शॉर्ट ट्रिप्स एवरी सेकंड वीक
3: रियली गौरव,
2: ये इनको जाना है. गुड मॉर्निंग. हेलो,
5: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू बोथ ऑन द टॉपिक ऑफ द डे. नहीं तो आजकल तो विजय जी आ रहे हैं, पूजा जी बिजी हो जाते हैं ज्यादा.
2: बहुत बिजी यार होते हैं ये.
3: मैं अगर बोलना शुरू कर दूं फिर किसी का कॉल का टाइम ही नहीं मिलेगा, इसीलिए आई टेक ब्रेक फ्रॉम दैट सेगमेंट.
5: गुड, अगर कोई जो आपके क्वेश्चन है उसका जवाब देना हो तो अगर उसमें जैसे ना कोई प्रोविजो ना हो कि मनी इज नॉट एन इशू और आप अकेले जिंदगी जी रहे हो, तो मेरी प्रेफरेंस होगी 3 शॉर्ट हॉलीडेज एंड 1 लॉन्ग हॉलीडे.
2: सब कुछ
3: चाहिए आपको.
5: क्यों नहीं भाई. अच्छा, अब आप अपना खुद सोचो, अब आपकी बेटी छोटी है, राइट? तो इमेजिन हर ग्रोइंग अप, अब स्कूल हॉलीडेज में ही आप छुट्टी अफोर्ड करोगे. अच्छा, स्कूल हॉलीडेज में छुट्टी जब होगी तब वो सबसे ज्यादा महंगी छुट्टी होती है वो.
3: एब्सोल्युटली,
5: एवरीथिंग इज लाइक 2 or 3 टाइम्स, फ्लाइट से लेके अकोमोडेशन, एवरीथिंग इज सुपर नॉमिकली एक्सपेंसिव. तो वो तो फिर अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में आ ही जाते हो. तो अगर ये सारी कंडीशंस नहीं है जिंदगी बड़ी मजेदार है, फिर तो छुट्टियां छुट्टियां जो मर्जी लो।
2: और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अपने बारे में सोचें कि मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, देन व्हाट वुड इट बी, साल में एक बड़ी छुट्टी अब्रॉड या छोटी मोटी ब्रेक्स, छोटे मोटे ब्रेक्स विद इन द कंट्री?
5: सर देखो, छुट्टी से छुट्टी, वी वर्क सो ओनिंग योर ओन बिजनेस, वी आर लिटरली वर्किंग 7 डेज अ वीक, सो एनी छुट्टी इज अ ब्लेसिंग। उसमें टू बी ऑनेस्ट, इन द लास्ट 5 years द ओनली छुट्टी वी हैड इज जो हमें कॉन्फिडेंस मिलती है कंपनी की, एक बहाना होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के एक हफ्ते के लिए जाने के लिए, तो वी जंप ऑन इट। उसके अलावा आई डोंट बिलीव कि हमें मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि विद किड्स डिमांड, क्योंकि आफ्टर स्कूल में आपका कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता है, ड्यूरिंग द वीकेंड देयर इज समथिंग और द अदर हैपनिंग, सो यू कांट टेक आज हम निकल रहे हैं वीकेंड के लिए एंड दो दिन बाहर निकाल के आएंगे। सो व्हेन द स्कूल हॉलीडेज कम अगेन देयर इज डिफरेंट चैलेंजेस, सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, एक्सपेंस को मैनेज करना, एंड गिवन द इकोनॉमी इट हैज बीन टफ फ्रॉम द लास्ट 3-4 years।
2: बट
5: अगर सब कुछ ठीक हो

0: Like,
1: just chill.
2: Too long on holiday, you get homesick, tired.
0: My daughter's thinking if you're too long on holiday, you get homesick.
1: Yeah, we do.
3: Valid point.
1: Very valid point. Thank you. Thank you so much, sir. Aapke call ke liye and sharing your views with us. 0800-00-HUM or 0800-00-4866. That's the number you've got to call. Aur aapka swagat hai. Good morning. Hello.
4: Namaste, sir. Namaste, madam. Kaise hai aap log?
3: Badhiya ji. Aap sunaiye. Aap kaise ho, sir?
4: Ji, bilkul theek hai. अब देखिए दो बातें हैं. एक बात तो ये है कि हमारे जैसे निठल्ले लोग जो है, जो मतलब अपनी उम्र के 7 दशक बिता चुके हैं,
1: हाँ.
4: तो उनके लिए तो एक एक हॉलीडे ओवरसीज तो बनता ही है.
1: सही है.
4: लेकिन उसके अलावा फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो या ना हो, कम से कम एक हॉलीडे डोमेस्टिक बनता है.
1: अच्छा.
4: क्योंकि आपके पास एक तो डोमेस्टिक में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा.
1: अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया को डोमेस्टिक देखेंगे.
4: ऑस्ट्रेलिया तो डोमेस्टिक है. ऑस्ट्रेलिया हो, फिजी हो,
3: ये डोमेस्टिक कैसे हुआ? लेकिन
1: बहुत करीब है ना, इसीलिए
4: बहुत करीब है. मतलब अगर 2.5 घंटे की फ्लाइट में आप कहीं पहुंच जाते हैं तो ओवरसीज भी नहीं होगा ना.
3: नहीं, बट फिर भी वहाँ करेंसी डिफरेंट होता है, टाइम अलग हो जाता है. फिजी का नहीं होता भले ही, पर टाइम अलग हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कैसे डोमेस्टिक
4: हुआ? मैडम, आपने बोला पैसे, कोई दिक्कत नहीं भाई.
1: वो ट्रीट कर रहे हैं भाई, ये तो पास ही में है, इसको डोमेस्टिक ही ट्रीट कर लूंगा.
3: ज्यादा टाइम नहीं लगता पहुंचने में.
1: हाँ, अब समझ में आया.
4: सबसे बड़ी बात ये है कि क्वींसटाउन तो यही है.
1: हाँ,
4: अब और कहाँ जाएंगे आप घूमने?
1: ओके,
4: तो मेरे ख्याल से साल में एक बार मध्यम मार्ग पे चलिए. एक ओवरसीज और एक डोमेस्टिक ट्रिप शुड बी आइडियल.
1: बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए. कमाल के आइडियाज जो है ये छुट्टियों के लिए, यू नो, हम निकाल लेते हैं. कुछ और मैसेजेस जो है ये भी आए हैं.
3: भव्या ने मैसेज किया है. भव्या ने कहा है शॉर्ट ट्रिप्स, दैट्स व्हाट शी विल प्रेफर. और किसी और का मैसेज आया, इन्होंने कहा राम राम विजय भाई एंड पूजा जी, होप ऑल इज वेल यू एंड आई वुड प्रेफर 3 short trips एंड फर्स्ट लोकल देन अदर कंट्रीज. You guys are doing great. Have a blessed day, उन्होंने कहा है. Thank you आपके मैसेज के लिए.
1: Good morning. Hello.
5: Hello. Good morning, भाई.
1: Good morning,
5: भाई. हाँ जी, इस गौरव डिसाइड.
1: जी गौरव.
5: मैंने ना अभी टेक्स्ट भी कर दिया था कि शॉर्ट ट्रिप्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ट्रिप्स का मेन कंसर्न होता है कि आपको रिलैक्स करना, राइट?
1: हाँ.
5: अब आपको, अब कलयुग में जी रहे हैं, हर एक हफ्ते दो हफ्ते आपके स्ट्रगल ही चलते रहते हैं लाइफ के अंदर. तो मैं तो चाहता हूँ कि हर दूसरे हफ्ते में आपको इतना मौका मिल जाए कि आप ट्रिप पे जाओ और अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करो. सीनरी तो आप जितनी मर्जी देखो वो सारी कम पड़ जाएगी.
1: हाँ.
5: सब कुछ आपको मिलता रहेगा, रिपीट पे मिलता रहेगा. आप जहाँ पे जाओगे आपको सेम पहाड़ मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: तो वो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार तो होना ही चाहिए.
5: 2 हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए था. When I was back in India, मैं हर 2 हफ्ते में मेरी बीवी मेरे को उठा के ले चलती थी, चल घूमने चलते हैं.
1: अच्छा.
5: तो वहाँ पे तो सारा का सारा लोकल ही था. हर दो घंटे 3 घंटे की ड्राइव पे आप ऋषिकेश पहुंच गए, आप हिमाचल पहुंच गए 5 घंटे की ड्राइव पे, आप यहाँ मनाली पहुंच गए. तो ऐसे ऐसे करके. पर उसने कहा कि हर 2 हफ्ते में एक ट्रिप जरूरी है ताकि बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाए.
3: हर 2 हफ्ते में. वेरी नाइस यार.
1: थैंक यू सो मच.
5: बिफोर दैट मैं घूमता नहीं था. हाँ जी. बिफोर दैट एक्चुअली मैं घूमता भी नहीं था, लेकिन उसके चक्कर में मेरे पेट्रोल के बिल इतने ज्यादा आ गए, क्या बताऊं.
1: मजा बहुत आया. चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. व्हाट्स योर टेक? अब तो आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा ना.
3: हाँ जी, 5599 नंबर है हमारा, इस पर अपने मैसेजेस आप सेंड कर दीजिए. आपका व्यू क्या है? क्वेश्चन आज का हमारा ये है, एक आर्टिकल बेसिकली आपने पढ़ी या रिजल्ट आपने पढ़ा, सर्वे रिजल्ट, व्हिच सेड कि जेंजीज जो है ये प्रिफर करते हैं कि वो साल में 3 short trips ले ओवर 1 long international trips. वो 3 short local trips जो ये प्रेफर करते हैं. तो यही चॉइस हमने आपको भी दी कि आप क्या चूज करोगे, एक इंटरनेशनल ट्रिप साल में एक बार या फिर 3 short local trips जो साल में 3 बार आपको छुट्टी जो है लेने का मौका मिले. आपकी चॉइस क्या होगी? इंटरेस्टिंगली मेजोरिटी लोगों ने कहा है कि 3 short trips वो प्रेफर करेंगे ना.
1: गुड मॉर्निंग. हेलो.
6: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
1: गुड गुड गुड. आप कैसी हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ. आंटी कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़.
3: एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. रोशनी और सपना आपका कॉल है ना?
7: हाँ जी हाँ जी.
3: अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग आपका कॉल आया, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो उसके लिए अभी दो अलग अलग व्यूज हमें मिल सकते हैं, एक सपना से एक

0: रोशनी से, तो सबसे पहले रोशनी आप ही बताइए क्या है आपकी राय।
1: मैं प्रेफर करूंगी कि अगर छोटे ट्रिप्स होंगे तो इट्स मच बेटर, क्योंकि अगर इन द मिडिल ऑफ द ईयर यू हैव वन ट्रिप तो बाकी के ईयर यू वोंट हैव एनी ट्रिप्स एंड यू विल बी एग्जॉस्टेड।
0: ओके, दैट मेक्स सेंस। और सपना, आप क्या चूज करोगी?
2: सेम नहीं, क्योंकि वो मुझे, मेरे से इंडिया जाना नहीं होता है बार बार, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत लंबा ट्रिप है, तो वो
0: तो है भाई।
2: इंडिया जाना इज लाइक हॉलीडे ओनली, दुबई और इंडिया जाना इज लाइक हॉलीडे ओनली फॉर अस, मेरे से नहीं होता है इतना दूर दूर जाने को। यही बैठे रहो और यही आस पास घूम लो छोटा मोटा।
3: थैंक यू सपना एंड थैंक यू रोशनी, यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। तो अब 5599 पर आप टेक्स्ट करें, बस इतना ही आप बता सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स और वन हॉलीडे, दो में से दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। देखें अभी तक शॉर्ट ट्रिप भाव्या ने कहा, शॉर्ट ट्रिप गौरव ने कहा, ये जो तीसरे शख्स थे उन्होंने कहा आई प्रीफर थ्री शॉर्ट ट्रिप्स एंड लोकल। हाँ, ये
0: भी एमनीजिया हो गया है क्या?
3: नहीं, मैं कॉन्फर्म कर रहा था कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि लंबा टेक्स्ट था उनका ना।
0: कल भी आपने यही किया, मैंने जो बताया वही घुमा फिरा कर विद इन सेकंड्स आपने बताया,
3: लेकिन मेरा स्टाइल बहुत अलग था ना।
0: एक मिनट,
3: मेरा स्टाइल बहुत अलग था ना।
0: आप दिन ब दिन गजनी बनते जा रहे हो, थोड़े दिनों में आपको अपने माथे पे लिखना पड़ेगा शायद।
3: Just imagine अगर मैं गजनी बन गया और अपनी बीवी को भूल गया।
0: ओह, मजे ही मजे। Very nice.
3: 28 मिनट हो रहे हैं, 8:00 The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है, and short trips or one trip abroad, दो options हैं आपके पास, और 5599 हमारा नंबर है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं।
4: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
6: Now, up na A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Hum. Accurate traffic.
3: New tasty cookie dough bars.
4: 18 now, high, a mostly cloudy one today. It's been very heavy both ways on the southwestern all morning due to a crash before 6 a.m. Still heavy. It's especially slow all the way southbound from Mount Roskill, pretty much to Whitty. Southern, 54 minutes in from Manukau, starting to ease, but still heavy on and off from Papakura. Northwestern, 50 in from Massey, heavy on and off from there. Northern, heavy patches from Greville.
3: Tasty cookie dough bars. A delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
7: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
8: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
9: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
10: And who Tejal Vyas?
9: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
10: exchange offer.
11: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa tayar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
12: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
13: Auckland Airport's international check-in is transforming, so it helps to know your check-in zone. Up to 24 hours before you fly, look up your flight's check-in zone on the Auckland Airport website. Or when you arrive at the airport, just look at the big screens.
14: Bring on the world.
0: The Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: 21 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में. मत भूलें उस्ताद राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट. इसके लिए एक डबल पास जीतने का मौका अभी बाकी है. अपॉर्चुनिटी आपको हम देंगे ड्रो में शामिल होने का.
17: बिल्कुल, लेकिन ये मौका कब मिलेगा उसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको हम देने वाले हैं. बट ऑन दी अदर हैंड, डोंट फॉरगेट कि और भी बहुत सी जरूरी चीजें हैं जिसके बारे में आए दिन हम बातें करते रहते हैं. वैसे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़बे इसका जो रिसेंट एपिसोड है, इसके बारे में आपको याद दिला दे. इन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट जो है ये रिकॉर्ड किया है विद निवेदिता विच, जहां पर इन्होंने थैलेसीमिया और उसके इम्पैक्ट के बारे में काफी बातें की हैं ऑन साउथ एशियन कम्युनिटी के मामले में. तो अगर आप इस पूरे एपिसोड को एक्सपीरियंस करना चाहते, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दी अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, यू नो, चीजें जो आप कर सकते हैं कि क्यों ये जरूरी है और साउथ एशियंस के लिए क्या ये हाई रिस्क है या नहीं, व्हाट डू यू नीड टू नो, और एक सिंपल स्क्रीनिंग कैसे आपके फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है एंड व्हाई यू नीड टू गेट इट डन. सो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में डिस्कस की गई हैं दैट यू कैन डेफिनेटली एक्सेस. और इसके लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं, पूरा का पूरा ऑडियो आपको मिल जाएगा.
16: 4108 का मैसेज है विजय भाई, यू आर ब्रूटल एंड ऑन फायर दिस मॉर्निंग. विजय वन पूजा नील.
17: उनको गजनी वाला जोक बहुत पसंद है ना, इसीलिए.
16: अभी अभी मैंने यू नो लगभग 6 महीने तक रिसर्च किया और एक सवाल तैयार किया.
17: पूछिए.
16: वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको 5599 पर भेजना होगा. जस्ट रिमेम्बर, मैंने बहुत मेहनत की है, 6 महीने तक रिसर्च किया, तब जाकर ये सवाल मिला. सवाल सुनो.
18: एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती है,
19: उसे क्या कहते हैं बताओ?
17: मेरे पास जवाब है इसका.
16: तुमसे नहीं चाहिए जवाब. थोड़ी देर के लिए तुम गजनी हो सकती हो.
17: ठीक. ओके.
16: हाँ, तो अब BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है। मैंने इतनी मेहनत की है, आप भी थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं, और इस सवाल का जवाब जो है ये आप हमें 5599 पर भेजें।
18: लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती,
19: उसे क्या कहते हैं?
16: तो अब शुरू हो जाएं, देखें क्या किसी को सही जवाब पता है या नहीं, थोड़ी देर बाद।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Dry July starts next week.
3: Fine at times, quite cloudy with a high of 18 today. Starting to ease on our motorways, still heavy on the southern, 54 minutes Manukau to town. Heavy patches, Papakura most of the way into the city. Southwestern, very slow both ways either side of Whitty due to a crash we had about 3 hours ago. Northwestern, 40 minutes Massey to town, heavy on and off from there. Northern, heavy patches from Greville, 28 in from Constellation.
2: Go alcohol free this July for cancer support. Search Dry July to register.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
5: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/local board plans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūruki. All together, Auckland.
6: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
7: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: To jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To der mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: 10 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में. 10 मिनटों के बाद फीफा वर्ल्ड कप का अगला मैच जो है ये शुरू होने को है. एंड दिस विल बी बिटवीन फ्रांस एंड इराक. और इस मैच पर भी अपडेट्स हम आपको ज़रूर देंगे. फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था 6 महीने तक रिसर्च करने के बाद,
11: मैंने नहीं आपने पूछा था.
10: हाँ,
11: मेरे को इस सवाल में कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बट जवाब आपने मांगा 5599 पर. आपने कहा कि आप टेक्स्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका जवाब क्या है. एंड सवाल आपने सुनाया था पर मुझे याद भी, आप चाहे तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ या फिर आप सुना भी सकते हैं, टोटली अप टू यू.
10: अच्छा, जो सवाल था जो हमने आपको सुनाया था वॉज दिस वन. अरे कहाँ गया सवाल, ये तो डायरेक्ट
11: जवाब ही बता दो आप.
12: एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती है, उसे क्या कहते हैं बताओ.
10: तो अब इसका जो जवाब है ये आपको देना था. एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती है, इसको क्या कहते हैं.
11: राइट, तो आंसर आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर. और गुंजन ने अपना जवाब जो है ये भेजा है, नितिका ने अपना जवाब भेजा है, किसी ने जवाब टेक्स्ट किया लेकिन नाम नहीं लिखा है 1985. थैंक यू सो मच आपके भी आंसर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल चलिए इस घंटे का थ्रोबैक जो है ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, पर उससे पहले अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच में जो मैच हुआ इसको लेकर काफ़ी बातें हो रही है. एंड ऑफकोर्स लाइनल मेसी द गोट फॉर अ रीज़न. इन्होंने लास्ट 32 मिनट्स में जाकर दो गोल्स जो है ये बनाए जिसकी वजह से अर्जेंटीना की जीत हुई ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-0 से. और वहीं पर ये भी कहा गया है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड जो है ये भी कायम कर लिया है बाय डूइंग सो. सो डिस्पाइट द मिस पेनल्टी, और यू कह सकते हैं कि अर्जेंटीना जो है ये अब नॉकआउट स्टेजेस में जबकि क्वालिफाई हो चुका है. तो ऑफ कोर्स ऑल द थैंक्स, ऑल द क्रेडिट गोज टू द टीम, बट मेनली टू लायनल मेसी.
10: ऑल टाइम लीडिंग स्कोर जो है कि बन चुके हैं विद 17 गोल्स। एक खिलाड़ी हैं जो उनको कैचअप करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट मैच।
11: कौन?
10: अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद ना, सारी चीजें अभी बता देंगे तो हजम नहीं होगा ना। तो अपने आंसर्स आप भेजते रहे, जवाब भी हम आपको देंगे। और आज 9 बजे के बाद एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है, क्या बकते हो मैं।

0: accurate traffic.
1: National Burns Awareness Month.
2: A lot of cloud, a little sun, a high of 18 today. Most motorways easing, but the southern still pretty heavy on and off from Papakura. 45 minutes Manukau to town, an hour from Drury. Southwestern slow both ways either side of Whitty. It's due to a crash we had earlier today. Northwestern 34 minutes in from Massey. Slow from there, heavy patches from Point Chev. Northern 28 from Constellation. Heavy on and off, Revel to the bridge.
1: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
3: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
4: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
8: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
9: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
10: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
11: Good morning, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
12: हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. All major political parties are being implored to commit to a visitor accommodation levy before the election. Regional Tourism NZ's Andrew Wilson says it's about sustaining visitor growth.
14: With the pressures that are on local government with rates capping and local government reform, there is a need to identify another user pays mechanism that actually ensures that we keep our destinations looking great.
13: Auckland police are on the hunt for a man wanted over a sexually motivated burglary. The incident happened in Freemans Bay on Saturday morning, where a person allegedly entered a woman's home and committed indecent assault. 41-year-old Heri Maya Manuel is being sought and is known to frequent parts of Mangere. UK Prime Minister Keir Starmer has bowed to pressure and resigned, the sixth British leader to do so in the past decade. His speech hitting a note of emotion when speaking of what's next.
15: Being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can to my beautiful children.
13: And red heat alerts have been issued across Europe. Highs of more than 40 degrees are forecast for the coming days. More than half of France's regions are under the warning already, with hundreds of schools ordered to close. In sport, Lionel Messi has become the all-time leading goal scorer in FIFA World Cup history. His tally is now 18 after scoring twice in Argentina's 2-0 win over Austria in Dallas. French World Cup winner Thierry Henry.
16: I don't know who's in charge of putting words in the dictionary, but they should put his name as out of the norm. Then you have Messi.
13: Kicking off now is France against Iraq in Philadelphia. Football updates brought to you by Hisense.
12: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: Almost 12 degrees ho chuka hai, temperature aaj ka hai 17 overnight, kam se kam 13 degrees, badal chhaye rahenge, rare kar barish hogi aur sunset sham 5:13 par aaj sham ko hoga.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
18: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: going on. क्या बकते हो?
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: सबसे पहले तो आज क्या बकते हो की कहानी जो है कि आपको सुना दे। एक रिसर्च किया गया था और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक ये रिपोर्ट CNN पर पब्लिश की गई थी वे बैक इन 2003। और बायोलॉजिस्ट ने पाया था, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बायोलॉजिस्ट ने पाया था कि पुरुषों का जो पसीना होता है, इट हैड ए सरप्राइजिंगली बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन वुमेन्स मूड।
20: नो वे।
11: यस वे।
20: एक ऐसा रिपोर्ट है यार, आई डिसएग्री, आई 110% डिसएग्री विद दिस।
11: इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, इंड्यूसेस रिलैक्सेशन। और स्टडी में ये भी सजेस्ट किया गया है that there may be much more going on in social settings, जैसे कि singles bars and ऐसे जगह पर। और study जो publish की गई थी in the Journal Biology of Reproduction, researchers ने collect किया samples from the underarms of men जिन्होंने 4 हफ्तों तक कोई deodorant का इस्तेमाल नहीं किया।
20: मतलब एक तो ये बदबू, ऊपर से 4 हफ्ते तक कोई भी डिओड्रेंट नहीं इस्तेमाल किया वैसा वाला। सीरियसली?
11: मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना जो।
20: नहीं, मैं तो सुन रही हूँ, बट आई एम इन शॉक, आई एम लाइक लिटिल शॉक राइट नाउ।
11: ये जो एक्सट्रैक्ट थे उनको लेटर ब्लेंड किया गया एंड देन अप्लाइड टू द अपर लिप्स ऑफ 18 वुमेन एज्ड 25 to 40।
20: ओह माय गॉड, नो। कुछ चीजें होती है जो आपको नहीं बतानी चाहिए, यू नो, स्पेशली सुबह सुबह। हु नोज,
11: अरे भाई हैविंग
20: ब्रेकफास्ट राइट नाउ।
11: सुबह तो खत्म हो चुकी है अब।
20: सुबह है भैया, जब जागो तभी सवेरा, ये ऐसे नहीं बोला जाता है। अभी भी सुबह है।
11: क्या बकते हो, मैं बता रहा हूँ ना।
20: बहुत बहुत बड़ा वाला क्या बकते हो आज का। आप मेरे ख्याल से यही पर रुक जाइए, मेरा हो गया आज के लिए।
11: नहीं, द वुमेन रेटेड देयर मूड ऑन अ फिक्स्ड स्केल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 आवर्स और फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि समथिंग इन द पर्सपिरेशन ब्राइटन देयर मूड्स एंड हेल्प देम फील लेस टेंस।
20: नो वे, आई डिसएग्री विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। मुझे ये रिपोर्ट जो है चाहिए ही नहीं। मेरे को तो है ही नहीं इससे कोई लेना देना।
11: मजा आया।
20: But yeah, seriously, like why would anyone do this first of all? Did the ladies know कि उनके साथ क्या हुआ? उनको पता था कि ऐसा हुआ उनके साथ?
11: मैं नहीं था वहाँ पे।
20: अगर उनको पता होता तो शायद वो ऐसा होने नहीं देते। And on the other hand, अगर उनके बिना बताए ये study की गई ना, तो ये भी गलत है।
11: कहाँ से कहाँ आप जा रही है? देखो, एक सिंपल,
20: मैं थोड़ा भी आगे, थोड़ा ज्यादा ही आगे चली गई मैं, बट आई हैव अ रीजन।
11: एक सिंपल सा सर्वे किया गया और उसका सिंपल सा रिजल्ट था, वही मैंने सुना दिया आज आपको।
20: इनफैक्ट ये आपने जो पूछा, खैर मेरा तो वोट नाम ही रहेगा, दैट आई टोटली डिसएग्री विद दिस। आई डोंट थिंक सो कि ये जो भी आपने बताया ये सही है, बट लेट्स आस्क ऑल द लेडीज जो फिलहाल हमें सुन रहे हैं। If you're listening to us right now, आप हमें बताइए क्या आप इस survey result से agree करते हैं या नहीं? Why are you laughing?
11: आपको अब बाकी ladies से जानना है कि उन पर क्या असर पड़ा। शायद कोई lady अभी सुनी नहीं रही होगी, क्या करेंगे?
20: ऐसे कैसे?
11: अभी पता चल जाएगा टेक्स्ट मैसेजेस से।
20: हाँ, वो पता चल जाएगा। अगर कोई नहीं तो एक तो वो मस्त सुन रही होगी, कोई ना कोई एक तो डेफिनेटली सुन रही होगी।
11: बट मैसेज करने वालों में कैसे पता चलेगा कि वो लेडी है?
20: वो आप बताइए ना। Okay. Only the ladies will text for this particular like question.
11: Let's see. आपकी बात सुनकर।
20: हाँ, जो भी message हमारे पास आएगा, we will think they are the ladies who are texting because only ladies are invited to text for this particular question. आप पहले ये बता दीजिए क्या था आपका वो survey result का topic क्या था?
11: Survey result का topic क्या? सब कुछ खत्म हो गया, बता दिया।
20: नहीं,
11: अब आपको, आप चाहती हैं वापस repeat करूँ मैं सब कुछ?
20: सिर्फ headline बताओ, that's it, not the whole thing.
11: कि पुरुषों का पसीना कहीं ना कहीं ladies के mood को सुधार सकता है।
20: ठीक है,
11: simple words में।
20: ये है survey जिसके basis पर ये survey जो किया गया। अभी आपको बताना, do you agree or disagree with this? Anyone texting? ये महिलाओं से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टेक्स्ट कीजिए, बताइए हमें डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस। ये पहला मैसेज जो है मुझे नहीं लगता किसी महिला ने किया ये, बट इन्होंने लिखा यस, माइट बी सम एक्यूरेसी इन रिसर्च, हु नोज।
11: सवाल का जवाब भी आपको देना है. लेट्स सी कोई महिला कोई लेडी टेक्स्ट करती है या नहीं. और आज जो पिछले घंटे हम सवाल पूछ रहे थे जो आई थिंक 6 मंथ्स तक मैंने रिसर्च करने के बाद सवाल जो ये तैयार किया
20: था. जवाब दे देते हैं ना अब.
2: एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती
21: है उसे क्या कहते हैं बताओ.
2: पुष्पा. पुष्पा.
20: Very nice.
11: Okay, तो क्या वक्त हो गया क्या वक्त हो गया सवाल का जवाब हो गया. अभी कुछ बाकी है या आगे चलें?
20: नहीं कुछ नहीं भैया मेरा तो हो गया मेरा आज के लिए हो गया. मैं तो अभी घर जा सकती हूँ.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: बहुत सारी चीजें हो रही हैं और इनकी जानकारियां हर दिन ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम आपको देते रहते हैं. और सबसे पहले फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन ये कल से शुरू हो जाएगा सेंटर पार्क मेंगरी में, और हर दिन में 12 बजे से रात 8 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा. तो आप जाकर आगामी आम चुनाव के लिए वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं.
4: और इसके अलावा आपको ये भी याद दिला दें कि ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है ये फ्राइडे को यानी कि 26 जून को होगा 7:15 PM से ARC कम्युनिटी हॉल 53 Skipton Street मैंगरी. इसके लिए आप पहुंच सकते हैं.
3: न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ला रहे हैं श्री राम लीला 8 अगस्त को वैदिक सेंटर पापा टोई टोई में ये होने जा रहा है. अगर आप स्टॉल्स वगैरह चाहते हैं मास्टर अशोक को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0211795459 नंबर है जिस पर उन्हें आप संपर्क कर सकते हैं.
4: और इसके अलावा याद दिला रहे हैं आपको अबाउट गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया. इनका ब्रांड न्यू कॉमेडी शो ये गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर लेकर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड, जहां पर गुज्जू भाई गेट्स कॉट अप इन एन अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर जिसकी वजह से काफी हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही है लेकिन कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. फिल्ड विद सम फनी विटी डायलॉग्स रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स और जो क्लासिक गुजराती ह्यूमर है जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. सो याद रहे सिद्धार्थ रंडेरिया का गुज्जू भाई प्रोडक्शंस ये जब भी कोई शो लेकर आते हैं सोल्ड आउट होता है. यू डोंट वांट टू बी इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप हु सेज ओह नो मिस्ड इट दिस टाइम, अगली बार पक्का समय पर टिकट ले लेंगे. तो अगली बार का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, इसी बार जाइए premiertickets.co.nz पर और टिकट्स ग्रैब कीजिए क्योंकि फ्राइडे 3 जुलाई को 7:30 PM से एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर इज हैपनिंग.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
5: ए देखो आ गए.
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
1: Worry? No worries.
2: South Auckland's buses just became a lot better.
1: Oh my, oh my.
2: With better bus routes, more frequent buses, and more.
1: Grey South Road, now even greater.
2: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
6: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
7: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
8: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है।
9: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है, और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
7: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.

0: Raja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 मिनट होने हैं अभी 9 बजकर और साथ ही में आपको हमने कहा था कि उस्ताद राहत फतेह अली खान और उनको लाइव देखने का मौका जो है ये हम देने वाले हैं क्योंकि अगले महीने ये रहेंगे इन ऑकलैंड और 25th ऑफ जुलाई को द ट्रस्ट अरीना में जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश आप देख सकेंगे मोर देन 50% ऑफ द टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट सो रिमेंबर dryTickets.com dryTickets.com आप विजिट करें जहां से टिकट्स आप ले सकते हैं
3: और टिकट्स लेने के बाद आप भी मजा ले सकते हैं इस अमेजिंग से शो का विच इज हैपनिंग नॉट वेरी लेट इनफैक्ट ऑन द 25th ऑफ जुलाई को ये होने जा रहा है माफ कीजिएगा एंड 25th ऑफ जुलाई को आप भी मजा ले सकते हैं व्हाइल यू सी परफॉर्म नन अदर देन राहत फतेह अली खान अपनी बहुत ही ग्रैंड टीम के साथ ही आ रहे हैं एट द ट्रस्ट अरीना नाउ हमने आपको बता दिया है dryTickets.com से टिकट्स तो आपको लेने ही लेने हैं लेकिन इफ यू वॉन्ट टू ट्राई योर लक इन विनिंग सम पासिस तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है बिकॉज व्हाट वी गोना डू इज आपसे हम पूछेंगे कुछ सवाल टू बी वेरी स्पेसिफिक 5 क्वेश्चंस और ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे इनका जवाब आपको फटाफट हमारे पास देना होगा रैपिड फायर क्वेश्चंस है ये 30 सेकंड्स का टाइम आपको हम देंगे और अगर आपने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर वो जवाब हमारे पास भेज दिया सॉरी कॉल करते हुए बता दिया नॉट टेक्स्ट नहीं करना है आपको कॉल करना है सबसे पहले और पांचों सवालों का जवाब आपने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर दे दिया तो आपका नाम उस ड्रो में जाएगा जहां पर यू कैन विन योरसेल्फ अ डबल पास एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसा नहीं कर पाए जैसे कि कल एल्विना ने कॉल किया इन्होंने कोशिश की शी वाज ऑन द राइट ट्रैक जस्ट लास्ट क्वेश्चन में जाकर नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में शी टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि जवाब सोचने के लिए जिसके चक्कर में उनका 30 मिनट्स अप हो गया था
2: 30 सेकंड्स अप हो गया था
3: Oh yes, 30 seconds. My God, 30 seconds up ho gaye the, right? So today, 0800-00, hum 0800-00-4866 par, the first person to call will get an opportunity to play rapid fire round for Rahat Fateh Ali Khan ka jo show hai, iske liye double pass jeetne ke liye with us. Aur jo bhi pehle call karega, usi ko ye mauka milega. We won't wait for too long. Aur agar aap double pass jeetna chahte hai, humare saath rapid fire khelna chahte hai, 0800-00-hum. 0800-00-4866 पर कॉल करें अभी ताकि आपको ये मौका हम जरूर दें द क्वेश्चंस आर रेडी द टाइमर इज रेडी आर यू रेडी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
2: क्या आप चाहते हैं कि ये डबल पास वाले ड्रो में आपका नाम जाए अगर आप चाहते हैं तो कॉल करना है भाई आपको वैसे तो आपका नाम ड्रो में शामिल होगा नहीं एंड कोशिश जो है ये आप कर सकते हैं और जैसे हमने पहले बताया कॉल करने के लिए नंबर है 0800-004866 और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग हेलो
4: हेलो
2: जी क्या नाम है भाई आपका
4: कमल
2: कैसे हो कमल
4: बढ़िया सर आप बताइए
2: हम भी ठीक हैं अच्छे हैं मजे में हैं एक्साइटेडली लुक फोर्ड कर रहे हैं कि क्या आपका नाम आज ड्रो में शामिल होगा या नहीं तो इंतज़ार है हमें आपको पता है कंपटीशन कैसे खेलेंगे 5 क्वेश्चंस होंगे रैपिड फायर यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि विद इन 30 सेकंड्स पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट हो जाने चाहिए या उनके आंसर्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाने चाहिए ठीक है ना
4: ओके और ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में होंगे
2: अच्छा ये क्वेश्चंस होंगे उस्ताद राहत फतेह अली खान के बारे में
4: ओके ओके
3: अगर आप राहत फतेह अली खान के फैन हैं तो आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे 5 सवाल हैं जिनका जवाब 30 सेकंड्स के अंदर अंदर देना होगा और अगर आपने ऐसा कर लिया तभी आपका नाम ड्रो का हिस्सा बनेगा जहां पर आप जीत सकते हैं डबल पास टू गो एंड वॉच राहत फतेह अली खान लाइव इन ऑकलैंड
2: यू नो एक सिंपल आइडिया मैं बताऊं आपको कमल
4: हाँ जी
2: अगर किसी एक क्वेश्चन का आंसर आप शुआ नहीं हो आप उसे पास करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ एंड देन यू कैन कम बैक विद इन दैट 30 सेकंड टाइम ठीक है
4: आई विल गिव इट माय बेस्ट शॉट
2: ओके सो पूजा आपसे सवाल जो है ये पूछेंगी जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 स्टार्ट शी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और आपको आंसर्स जो है ये देने होंगे और बैकग्राउंड में जो टाइमर है ये भी चल रहा होगा सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ याद रहे अब वक्त जो है ये आपका शुरू हो रहा है और जैसे ही ये टाइमर हम शुरू कर देंगे इमीडिएटली आपका आप जो सवाल है

0: ये पूजा पूछेंगी और फटाफट एकदम जवाब जो है ये आपको देने होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के। और जैसे ही आप जवाब देंगे, अगर विद इन 30 सेकेंड्स पांचों सवालों के जवाब आपने दे दिए तो आपका नाम जो है ये ड्रो में शामिल होगा, और अगर नहीं दे पाए देन यू विल मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। सो ओके, फाइनली आई थिंक
1: दो बार समझा दिया एंड फाइनली वी आर ऑल डन
0: रेडी। सो
1: आर यू रेडी कमल?
2: यस।
0: सो राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1: व्हिच मूवी फीचर्स द हिट सॉन्ग ओरे पिया? Kamal?
2: Pass.
1: True or false? Rahat Fateh Ali Khan has performed in concerts around the world.
2: Yes.
1: What is the first True. Name of Rahat Fateh Ali Khan?
2: Pass.
1: True or false? Rahat Fateh Ali Khan is a playback singer.
2: It is a playback singer, but Ustad Rahat Fateh Ali Khan's first name was Rahat.
0: भाई आपका तो वक्त ही खत्म हो गया।
1: आपने दो क्वेश्चंस पास कर दिए एंड आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन कि राहत फतेह अली खान का जो पहला नाम क्या है, फिर आपने पास किया वापस उस पे आए। ट्रिक क्वेश्चन था वो। नहीं वो ट्रिक क्वेश्चन था, बहुत इजी था बट ट्रिक क्वेश्चन था, बट एटलीस्ट आपने कॉल किया, आपने कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली हम आपसे सिर्फ चार सवाल ही पूछ पाए जिसमें से आपने दो पास कर दिए, दो का जवाब दिया, और Unfortunately, आपका नाम हम ड्रो में नहीं शामिल कर पाएंगे कमल, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग।
0: थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग, और वापस आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, जब अगली अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। एंड मेक श्योर आप सुनते रहें, क्योंकि किसी भी वक्त अगला चांस जो है ये आपको मिलेगा। एंड व्हेन दैट हैपेंस मेक श्योर जल्दी से आप कॉल करें ताकि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। बाय द वे, फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत अभी मैच हो रहा है फ्रांस और इराक के बीच, प्रथम हिस्से में खेल जारी है और फ्रांस की जीत इराक के खिलाफ अब 1-0 से हो रही है।
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
4: Bollywood's most wanted.
5: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
6: Main laun apna A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है। अभी 23 मिनट रह गए हैं 10 बजने में और संजय लीला भंसाली और उनकी टीम जो है लव एंड वो इस फिल्म की काफ़ी ज़बरदस्त तैयारियों में लगे हुए हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक मेजर कॉन्ट्रोवर्सी उठ खड़ा हुआ है।
1: अब क्या हो गया भाई?
0: इस फिल्म के सेट पर 42 ईयर्स के एक कारपेंटर जो है इनकी मौत हो गई जब उन्हें सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक जो है ये लगा। आई थिंक अराउंड 6 डेज अगो ये इंसिडेंट घटा। रॉयल पंप स्टूडियो जो कि मुंबई के फिल्म सिटी में है वहाँ पर ये घटना घटी। वायल आलिया भट्ट वॉज रिपोर्टेडली शूटिंग, वो शूट कर रही थी जब ये इंसिडेंट हुआ। और अभी जो छानबीन हुई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु हुई है। और इस इंसिडेंट के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस से मांग की है कि वो फैमिली के लिए कॉम्पेंसेशन जो है ये बढ़ाएँ। साथ ही में जो एम्प्लॉई थे, प्रोडक्शन हाउस इज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल पैकेज 40 लाख का। और जो सीनियर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ है वो चाहता है कि उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएं। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि फैमिली का जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर है इट मस्ट रिमेन आई टॉप प्रायोरिटी। और साथ में एम्प्लॉयज की सुरक्षा जो है काम करते वक्त उस पर भी उन्होंने इमिडिएटली ध्यान देने की मांग की है।
1: पहले जो भी डिमांड्स किए जा रहे थे फेयर इनफ, समवन हैज लॉस्ट द लाइफ एंड यू नो दैट कैन नेवर रिप्लेस एनीथिंग। चाहे कितने भी अमाउंट का पैसा जो है इनको एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाए वो तो किसी तरह से इसकी भरपाई नहीं हो सकती। बट ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि द फैमिली विल एटलीस्ट हैव समथिंग टू मूव ऑन इन लाइफ, यू नो, टू डू द बेसिक थिंग्स जो वो डिजर्व करते हैं। ऐसी और भी रिपोर्ट्स जो है ये पिछले कई सालों से सामने आ रही है, बट डिस्पाइट दीज थिंग्स बीइंग क्वाइट कॉमन हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन, आई डोंट नो व्हाट आर द नेसेसरी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स जो लिए जाते हैं फॉर द पीपल हु वॉक ऑन द सेट्स, यू नो, जो बेसिक चीज़ें करते हैं वहाँ पर डे टू डे एक्टिविटी जो है इसे नॉर्मल चलाने के लिए। लेट्स सी और क्या कुछ अपडेट्स जो है सामने आते हैं। बट बिफोर यू मूव ऑन, आपने इस घंटे के अब अगते हो में एक सर्वे रिजल्ट के बारे में बातें की थी, फिर मैंने कहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनसे जान लेते हैं जो फिलहाल हमें सुन रहे कि क्या वो इससे अग्री करते या नहीं। अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे ये कहा गया था कि जो पुरुष होते हैं, जो मैन होते हैं, उनके स्वेट से के स्मेल से महिलाओं को किसी न किसी तरह की राहत मिलती है। बेसिकली दैट वॉज द होल जिस्ट ऑफ इट। सो मैंने जब ये कहा कि आप टेक्स्ट कीजिए एंड दिस वॉज ओनली फॉर द लेडीज आउट देयर टू आंसर, तो उसके बाद चलकर हमारे पास मैसेज आया एजे का। इन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग विजय भाई एंड पूजा दी, हैव अ ब्लेस्ड डे, नाउ वुमन विल डाई विद दैट स्मेल। ये इन्होंने कहा है। और सपना ने कहा है इट्स यक, किसी ने लिखा है डिसएग्री, किसी का मैसेज आया है आई एम इन द जिम एंड फील लाइक थ्रोइंग अप।
0: सपना है, सपना
1: वो सपना नहीं मैसेज किया, ओके okay. नहीं वो सपना नहीं, कोई और है। अच्छा सपना ही है, ओके फाइन,
0: माय गॉड,
1: सॉरी सॉरी माय बैड, आई डोंट अग्री, वेरी डिसगस्टिंग, टोटली डिसएग्री, डिसगस्टिंग, डिसएग्री, ये किसी ने लिखा है। मेन स्वेट कैन नेवर विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किसी ने भेजा है। प्लीज रिपीट क्वेश्चन दैट फीमेल्स नीड टू आंसर।
0: वो रिपीट करने की हिम्मत ही नहीं थी हमें।
1: अभी रहने दो, हफ्ता हो गया। नितिका ने कहा डिसएग्री विद द रिसर्च, वेरी डिसगस्टिंग, आई डोंट अग्री, ये किसी ने कहा है। सपना है सेंट इट अगेन सेइंग इट्स यक, I'm in the gym right now, surrounded by sweaty men and feel like throwing up. So that was the message she wanted to send. Sampriti ne kaha hai, big no, disagree. Aur kisi ka message aaya hai, I agree with Pooja. That is just disgusting. I can't stand the smell. Ye kisi ne message kiya. So see, the real women out there, they disagree with this survey.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत तो
6: आए आए बताओगे
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.

0: When you're in the loop with ANZ and you spend on a new lippy,
1: fabulous!
0: Money loops back.
1: Fabulous!
0: Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
2: It's the final days to get a massive 30 months interest-free store wide at Big Save. Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Save's big whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Must end Monday only at Big Save.
3: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
4: Whoa!
5: Whoa!
4: Whoa!
5: Whoa!
3: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
4: whoa
3: into a
0: whoa.
3: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search QuakeSafe Your Place to learn more.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
8: अभी 16 मिनट रह गए हैं 10 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा जबकि आपके लिए जारी है. डेली राउंडअप में राइजिंग पावर प्राइसेस और लिविंग कॉस्ट जो हैं ये लोगों पर और ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू ए ओटागो यूनिवर्सिटी रिसर्चर, गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं ये दिखा रहे हैं मोर देन 1 मिलियन पीपल रिसीव द विंटर एनर्जी पेमेंट इन 2025. और एट द सेम टाइम हार्डशिप ग्रांट्स जो हैं फॉर एसेंशियल सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, ये काफ़ी स्टेडी रहे हैं इन नंबर. और कुछ चैरिटीज एक्सपेक्टेड दिस विंटर टू बी वर्स एज मेनी वे अनएबल टू कीप अप विद द डिमांड. और वेराइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अकेले ही 7,500 परिवार वालों की देख रेख कर रही हैं और वेट लिस्ट पर भी उसके पास 2,000 लोग हैं. क्राइस्टचर्च सिटी मिशनर कोरियन नहेंस ने बताया कि मिशन ने एक साल में $4 मिलियन लागत का खाना जो है ये दिया है. बट इट कुड गिव ओनली अ पर्सन अ फूड पार्सल वंस एवरी 7 वीक्स. ओटागो यूनिवर्सिटी के सीनियर रिसर्च फेलो किम्बली और सेलेवन ने बताया कि डाटा ये दिखाता है ये प्रॉब्लम इम्प्रूव नहीं हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने की वजह से पिछले 2 सालों में 20% अब लोग और ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं.
9: और इसके अलावा एक और एक खबर जो है सामने आई है जहां पर कहा गया है कि न्यूजीलैंड हैज हार्वेस्टेड अ रिकॉर्ड ऑफ 225 मिलियन ट्रेज ऑफ कीवी फ्रूट. लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड था ऑफ 216 मिलियन ट्रेज इसको इस साल बीट किया गया है. स्ट्रॉन्ग सन गोल्ड और रेड कीवी फ्रूट कॉर्प्स जो है दे ड्रोव द इंक्रीज, जबकि वाइल्ड ग्रीन कीवी फ्रूट जो है दे फेस्ड क्वालिटी इश्यूज एंड स्लोअर हार्वेस्ट ड्यू टू जो पुअर वेदर कंडीशंस है. और सीका जो है इन्होंने पैक किया ओवर 45 मिलियन ट्रेज एंड एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 38 टू 42 मिलियन डॉलर्स. इसका जो सेकंड बेस्ट रिजल्ट अभी तक का देखा गया है. जेस्प्री इनका कहना है कि डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में और फोरकास्ट प्रॉफिट्स जो है ये बताए जा रहे हैं वुड बी अराउंड 355 मिलियन टू 365 मिलियन डॉलर्स. ग्रोवर्स ने एक्सपेक्ट किया एक सॉलिड रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जबकि इनका प्रोडक्शन फोरकास्ट इज टू रेज टू 236 मिलियन ट्रेज सपोर्टेड बाई न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रॉन्गर प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन के साथ.
8: फ्रांस की जीत, प्रथम हिस्से का खेल पूरा होने वाला है अभी भी. फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में इराक के खिलाफ 1-0 से हो रही है.
7: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: दो बातों का वक्त अब हो चुका है। सबसे पहले कहते हैं कि साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो।
1: चैन हो कि चैन हो?
0: चैन हो।
1: अच्छा,
0: दूसरी बात
1: जी,
0: उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती।
1: एब्सोल्युटली,
0: लेकिन मुस्कुराहट रुकने से
1: उम्र बढ़ जाती है। सी दैट इज ट्रू। तो इसीलिए शाहरुख खान का वो डायलॉग याद है ना, हंसो मुस्कुराओ खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। सो लाइफ का मजा लीजिए, जिंदगी में खुश रहना सीखिए, हर एक पल को एंजॉय कीजिए द वे इट्स सपोज टू बी फॉर यू। और जब भी आप इन पलों को एंजॉय कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि ये पल आपके लिए हैं, खास आपके नाम है। तो ओन इट, एंजॉय इट एंड हैव फन।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
5: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A body has been recovered from a pond in South Auckland. The scene at Rongomai Park near Otara was cordoned off following the discovery yesterday afternoon. Police say the death has been treated as unexplained. The squeeze on councils has intensified calls here for a national visitor accommodation levy. Regional Tourism New Zealand wants the major parties to commit to it. Chair Andrew Wilson says it's a means to an end.
7: How do we manage growth and how do we make sure that we're focused on having amazing destinations that people, you know, want to come and visit, but also they're great destinations to live at?
6: Concerns have been raised about the number of students opting out of mainstream schools here. It's doubled in a decade. Aero's Rebecca Bjarnason says fewer than half of these educators have a teaching degree.
8: 4 out of 5 of these young people are leaving without any qualification at all. And for 3 out of 5 of them, this is their last stop. It's their last engagement with education.
6: And overseas, music mogul Clive Davis has died aged 94. He's considered one of the most influential music executives of all time, helping shape the careers of dozens of household names, including Whitney Houston, Janis Joplin, Aretha Franklin and Bruce Springsteen, to name just a few. In sport, to rugby with Shift 4, and Crusaders captain David Havili is leaving New Zealand for Japan. The 31-year-old played 30 test matches for the All Blacks, 155 for the Crusaders, winning 7 Super Rugby titles.
9: Not a lot of emotion leaving because I know that I've done everything I can and very proud of my journey.
6: And Black Ferns lock Maya Roos has re-signed with New Zealand rugby through to the end of 2029.
5: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: The highs of 17 overnight, temperature of 13. Aaj ka forecast bataya ja raha hai. It's going to be a cloudy day. Kuch showers expecting hai. Lekin kal ki tarah nahi, kal to kafi bura haal hone wala hai barish ki wajah se. It feels like 13 degrees right now. 5:13 par sunset bataya gaya hai.
5: Non-stop Bollywood.
11: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
5: hain. Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
13: My Time with Kashika.
10: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? ट्यूसडे का दिन है और 23 जून का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. मैं काशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनकर आ जाती हूँ यही याद दिलाने के लिए कि वक्त आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. वैसे बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, क्योंकि मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना और जीना सीखो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मोटिवेशन लेकर मैं आ जाती हूँ. चाहे बारिश हो, ठंड हो, तूफान हो, कुछ भी हो हम पहुंच जाते हैं आपके पास, एक कमिटमेंट जो है हमारी आपके साथ, और मेरा आपके साथ ये जो वक्त होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, आप लोग बातें करते हैं, आप लोगों के साथ कई तरह की यू नो बातों से मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और सीखती चली जा रही हूँ। बस इसी नोट पर जून का महीना तो समझो अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा ट्यूसडे के दिन। माय गॉड एंड जुलाई विल स्टार्ट, क्या बात है। देखो ना कैसे पंख उड़ जाते हैं, पढ़ो पंख की तरह उड़ने लग जाता है समय, लेकिन हमें इस समय को किस तरह से इस्तेमाल करना है बहुत ही अच्छी तरह। कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए माय टाइम आ जाता है, कशिश फूड्स जिनका बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट, आपको चाहे वो आप पनीर लें, चाहे वो आप दही लें, चाहे वो आप उनका कोई भी प्रोडक्ट्स उठाएं, ग्रोसरी आइटम्स, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे अच्छे किफ़ायती दामों पर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिस शाउट आउट देने का वक्त आएगा, तो भाई कहाँ से सुन रहे हैं 5599 पर ज़रूर मुझको लिखकर बताइए, क्योंकि मैं आपको हेलो हाई करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, दिस इज कशिका, ऑल द वे टिल मिडडे।
5: बचाओ क्या,

0: Buds Adda.
1: दादी, एक बात तो है जो मैं कहना चाहती हूँ. एज जो है, जो हुए ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर बॉडी बट हमारे ब्रेन के लिए भी. अगर आपको मुश्किल होने लग जाती किसी का नाम याद करने में, या कंसंट्रेशन आपकी स्लिप हो जाती है, कुछ टास्क ऐसी होती है जहाँ आपको लगता है क्या ये मैं कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगा. बेसिकली क्या होता है, आप खुद तो ओल्ड हो ही रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली आपका ब्रेन भी ओल्ड हो रहा है. रिसर्चर्स जो जापान से हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने एग्जामिन किया लगभग 2000 ओल्डर एडल्ट्स को. उन्होंने देखा कि इन लोगों के अंदर जो विटामिन सी लेवल्स होते हैं इनके ब्लड में, वो उनको उनके ब्रेन स्ट्रक्चर को हेल्थियर बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, न्यूरल कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं. और ये स्टडी ये कहती है कि एक डिमेंशिया, एक मेमोरी लॉस जो है वो दिखना शुरू हो जाता है. तो कुछ एवरीडे न्यूट्रिशन जो हमारे ब्रेन के लिए है वो इम्पॉर्टेंट है, इज़न्ट इट. और एक रिसर्च जो हुई थी उसके बाद उसमें पता चला है द मीडियन एज ऑफ 69, जो भी पार्टिसिपेट किया गया उन लोगों को उनके MRI स्कैंस के, उनका विटामिन सी का लेवल जो था वो मेजर किया गया एंड उन्हें एडजस्ट किया गया सेवरल फैक्टर्स के साथ साथ, जहाँ पे उनके ब्रेन में इन्फ्लुएंस होता है एज से रिलेटेड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एजुकेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को अकाउंट में रखते हुए देखा गया कि जो विटामिन सी का लेवल था वो लोअर था. उससे एक जो ग्रे मैटर है उसका जो लेवल था या वॉल्यूम था वो वीक हो रहा था, और उसकी कनेक्टिविटी जो लोगों की थी वो ब्रेन के साथ कम हो रही थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें. साइंटिस्ट जो है हमेशा इस चीज़ पर बहुत खास तौर पे ध्यान देते हैं. मेजर रोल जो होता है मेमोरी का, डिसीजन मेकिंग का, इमोशंस का, आपके मूवमेंट का. जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं यू लूज़ द ग्रे मैटर जो नेचुरली आने लग जाता है. तो इन चीज़ों की स्टडी के ज़रिए पता चलता है कि ये आपका यू नो मेमोरी लेवल बहुत कम हो जाता है. अपनी बॉडी को फिट रखना होता है, हेल्थी रखना होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. और स्टडी बताती है कि विटामिन सी कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्रेन, और आपकी हेल्थ के साथ फाइट करने में ये हेल्प भी कर सकता है. और ये बात है कि विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ साथ ये कुछ ऐसी इसके अंदर चीज़ें होती जो ब्रेन के सेल्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम डैमेजिंग फ्रॉम ऑक्सीडेटेड स्ट्रेस. तो इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि विटामिन सी इन्वॉल्व करता है आपके प्रोडक्शन में फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो आपको एक केमिकल मैसेंजर की तरह बनके आपके ब्रेन सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है. मल्टीपल स्टडीज़ के ज़रिए पता चला है कि अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग की है, आपका अटेंशन लेवल कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, कम्युनिकेशन लेवल कम हो रहा है, इट इज़ वाइटल दैट आपका ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेशन और इमोशनल हेल्थ के थ्रू गुजर रहा है. नई फाइंडिंग्स के थ्रू पता चलता है कि विटामिन सी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है. और यहाँ ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के ज़रिए पता चलता है लोगों के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी पाई जाने लगी है, और ये भी एज जो लेवल जब होता है उसमें बढ़ जाते हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करने लग जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेस्ट सोर्स विटामिन सी का आपको तो पता ही है कि हर तरह के फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन विटामिन सी को उसका आप इनटेक भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लीफी वेजिटेबल्स, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, गुआवास, अमरूद, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, बेल पेपर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये खाएं अच्छी तरह. एक बैलेंस डाइट रखें, एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल एक्टिविटी, अपने हेल्थ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि हमें ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना. जस्ट रिमेन एक्टिव एंड हेल्थी.
0: My time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में. आप ही तो नहीं.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Bunnings Trade is here to help you get indoor projects sorted with 134 Trade. For stock queries, order and delivery updates, quick quotes and pricing, or general inquiries, call the team on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.
5: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner. Right.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 or visit legalassociates.co.nz.
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner, free chicken dinner. Yeah! Foursquare, what'll it be today? T's and C's apply.
5: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Office shout out.
7: चप्पू के गोए से हरजीत, थैंक यू सो मच, आपका टेक्स्ट आया और साथ साथ मैंने कहा उसे आप टोनी जी बेडजारा से भी मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। और साथ साथ एश फ्रॉम विलिंगटन, आप देखो आपने कितने ध्यान से सुना, वेरी हैप्पी सनी एंड उड़ते पंखों के साथ, भागते हुए समय के साथ, बढ़ती उम्र वाली, हाय हाय, हेलो हेलो वाली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग काशिका जी। गुड मॉर्निंग एश एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हरजीत एंड टोनी जी, आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन एक चीज़ के लिए और थैंक यू कहना चाहते हैं, और वो कहना चाहते हैं ऑफ यू नो ऑल द गुजरातीज जितने सुन रहे हैं, भैया आपके लिए टाइम बहुत कम रह गया है क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके लिए परफॉर्मेंस लेकर नेक्स्ट फ्राइडे को आने वाले हैं सिद्धार्थ रंधेरिया का गुज्जू भाई प्रोडक्शंस, और यहाँ पर ये कह सकती हूँ ये सेल आउट हो जाएगा बहुत जल्द। ये गुजराती ह्यूमर है, ऐसे में सिद्धार्थ रंधेरिया जब भी आते हैं हमें हंसा कर ही जाते हैं। गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, इनका नया प्ले जो है वो लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन जो होने वाली, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, फैमिली मोमेंट्स जो आप रिलेट कर पाएंगे इस गुजराती क्लासिक ह्यूमर के साथ। ये पूरा का पूरा प्ले आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं 7:30 बजे 3 जुलाई के दिन विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में।

0: फूड ब्रांच भी है।
1: तो एक 1930 का बंगलो जो सबर्ब में था सैंड्रिंगहम के, ऑल सेट टू गेट ऑक्शन ऑन जुलाई 8 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। पता चलता है द एस्टिमेटेड प्राइस जो है उसका 2.12 मिलियन से लेके 2.46 मिलियन तक जाता है। एवरेज सेल जो प्राइस का है घर का वो 1.45 है। अब आप सोच रहे होंगे किसका घर है। डेम जसिंदा आर्डन का जो घर है इज ऑन द मार्केट नाउ, क्योंकि इनकी फैमिली जो है इट्स ऑलरेडी मूव्ड एंड वी ऑल नो दैट। ये लिस्टिंग ने बताया कि फैमिली फोकस्ड फॉर एवर होम, स्टेप इनसाइड एंड होम अनफोल्ड्स टू टेल अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, पीस एक्सेप्ट फॉर द नेटिव बर्ड सॉन्ग, द एक्सेप्शनली सिक्योर एंड द प्रॉपर्टी डिलीवर्स आइडियल फैमिली लिविंग जस्ट मोमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलर बैलमोरल स्कूल। तो ये एक लिस्टिंग थी, इससे लोगों ने हिंट किया क्या है ये क्या है। तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड यानी जसिंडा आर्डन का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल घर है जिसे मैं देख रही हूँ अभी ऑनलाइन, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो यस, दे हैड वेलकम देयर डॉटर एंड उसके बाद जब इन्होंने रिज़ाइन किया था 2023 में, देन दे स्पेंड देयर टाइम इन US और अब तो पता चला है कि नाउ दैट शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, शी हैज़ रिलोकेटेड टू सिडनी।

0: Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat Better, Live Better और एक ऐसी फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है जिसमें यू नो कुछ एक पेड प्रीव्यू कल्चर जो शुरू हो चुका था एंड दैट हैपन्ड विद धुरंधर द रिवेंज. और एक दिन रिलीज़ से पहले 5 बजे का शो जो था और उसके वजह से कलेक्शंस बढ़ गई थी. ये सेम चीज़ की गई भूत बंगला फिल्म के लिए और फिर ये हॉरर कॉमेडी में नज़र आए थे अक्षय कुमार. और अक्षय कुमार की जो फिल्म वेलकम टू द जंगल ये फ्राइडे के दिन रिलीज़ हो रही है और फैंस एक्साइटेड हैं मल्टी स्टारर को देखने के लिए और पेड प्रीव्यूज देखने के लिए भी. सो ये पेड प्रीव्यू होने वाला है 25 जून को वेलकम टू द जंगल का, जिसे ऑर्गेनाइज अक्रॉस द कंट्री किया जाने वाला है इन इंडिया. 7:30 बजे शो को शुरू किया जाएगा. बुकिंग्स जो है पेड प्रीव्यू की शुरू हो चुकी हैं आज से और उसके बाद ये टिकट्स जो हैं ये सेल आउट लगता है हो जाएंगे. अब जब मैं कास्ट की बात करती हूँ तो मैं तो थक जाऊँगी अगर कास्ट का नाम बताती चले जाऊँ. जस्ट टू नेम अ फ्यू, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वासी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेया तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, ऑफ कोर्स आफ्ताब शिवदसानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदु दारा सिंह, उर्वशी राउतेला, हेमंत पांडे, ब्रजेंद्र कला, फिरोज अर्जुन और लेट पंकज धीर जी एंड पुनीत सर, सुदेश बेरी और ये एक और ये ना ये लिस्ट कंटिन्यू ही होती जा रही है. ये वेलकम टू द जंगल इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ होगी और डेफिनेटली इसको देखने में इसमें कन्फ्यूजन जो होगा उसको देखने में और भी मज़ा आएगा.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
2: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland.
3: If your bank makes gajillions in profit, how come you never get a slice of it? At the Cooperative Bank, we share our profits directly with our customers. Over $25 million and counting, in fact.
4: Better.
3: To prove we put our money where our mouth is, if you switch your banking to us, you'll get a share of $25,000. Not bad, eh?
4: Better.
3: Bank Better New Zealand. Switch to the Cooperative Bank today. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
5: Dream Diary में आपका जब कॉल आया तो यह ऐसा एक्चुअली मेरे साथ भी होता है. कई ड्रीम्स होती बार बार रिपीट होने लग जाती हैं और ये रिकरिंग ड्रीम्स जो होती हैं बहुत कॉमन है, चाहे वो शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं इन योर लाइफ टाइम. लेकिन ये ड्रीम्स जो हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं एज़ फार एज़ यू नो आपकी चाइल्डहुड से लेके रैंडमली एज एन एडल्ट यू इमर्ज. तो कभी कभी कुछ अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें होती हैं वो ड्रीम में आपको आनी शुरू हो जाती है. कभी कभी वीकली, कभी मंथली, कभी कई बार एक साल में कई बार आपके लिए आनी शुरू हो जाती हैं. बट बिलीव इट नॉट, एक पर्टिकुलर ड्रीम जो कई बार आपको आ जाती फाइनली यू नो ये बता देती है रीज़न जो इनका होता है. इट इज़ क्लियर एंड ये बहुत इंटेंस होती है जहाँ आपकी ड्रीम डेस्परेटली आपका अटेंशन चाहती है. और इसका एसेंस ये है कि ये ड्रीम आपके लिए एक मंथली रिमाइंडर बन जाती है दैट यू आर ट्राइंग टू इग्नोर समथिंग इन योर लाइफ जो कि प्रॉबेबली बैलेंस नहीं रखता. कॉमनली रीअकरिंग ड्रीम्स कुछ भी एनीथिंग जो स्टॉप करते हैं आपको कि कभी कुछ आप माइंड में सोच रहे हैं, क्या किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं. आर यू अप फॉर अ चैलेंज, आर यू अप फॉर सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, कुछ क्या करना चाहते हैं, कुछ डीपली आप सोच सकते हैं. कभी कभी टेकिंग अ टेस्ट एट स्कूल, कभी कभी हो सकता है यू आर कैचिंग अ फ्लाइट एट द एयरपोर्ट, प्लेन क्रैश, कार क्रैश, फॉलिंग यू नो, या फिर आपको कोई पकड़ रहा है, कोई अलग तरह के ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स. अब इन्हें यू नो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इन्हें रोक सकते हैं, ये आपके लिए रिप्ले होने लग जाती हैं ड्रीम्स. एंड इट टर्न्स आउट दैट यू आर नॉट अलोन एट दैट टाइम. डिड यू नो दैट अप्रॉक्सीमेटली 60-65% जो एडल्ट्स होते हैं ये अफेक्ट हो जाते हैं विद द रिकरिंग ड्रीम इन देयर लाइफ टाइम. यूजुअली ये मेन में कम होता है, वेमेन में ज़्यादा होता है. ये ड्रीम्स जो होती हैं दे आर नॉट वेरी फ्राइटनिंग इन नेचर, बट ये कभी कभी एंग्शियस थीम्स लेकर आते हैं. और साइकोलॉजी के हिसाब से पता चलता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ डिससेटिस्फैक्शन होता है. और ये ड्रीम जो है एक स्टेप फर्दर लेती है जब आपको बोलना चाहती है काम डाउन, और आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाने के लिए कोशिश करती है. सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं कह सकती हूँ आपको ये बताना चाहती है डार्क में से निकलो और लाइट की तरफ आओ. सो बी वेरी केयरफुल जब भी आप ये सपने देख रहे हो, बट पॉजिटिवली लोग सोचो कि कहीं आप अटक रहे हैं. डेफिनेटली ये आपका एक पैटर्न है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं. और वेरी कॉमनली सेम चीज़ आप दोबारा दोबारा जब ड्रीम करते हैं, कई स्ट्रेसफुल टाइम आपकी लाइफ में रहा होगा, शायद आप वो इनकम्प्लीट रह गया. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं. बट आपकी ड्रीम आपकी है, लेकिन कहीं कहीं आप अटक रहे हैं तो मैं हूँ ना

थ्रोबैक की तरफ तो मैं पहुंच रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताना चाहती हूं अबाउट यू नो एक जर्नी जो एक ऐसे कलाकार ने की जब बहुत छोटे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राहत फ़तेह अली खान। तो थोड़ी ही देर बाद यानी कि न्यूज़ के उस पार मेरे पास एक कंपटीशन है जिसमें मैं चाहती हूँ आप भाग लें, आप बात करें मेरे साथ ताकि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर सकूँ। अगले महीने ये आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए हमारी सुपर सिटी में।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
2: क्या नहीं?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड। www.kashishfoods.co.nz।
8: Snooze and save at the Beds R Us winter sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
13: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
14: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
0: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Mystery surrounds how a body ended up in a pond in South Auckland. It was recovered from a secluded area at Rongomai Park after a member of the public made the discovery yesterday. A post-mortem is expected to take place today. The death has been treated as unexplained. A push for politicians on all sides to commit to a modest national visitor accommodation levy. Regional Tourism NZ's Andrew Wilson says a sensible system would ensure it benefits everyone.
16: We tend to have this kind of allergic reaction around new charges or anything that might be considered possibly a tax. I think our view is very much this is a user pays charge. Our ratepayers foot a lot of the bills.
15: Stolen equipment has become a major problem for Kiwi Rail in the Wellington region. 5 kilometres worth of cable disappeared from Wairarapa over the last 6 months. Signals and overhead lines are also being targeted, delaying more than 50 Hutt Valley line services in April alone. And a serious crash has closed a section of State Highway 2 in Wairarapa. It affects the stretch of road between Number 1 Line and Bidwell's Cutting between Featherston and Greytown. NZTA warning drivers to expect big delays, with local road detours adding to travel time. In sport, Crusaders captain David Harvili is happy with his call to leave New Zealand. The 31-year-old missed All Black selection and will head to Japan.
17: To be able to live out my dream here for over 15 years and be a part of this legacy with some of the best players that ever come through here in the world, it's been an extreme honour.
15: And in football, kickoff has been delayed for the second half of the World Cup match between France and Iraq in Philadelphia. A thunderstorm stopped players from retaking the field, with France leading 1-0 at the half. Football updates brought to you by Hisense.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
18: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
6: सूचित किया जाता है कि नागम्मा देवी के पति मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप आज 7 से 8 बजे तक जा सकते हैं। अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंड फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02-11-771-181 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, नागम्मा देवी के पति मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉबी हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप 23 जून यानी कि आज 7 से 8 बजे तक जा सकते हैं। अंतिम संस्कार कल साढ़े तीन बजे एंड फ्यूनरल होम एंड नॉसेट क्रीमेशन में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02-11-771-181 पर आप संपर्क करें। रीटा, सरिता और पॉल की मां शनील, प्रनील, रिया और सिमी की नानी बा मिशन हॉस्पिटल के भूतपूर्व कर्मचारी गोविंदा मां की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार हो चुका है, माफ कीजिएगा, ऑकलैंड के किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा रानी राय की मां, चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल 1:00 बजे एंड फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप 2793894 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, ऑकलैंड के किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा रानी की मां, चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल 1:00 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 2793894 पर आप संपर्क कर सकते हैं। भूरा जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सिंह, अंजनीश जयंत, मोहनीश और रोविन जोकन की मां, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन कियोला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 27 जून को 1:00 बजे वातुवाका सिमिट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 02233268843 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, भूरा और जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहनीश और रोविन जोकन की मां, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 27 जून को शनिवार को 1:00 बजे वातुवाका सिमिट्री में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 02233268843 पर संपर्क कर सकते हैं। एलएसली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई सैमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रमालू नायडू की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल 11:00 बजे मैनाकॉ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। सहानुभूति के लिए 02720003343 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, एलएसली के चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई सैमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामालू नायडू की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल 11:00 बजे मैनाकॉ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। सहानुभूति के लिए 02720033443 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
18: शोक सूचनाएं वीकडेज पर 6:00 तथा 11:00 बजे, 6:00 बजे और वीकेंड्स पर 12:00 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 17, overnight temperature of 13. आज का फोकस बताया जा रहा है क्लाउडी डे रहेगा, कुछ बारिश एक्सपेक्टेड है और साउथ ईस्ट की हवाएं जो है नॉर्थ की तरफ बह जाएंगी. इट फील्स लाइक 13 डिग्रीज राइट नाउ. सनसेट 5:13 पर.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ रही है
3: माय टाइम विद कशिका.
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? 11:07 होने वाले हैं. 23 जून का दिन है, बर्थडे एनिवर्सरी है. तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. आज मेरी 6 वर्ड की स्टोरी भाई आप तैयार हो चुकी है. अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो ज़रूर शेयर कीजिए. और साथ साथ जब मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, एक ही बात कही थी आपसे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, क्योंकि मजबूरियों को आपको कोसना नहीं है. हर हाल में चलना और जीना सीखो. तो बस इसी हाल में कल भी हम आएंगे, क्योंकि कल काफ़ी मौसम ख़राब होने वाला है, एक्सपेक्टेड है. वी विल वेट एंड वॉच, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो एक ही दिन में 4 मौसम आप वैसे भी देख लेते हैं. इस घंटे में राहत फ़तेह अली खान जी जो आ रहे हैं हमारे साथ परफॉर्म करने के लिए, अगले महीने उनसे रिलेटेड भाई एक सवाल होगा जिसके लिए मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप मुझे कॉल करें ताकि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूँ. अच्छा, ये तो मैं करने ही वाली हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो है 6 वर्ड की स्टोरी एंड रेस्क्यू मी रिसाइकल मी, प्लस हमारे पास कुछ बातें और भी होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो भी करते चले जाएंगे. हाँ, एक बात बताइए कि व्हाट अगर ये ईस्टर का जो लॉन्ग वीकेंड आने वाला है वहाँ पर कुछ क्योस होने वाला है? एक क्रू एक साथ कहाँ जाने वाला है? क्या होने वाला है? स्टे ट्यून टू नो मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन. कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो है इसके पीछे, लेकिन क्या है अभी तो गाना बजाती हूँ.
0: जाओ क्या

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Oh my, oh my, Great South Road, greater than ever.
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: Weymouth Road, way better buses.
4: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
3: Woody, no worries, MIT, A-OK.
4: Search AT Better South Auckland Buses for details.
3: Airport, got your transport.
4: Then turn up and go.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278860.
6: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
7: Eat better, live better and meri six word ki aaj ki jo story hai, it is finally I found the play button. Finally, I found the play button. अच्छा ठीक है, आई अब अंडरस्टूड, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये कह सकती हूँ कई बार ऐसा होता है मैं अभी बटन ढूंढ रही थी पॉज करने के लिए, वो पॉज हुआ नहीं और एड ब्लॉक आ गया अपने आप। ऑल राइट, डजेंट मैटर, बट आपका टेक्स्ट आया है, आपने कहा आई शुड हैव ब्रॉट अ GPS, आई शुड हैव ब्रॉट अ GPS, एब्सोल्यूटली राइट।
6: सिक्स वर्ड स्टोरी। Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Rashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: सो टाइम आ चला है जहां पर आपको मुझे कॉल करना है 0800 00। हम पे कल भी बड़े सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मेरे पास कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपसे सही आंसर पूछना चाहूंगी और आपका नाम डबल पास के लिए एंटर हो जाएगा ड्रॉ में। वैसे आपको मैं बता देती हूँ, जल्दी से कॉल कीजिए 0800 00। हम मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, एक दो तीन सवाल ही पूछने वाली हूँ बस, बहुत सिंपल सिंपल, राहत फतेह अली खान जी के आसपास के, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट ये आपके लिए परफॉर्म करने आ रहे हैं ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को, और इसे लेकर आ रहे हैं जे के स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस। इसकी टिकट्स अवेलेबल हैं dryticket.com के जरिए। और अब मुझे इंतज़ार है ये एक कॉल का, जो मुझे कॉल करें और बताएं कि भाई आपके हिसाब से क्या आप क्वालिफाई करते हैं फॉर द टिकट और नॉट। 0800 00 हम, ऑल राइट, वी हैव द कॉलर ऑलरेडी विद अस। एक मिनट। गुड मॉर्निंग, हम किन से बात हो रही है? सॉरी, किन से बात हो रही है?
4: हरदीप सिंह।
3: हरदीप जी, कैसे हो?
4: बढ़िया जी, आप बताओ?
3: एकदम बढ़िया। सुनते हो आप उनको?
4: हेलो।
3: हाँ जी, आप सुनते हैं?
4: हाँ जी, हाँ जी,
3: सुन पा
4: रहे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बताइए, मेरे पास तीन सवाल हैं, मैं इन तीन सवालों को आपसे पूछना चाहूंगी। एंड मेरा पहला सवाल, ऐसा पहला कौन सा गाना था जो आपको लगता है राहत फतेह अली जी का आपको बहुत पसंद आया था?
4: दिल लगी।
3: ओके, सेकंड क्वेश्चन, आप ये बताइए कि ये कौन सी तारीख को आ रहे हैं परफॉर्म करने?
4: ओ, ये मैं भूल गया। चार।
3: तुक्का मार लो।
4: 25 को?
3: करेक्ट।
4: 25 जुलाई।
3: यस, बच गए, बच गए। एंड द थर्ड क्वेश्चन विल बी, आपको पता है कि राहत फतेह अली खान जी किसके रिलेटिव हैं?
4: नुसरत फतेह अली खान जी।
3: ओहो, कंग्रेचुलेशंस, मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया है हरदीप जी, बिग थैंक यू टू यू, आपका नाम ड्रॉ में ऐड है। अब देखते हैं कि आप विजेता होते हैं कि नहीं होते। एंड कल मैं फिर से लाइन खोलूंगी, लेकिन आई थिंक आई एम गेटिंग अनदर कॉल, आई विल टेक द कॉल। हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
5: एंड हेलो,
6: हाँ जी, सपना बोल रही हूँ। कशिका जी, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ सपना जी, आपने पीछे रेडियो को कम कर दो।
6: एक सेकंड। हाँ जी, बताइए।
3: ऐसा भी होता है, मुझे खुद की आवाज सुनाई देती है। ये काशिका वहाँ क्या कर रही है?
6: नहीं, एक्चुअली मेरा ससुराल का नाम कशिश भी है, तो यू नो कशिश स्पीकिंग टू काशिका।
3: ओह माय गॉड, आई एम इंप्रेस्ड। तो अभी क्या लिखूं, कशिश लिखूं?
6: नहीं, सपना, ऑफिशियल सपना है।
3: ओके ओके, तो कशिश फूड्स की ओर से माय टाइम आता है वैसे तो, है कि नहीं?
6: हाँ जी।
3: ओके,
6: राइट
3: राइट। मेरा पहला सवाल आपके लिए होगा कि आप बताइए कि ये 25 जुलाई को आ रहे हैं परफॉर्म करने, आपको वो लोकेशन पता है कि कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं?
6: हाँ जी, ट्रस्ट अरेना हेंडरसन।
3: शाबाश। क्या आपको पता है राहत फतेह अली जी ने कौन सा गाना सलमान खान का गाया था उनके लिए?
6: हाँ, तेरे मस्त मस्त दो नैन दबंग।
3: शाबाश, क्या बात है। ओके, एंड माय फाइनल क्वेश्चन टू यू विल बी, आपको इनके कौन से स्टाइल का गाने का स्टाइल पसंद है? बॉलीवुड, कव्वाली,
6: गजल, सूफी? गजल।
3: अच्छा,
6: बॉलीवुड, सूफी, बोथ।
3: ओहो, क्या बात।
6: एंड मैंने कभी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया, बट आई हैव मेट हिम पर्सनली एट बॉम्बे एयरपोर्ट।
3: अच्छा,
6: एंड आई जस्ट लव हिज वॉइस, सो मुझे प्लीज मेरा डाल दीजिए ताकि आ जाए।
3: चलो,
6: एंड इट वुड बी माय फर्स्ट कॉन्सर्ट टू अटेंड इन ऑकलैंड।
3: सीरियसली?
6: न्यूजीलैंड। या,
3: ठीक है जी, मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया। ऑल द बेस्ट,
6: थैंक यू सो मच कशिका जी, बाय
3: बाय
6: बाय।
7: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन।
0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner winner free chicken dinner. Yeah! Foursquare, what'll it be today? T's and C's apply.
5: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
9: Rescue me, recycle me.
3: रेस्क्यू में रिसाइकिल में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ब्रेड होती है ना घर के अंदर, या बेगल्स होते हैं, या सैंडविच ब्रेड अगर हमारे पास होती है, आप क्या कर सकते हैं इनको, आप इनको कट कीजिए छोटी छोटी क्यूब्स के अंदर, फिर इसमें आप ऑलिव ऑयल, नमक, गार्लिक पाउडर लीजिए और इसे बेक कर दीजिए टिल इट्स क्रिस्पी। अब ये क्रोटॉन्स आपके बन जाते हैं जो आप अपने सूप के साथ डेफिनेटली ले सकते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको बात बता ही दी है, लेकिन मोर देन 225 million ट्रेज जो हैं कीवी फ्रूट के इस साल पिक किए गए, विच मीन्स इन्होंने लास्ट ईयर का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया। 216 million ट्रेज की बजाय 225 million ट्रेज आई हैं, विच जनरेटेड 3.5 billion फ्रूट एंड सर्विस पेमेंट। अब 5 million ट्रेज जो रेड कीवी फ्रूट की जो हार्वेस्ट हुई थी अर्ली फरवरी में, यहाँ पर जो है ये सन गोल्ड वाली बहुत ही डिलिशियस होती हैं और ये शिप की गई फ्रॉम न्यूजीलैंड कोल्ड स्टोर्स टू इंटरनेशनल मार्केट। अब एक बहुत ही पॉजिटिव सीजन था ये, जहाँ पर ये एकदम मच्योर होके जब सुपर मार्केट तक पहुँचे तो वाकई ही इतने सारी ट्रेज जो थी क्या कमाल की फटाफट गई हैं। और ये ग्रीन कीवी फ्रूट जो है, इसके लिए मैं यही कह सकती हूँ इसकी ग्रोथ के लिए, इसके लिए कीवीज तो भाई एक ये 14% अप हो गई, इट्स हॉटर इन द सीज़न राइट नाउ आई सेड इन द मार्केट। और फॉरकास्ट ये कर रहे हैं कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर में इसका लगभग 38-42 million के करीब ये बढ़ सकता है। सो भाई ये इस तरह की जब खबरें आती हैं ना तो लगता है माय गॉड वी आर डूइंग द राइट थिंग, है कि नहीं भाई। ये चीज़ें जब अच्छी होती है और ब्राइट फ्यूचर हो जाता है जब न्यूजीलैंड के कीवी फ्रूट ग्रोअर्स का तो यही कह सकते हैं ये वर्ल्ड में आके हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था वो सिस्टम में कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ बढ़ती है, आती है, उभर कर वो हमारे लिए राहत बन जाती है। और धीरे धीरे हौले हौले हमको लगता है हम अपने नॉर्मल लाइफ की तरह ज़रूर बढ़ते चले जाएंगे। अब एक थैंक यू, सॉरी मैं आपकी कॉल्स और नहीं उठा पाई, लेकिन कल ये सुनहरा मौका आपको ज़रूर दूंगी।

कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा है, और ऐसे में जब कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा है तो फिजी इलेक्शन ऑफिस जो है आपके लिए ये कल से खुलने वाला है 26 तारीख तक, और ये 12 बजे से दोपहर शुरू होगा, 8 बजे शाम तक मैंगरी सेंटर पार्क में 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी आप पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली फिजी इलेक्शन के जो ऑफिस है ये कुछ सेकंड वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव कंडक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर पहुंचेगा। ऑकलैंड रामायण संस्था मंथली रामायण कथा जो है ये संडे के दिन 26 तारीख को लेकर आने वाले हैं 7:15 बजे। ARST कम्युनिटी सेंटर मैंगरी आप पहुँच सकते हैं। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री रामलीला लेकर आ रहे हैं। स्टॉल की इंक्वायरीज के लिए 0271795459 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी में भी कुछ खास हो रहा है तो डेफिनेटली हमें आप बता सकते हैं buzz@humfm.com के जरिए। वैसे हम भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी यहाँ होता है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सैंडी और रुजबे के साथ मुलाकात हुई थी निवी की, जो कि निवेदिता शर्मा विज, और जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि थैलेसमिया और उसका इम्पैक्ट साउथ एशियन कम्युनिटी पर किस तरह से पड़ता है। कुछ उन्होंने बातें बताई, कुछ रेयर कंडीशन, जेनेटिक ब्लड, क्रॉनिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें उन्होंने बताई, और डेफिनेटली आप इसे कैचअप कर सकते हैं जहां आप ड्राइव लिख के भेजें पूरा ऑडियो सुनने के लिए। और इसके साथ साथ आप ब्रेकफास्ट का कैचअप भी, अगर आप इनकी बातें मधुर मधुर मिस आउट कर जाते हैं तो BF लिख के भेजें 5599 पे। तो बस इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार, कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार, आपके दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए आ रहे हैं केतन, इनका साथ जरूर दीजिएगा। मैं अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ कशिश फूड्स की सौजन्य से, आपके लिए माइक टाइम लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तो दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट सुपर डे टुमारो एंड टुडे। के बीच में जितना टाइम है अपना ख्याल रखना।

नमस्ते सस्त्रीकाल सलाम अलैकुम बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच शो में। वेल आज 60% खूबसूरती कम हो चुकी है, यानी कि 40% बारिश हो सकती है। बारिश भी अच्छा लगता है, नो डाउट बारिश भी खूबसूरत होता है, बट यहाँ ऑनेस्टली इतनी बारिश होती है, मतलब टचवुड होती रहे ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई नहीं होनी चाहिए, बट कंपेयर कर रहा हूँ मैं अपने शहर से कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है दैट एक्चुअली जो एसेंस हुआ करता था बारिश के आने का, यानी कि जब बारिश का मौसम आता था, सीज़न आता था बैक इन इंडिया, तो ऐसा लगता था कि यार क्या मज़ा आने वाला, बारिश का एक फेस्टिवल माना जाता था बारिश के टाइम को। बट यस, यहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, नो डाउट वॉल्यूम थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, बट उस वजह से वो जो मिठास है वो सुगंध है